मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 सितंबर सन 2026 प्रातः के 5:57 होने को है। अब हमारी

0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारा प्रसारण मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं और इसे मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। तो थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक सहायता, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
2: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। SCO सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण के मापने योग्य सुधार हो सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकियों को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कल केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में चिन्हित 100 जिलों में योजना में तेजी लाने, योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने और किसानों के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से अगले महीने 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। नई भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगाना, चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों में स्थिरता लाना है। नई समय सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यापारी चीनी के भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक नहीं रख सकता और देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया जा रहा है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हित के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत बेल्जियम के बीच आपसी साझेदारी को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण अवसर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भारत की शांति उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये विविधता में एकता, प्रेम में शक्ति और सहनशीलता में महानता का प्रतीक है। भारत में शांति के साथ क्रांति का भी बहुत महत्व है। भारत की क्रांति केवल एक आंदोलन नहीं थी, वह हर दिल में जलती आजादी की ज्योति थी। ये वो शक्ति थी जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा और आत्मसम्मान को जगाया। भारत वीरों की भूमि है, संतों की धरती है और शांति का संदेशवाहक के रूप में विश्वव्यापी है।

गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के जीवन से बाधाओं को दूर करते हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनसे की जाती है ताकि कार्य सफल और मंगलमय हो। उनका बड़ा मस्तक हमें सोचने की प्रेरणा देता है, छोटा मुख कम बोलने का संदेश देता है, बड़े कान सबकी सुनने की सीख देते हैं

प्रेम भक्ति और समर्पण में मीराबाई अद्भुत मिसाल है। उन्होंने महलों का वैभव छोड़कर भजन कीर्तन का मार्ग अपनाया। उनकी रचनाओं में गहरा प्रेम और विरह की पीड़ा झलकती है। उनका विश्वास अडिग था कि सच्चा प्रेम केवल प्रभु में ही है।

राम मर्यादा सत्य और धर्म के प्रतीक हैं। उनका नाम ही मन को शांति और शक्ति से भर देता है। राम भजन केवल एक गीत नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। जब भक्त प्रेम से श्री राम जय राम का जाप करता है तो उसके मन की अशांति दूर हो जाती है और भीतर एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है।

भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं है, भक्ति वो भावना है जिसमें मन, वचन और कर्म तीनों से प्रभु का स्मरण किया जाता है। जब एक भक्त सच्चे मन से भगवान को याद करता है तो उसे जीवन की कठिनाइयां भी हल्की लगने लगती है। भक्ति मन को शांति देता है, हृदय को प्रेम से भर देता है और जीवन को सही दिशा देता है, और भगवान अपने भक्त के वश में हो जाते हैं।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, FM 101.6 MHz पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर विविध भारती के इंदौर केंद्र से प्रति शुक्रवार सुबह 11:32 से सुनिए साइबर जागरूकता पर केंद्रित सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। इस कार्यक्रम में IT विशेषज्ञ, स्टेट साइबर सेल इंदौर के आला अधिकारी, साइबर ठगी से जागरूक कर रहे संस्थान के विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में उपस्थित होते हैं। तो आप भी सीधे हमारे टेलीफोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो जुड़िए हमारे कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान से और अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान जानिए। सुनते रहिए विविध भारती का इंदौर केंद्र FM 101.6 MHz पर और कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान प्रति शुक्रवार सुबह 11:32 से 12 बजे तक।
1: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब आपको सुनवा रहे हैं चिंतन। आलेख चंद्रशेखर का है, वाचक स्वर रूपाली चौहान के।
2: आज हम बात करेंगे कर्म की, एक ऐसे विषय की जो हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को निर्धारित करता है। भारतीय संस्कृति में कर्म को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। अर्थात हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के। जीवन में हम जो भी करते हैं उसका प्रभाव केवल हमारे वर्तमान पर ही नहीं बल्कि हमारे भविष्य पर भी पड़ता है। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कार्य, ये तीनों मिलकर हमारे कर्मों का निर्माण करते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि हम हर कार्य को सकारात्मक भावना और सद्भावना के साथ करें। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कार्य, ये तीनों मिलकर हमारे कर्मों का निर्माण करते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि हम हर कार्य को सकारात्मक भावना और सद्भावना के साथ करें। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपने कर्मों का परिणाम तुरंत चाहते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। उसी प्रकार अच्छे कर्मों का फल भी उचित समय पर अवश्य मिलता है। धैर्य और विश्वास के साथ किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। कर्म का अर्थ केवल बड़े बड़े कार्य करना नहीं है, किसी जरूरतमंद की सहायता करना, माता पिता का सम्मान करना, अपने कार्य को ईमानदारी से करना, सत्य बोलना और दूसरों के प्रति करुणा रखना, ये सभी श्रेष्ठ कर्म हैं। छोटे छोटे सद्कर्म मिलकर हमारे व्यक्तित्व को महान बनाते हैं। आज के समय में जब प्रतिस्पर्धा और भाग दौड़ बढ़ती जा रही है, तब कर्म की

0: प्रतिबद्धता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। सफलता पाने की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन सफलता का मार्ग सदैव नैतिकता और सत्य से होकर गुजरना चाहिए। यदि हमारा कर्म सही है तो आत्मसंतोष और मानसिक शांति अपने आप प्राप्त हो जाती है। महापुरुषों का जीवन भी हमें यही शिक्षा देता है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। कर्म ही वो शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकती है। कर्म ही वो दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। आज के समय में जब तनाव और चिंता बढ़ रही है, कर्म का सिद्धांत हमें संतुलन सिखाता है। ये हमें बताता है कि हम केवल अपने प्रयासों पर ध्यान दें और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। इससे हमारे मन को शांति मिलती है। कर्म का एक और पहलू है जिम्मेदारी। हम जो भी करते हैं उसकी जिम्मेदारी हमें स्वयं लेनी चाहिए। दूसरों को दोष देना आसान है, परंतु अपने कर्मों का मूल्यांकन करना ही सच्चा चिंतन है। जब हम अपने कर्मों के प्रति सजग हो जाते हैं, तब हमारा जीवन स्वतः ही सुधरने लगता है। हम बेहतर निर्णय लेने लगते हैं और हमारे संबंध भी मजबूत होते हैं। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करने का साहस रखते हैं। कर्म ही वो बीज है जिससे सफलता और सम्मान का वृक्ष उगता है। जीवन में कर्म करते रहना ही हमारी सच्ची साधना है। जो व्यक्ति अपने कर्म पर विश्वास करता है, वो कठिनाइयों से नहीं घबराता। कर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। इसलिए अच्छे कर्म मन को शांति और आत्मा को संतोष प्रदान करते हैं। हम सभी को सत्कर्म ही करना चाहिए। आइए आज हम संकल्प लें कि हम अपने प्रत्येक कार्य को ईमानदारी, निष्ठा और सकारात्मक सोच के साथ करेंगे। हम ऐसे कार्य करेंगे जिनसे केवल हमारा ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र का भी कल्याण हो।
1: आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख चंद्रशेखर का था और वाचक स्वर रूपाली चौहान के। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब आपको सुनवा रहे हैं खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे बरसात का पानी का संरक्षण कैसे करें, इस विषय पर ये जानकारी बिंदु भाटे की।
2: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों हम आज के बरसात का दिन चले रहा और इन बरसात मछे तो अपना कसो इन बरसात को पानी इकट्ठो करनू ये जाननू भी जरूरी छे। अगर छोटा छोटा अगर उपाय करी लेवा तो अपन इन बरसात का पानी को भी उपयोग करी सकन। हम देखी राज की अपना गाँव न में भी पक्का घर बनी गया और छे तो वहाँ पर भी बोरिंग छे, वहाँ पर भी छे तो पानी खूब लगे तो छत न छे उनको पानी अपन इकट्ठो करी सकन और ओखा भी अपनी खेती बाड़ी में अपना घर का काम को उपयोग करी सकन। अब जैसे अपन देखे रहे कि दिना दिन छे तो पानी की खूब कम पड़ी, रोज पानी जितो हम वापरा ओका से ज़्यादा हमको पानी लगज और इना पानी का उपयोग कर लेना अपना घर जरूरी छे कि हम कुछ ऐसा उपाय करा जेका सी बरसात को पानी अपना घर पूरो साल भरी पूरा अपनी खेती बाड़ी में अपना रोज का काम काज में एका लेना। सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि जो अपना घर की छत छे वहाँ से अपन पानी इकट्ठो करी सकें। वहाँ से पानी छे तो एक पाइप का द्वारा नीचे गिरे छे तो अपन इकट्ठो करी लेवा। एका लेना छे तो अपन पानी को जो टैंक छे वो सबसे पहले जो नीचे अपन ने बनाया वो फिल्टर करना का लेना, वो छानना का लेना। रेत बालू रेती पत्थर एक ही परत न बढ़ लेवा। एका सिकाय होएगा कि जो कचरो आई रोज वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। एक साथ एक जमीन का अंदर छे तो टंकी बनाई लेवा और पानी की टंकी में छे तो ये पानी इकट्ठो होतो रहेगा। जैसे अपना आंगन छे या बगीचो छे वहाँ पर एक जमीन का अंदर ऐसी टंकी बनाई लेनी चाहिए और इन टंकी में छे तो जो अपनो बारिश को पानी आई रोज बरसात को साफ सुथरो ओखा पण इकट्ठो करी सकन। एका पण भरी कने रखी सकन। अपना रोज का काम जैसा कि कपड़ा धोनू छे, बर्तन मांजनू छे अना दूसरा भी जेमा जैसे बगीचा में पानी देनू या पानी को कहीं उपयोग ही रोज तो अपन इना पानी को उपयोग करी सकन। और छे तो जो अपन गड्ढो बनाई रखे वरसात का पानी को

0: तो करना कर लेना। तो ओखा छे तो एक ओमा जो जल को स्तर छे वो बढ़ जाएगा। साथ छे तो अपना घर में कभी बोरिंग होए है नी, ट्यूबवेल अपन खोदी रखे तो वहाँ पर भी एको जल को स्तर एक बढ़ी जाए। घर का जो बाहर खुलो गड्ढो होए वहाँ पर छे तो इस तरह की अपन पत्थर बालू रहती ये सब नाखी का ना ओख भरी देवा, जैकासी उना गड्ढा में पानी इकट्ठो होते रहे। छत को जो पानी आवेगा इना गड्ढा में पर छोड़ी देवेंगा तो यो गड्ढो भरी जाएगा। साथ ही एक सोखता गड्ढो भी बनाने चाहिए। ये में तो अपना जमीन में जो खुली जगह है वहाँ पर छे तो इना गड्ढा का पण बनाई देवा ने ओमा भी कंकड़ पत्थर नाखी देवा तो वहाँ पर भी पानी इकट्ठो होते रहेगा। इस तरह जैसो कि बरसात होए ना पानी असोज हो जाए और छे तो जमीन बाद में सूखी भी जाए तो एकासी अपना का अपना बोरिंग छे कुआ छे इनमें पानी की किल्लत होए पानी की कमी भी जाए। तो पानी की कमी नहीं होए एका लेना अपना का यो सोखता गड्ढो भी बनाना चाहिए। अपना किसान भाई बहनों के पास में खेत भी छे, खेत का पास में तालाब या छे तो असो बड़ो सो गड्ढो करनू चाहिए जेमा छे तो पानी इकट्ठो रहे। अगर तालाब बनी लो तो बहुत अच्छी बात है कि एम बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी इकट्ठो हो जाएगा बरसात को और अपनी खेती बाड़ी का काम में भी आवेगा। तो हमारा सभी भाई बहन इन्हीं बात को ध्यान रखेगा और छे तो इना बरसात का पानी में छे तो अपनी खेती बाड़ी सिंचाई ये सब कर सकेगा। आज हमारा किसान भाई बहन से योज कहनू छे।
1: आप सुन रहे थे खेती की बातें और इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे बरसात का पानी का संरक्षण कैसे करें, इस विषय में जानकारी दे रही थी बिंदु भाटे। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

परशुराम पर श्रीराम का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने के साथ ही राजा जनक का धनुष यज्ञ पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। मिथिलेश को अपने सम्मुख नतमस्तक देख मुनिवर विश्वामित्र बोले, हे राजन, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। फिर भी ब्राह्मणों, कुलगुरु तथा अन्य आदरणीय जनों से पूछकर जो भी आपके कुल की रीतियां हों उन्हें पूरा कीजिए। अयोध्या दूत भेजकर राजा दशरथ को ये शुभ संवाद दीजिए ताकि उनके आगमन पर ये मंगल कार्य विधिपूर्वक पूरा हो सके। दूत अयोध्या को चले और इधर राजा जनक ने सगे संबंधियों तथा राज कर्मचारियों को पूरी नगरी, बाजार, राजमार्गों, भवनों, देवालयों को सजाने के आदेश दिए। मंडप बनाने वाले कुशल कारीगरों को बुला भेजा गया जिन्होंने हरित मणियों के पत्तों तथा फूलों और पद्मराग माणिकों के फलों से ऐसा मंडप बनाया जिसकी शोभा देख ब्रह्मा भी अपनी रचना भूल गए। भांति भांति के माणिक मोतियों, बहुमूल्य रत्नों तथा अन्य उपकरणों से नगर की सजावट होने लगी। जिस मंडप में जनक नंदिनी दुल्हन और रूप और गुणों के भंडार श्री राम दुल्हा होंगे वो मंडप त्रिलोक में अनूठा होना ही चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब आपको कार्यक्रम विवरण में आज दिनभर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपका पत्र। फिल्म संगीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 8:30 और इस कार्यक्रम में कुछ बातें अभिनेत्री साधना की होगी और उनके अभिनय से सजे कुछ गीत भी हम इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे। प्रातः 9:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत और इस कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे शोभा राम और साथियों के गाए लोक गीत। सुगम संगीत आप सुनेंगे प्रातः 9:15 और कलाकार होंगी अनीता उपाध्याय। प्रातः 9:30 आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे अब्दुल हमीद का वॉयलिन वादन राग नट भैरव। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित की जाएगी प्रातः 10:05 पर सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। और अब आपको जानकारी दे दें हमारी दिन की सभा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र यानी मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में, तो 11:00 आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करे गीत सुने। दिन में 12:00 फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं। 12:30 कार्यक्रम सुनेंगे संग्रह लाइव।

लोक संगीत आप सुन सकेंगे दिन में 1:30 बजे, दिन में 1:45 पर सुनिएगा सुगम संगीत, और 2 बजे फिल्मी गीतों का आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत में। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं दोपहर 2:30 बजे भी। और अब आपको जानकारी दे रहे हैं हमारी आज की सांधिकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। तो संध्या 5 बजे आप सुनेंगे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी, और आज के इस कार्यक्रम के आकर्षण रहेंगे आरंभिक चर्चा में आप सुनेंगे विश्व नारियल दिवस के संदर्भ में जानकारी, और आज का क्रम है एक ही फिल्म से, तो ये जानकारी आप सुन सकेंगे एक ही फिल्म फिल्म के अंतर्गत। फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे संध्या 5:45 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग आप सुनेंगे संध्या 6 बजे, और 6:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अनीता उपाध्याय की गाई कुछ रचनाएं। लोक संगीत का समय रहेगा 6:45 पर, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे शोभा राम और साथियों के गाए लोकगीत। खेती गृहस्थी कार्यक्रम संध्या 7:20 पर आप सुनेंगे ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम, और आज के इस कार्यक्रम के कुछ खास आकर्षण आपको बता दें, भेंटवार्ता सुनवाएंगे प्रगतिशील कृषक अंतिम पटेल से खरीफ फसलों पर समसामयिक चर्चा, सुनीता पंडित से की गई वार्ता आप सुनेंगे। रात्रि 8 बजे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप सुनेंगे सुर्खियों में दिल ने फिर याद किया, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 8:15 बजे। चित्रपट संगीत का समय रहेगा रात्रि 9:15 बजे, और 9:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे चर्चा का विषय है, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शंघाई सहयोग संघटनस्य सदस्य देशानां आह्वानं कृतवान् यत् आतंकवादस्य वित्तपोषणं आतंकवादीनां संघटने प्रवेशः उग्रवादस्य प्रसारः आतंकवादीनां सुरक्षिताश्रयस्थलानि च समाविष्टं संपूर्णं तंत्रं उन्मूलयेत्। ह्यः बिश्केक नगरे आयोजितं शंघाई सहयोग संघटनस्य षड्विंशतितमं शिखर सम्मेलनं संबोधयन् प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् आतंकवादस्य विषये द्विविधवान् मानदण्डानां किमपि स्थानं न भवितुमर्हति। विदेशमन्त्रालयस्य पश्चिमविभागस्य सचिवः सीवी जॉर्ज वार्ताहर सम्मेलने अवदत् यत् प्रधानमंत्री विश्वस्य विभिन्नेषु भागेषु प्रवर्तमानानां संघर्षाणां विषये चिन्तां प्रकटितवान्। सदस्य देशानां नेतारः संघटनस्य पञ्चविंशतितम वर्षपूर्त्यवसरे बिश्केक घोषणापत्रे हस्ताक्षरम् अपि कृतवन्तः। शिखरसम्मेलनस्य समापनम् आतंकवाद प्रतिरोधः ऊर्जा आपद्व्यवस्थापनम् अंकीय सहकारिता चेति विषयान् समाविश्य त्रयोदश प्रमुख परिणामैः सह अभवत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां जलशक्ति मंत्रालयस्य विभागीय शिखर सम्मेलनस्य समापन सत्रं संबोधयिष्यति। ह्यः प्रारब्धमिदं द्विदिवसीयं विभागीय शिखर सम्मेलनं प्रधानमंत्रिणा टीम इंडिया इत्यस्य भावनां सुदृढीकर्तुं सहकारात्मक संघवादं च अधिकं सुदृढीकर्तुं परिकल्पितानां विभागीय शिखर सम्मेलनानां श्रृंखलायाः प्रथमं सम्मेलनमस्ति। अस्मिन् शिखर सम्मेलने केन्द्र राज्य प्रशासनानि महत्वपूर्णानां क्षेत्रीय प्राथमिकतानां विषये विचार विमर्शं करिष्यन्ति।

0: समयबद्धाः कार्ययोजनाः च निर्मास्यन्ति। शिखरसम्मेलने चतुर्षु प्रमुखक्षेत्रेषु विशेषं ध्यानं दीयते। तेषु जलसंरचना परियोजनानां समयबद्धं कार्यान्वयनं, जलसंचय जनभागीदारी कैच द रेन इत्येतत्, पेयजलस्रोतसां स्थायित्वं, जल जीवनोपक्रमः च सम्मिलिताः सन्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन अद्य छत्तीसगढ़े रायपुरस्य यात्रां करिष्यति। स्वीय यात्रावधौ उपराष्ट्रपतिः रायपुरस्य अखिल भारतीयायुर्विज्ञान संस्थानस्य तृतीये दीक्षांत समारोहे भागं ग्रहीष्यति। बेल्जियम देशस्य प्रधानमंत्री बा डी वेबर अद्यारभ्य भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। यात्रावधौ सः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां समग्र परिदृश्यस्य, परस्पर हित सम्बद्धानां क्षेत्रीय वैश्विक विषयाणां च विषये द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघयोः मुक्त वाणिज्य संधेः सन्दर्भे आयोजितं व्यावसायिक कार्यक्रममपि सम्बोधयिष्यति। सः मुंबई नगरमपि गमिष्यति, यत्र हीरक क्षेत्रस्य पत्तन व्यवस्थायाः, परिवहन आपूर्ति व्यवस्थायाश्च प्रतिनिधिभिः सह विचार विनिमयं करिष्यति। विदेश मंत्रालयस्य अनुसारं एषा यात्रा भारत बेल्जियम देशयोः सहभागितां सुदृढीकर्तुं महत्वपूर्णमवसरं प्रदास्यति। सममेव व्यापार विनियोगयोः रक्षायाः सुरक्षायाश्च प्रौद्योगिक्याः नवीकरणीयोर्जायाः सम्पर्कस्य अथ प्रतिजनसम्बन्धानां च क्षेत्रेषु पारस्परिकहितस्य सहयोगमपि वर्धिष्यते। नेपालस्य प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहः उक्तवान् यत् गतसप्ताहे तिब्बत क्षेत्रात् भोटेकोशी नद्याः मार्गेण रसुवा प्रदेशं प्रविष्टः विनाशकारी जलाप्लावः वायुमण्डल परिवर्तनस्य परिणामः अस्ति। नेपालदेशे सहसा आगतस्य विनाशकारिणः जलाप्लावस्य कारणेन मृतानां संख्या 85,000 पर्यन्तं वर्धिता अस्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पुनः लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता जताई।
2: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुपुर्द करेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे। उन्होंने नागरिकों से देश की प्रगति में योगदान जारी रखने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार की नीतियां और इरादे सही हैं। देश में कच्चे तेल के बाद सोना ही ऐसी दूसरी वस्तु है जिसका सर्वाधिक आयात किया जाता है। सोने की थोक मात्रा में खरीद बंद करने से देश की कुल आयात बिल में भारी कमी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में मापने योग्य सुधार हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक सहायता, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4,000 क्विंटल से घटाकर 2,000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15

0: सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। नई भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगाना, चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों में स्थिरता लाना है। चीनी भंडारण की नई समय सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यापारी स्टॉक को प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक नहीं रख सकता है और देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंचा और इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर तथा दिल्ली एनसीआर में वितरित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कल केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी गई और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के विरुद्ध जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी ये यात्रा भारत बेल्जियम के बीच आपसी साझेदारी को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज ग्वांगडोंग प्रांत के शेनजेन में आयोजित चाइना मास्टर सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पुरुष युगल में खेलते नजर आएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर सुन रहे हैं। और अब कुछ सूचनाएं हम आपको दे रहे हैं।
2: श्रोताओं, FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर विविध भारती के इंदौर केंद्र से प्रति शुक्रवार सुबह 11:32 से सुनिए साइबर जागरूकता पर केंद्रित सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। इस कार्यक्रम में IT विशेषज्ञ, स्टेट साइबर सेल इंदौर के आला अधिकारी, साइबर ठगी से जागरूक कर रहे संस्थान के विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में उपस्थित होते हैं। तो आप भी सीधे हमारे टेलीफोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो जुड़िए हमारे कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान से और अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान जानिए। सुनते रहिए विविध भारती का इंदौर केंद्र FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान प्रति शुक्रवार सुबह 11:32 से 12 बजे तक।
3: CERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: श्रोताओं, अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे आपका पत्र कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम से आप भी जुड़ सकते हैं। आप हमें अभी ईमेल कर सकते हैं और ईमेल की आईडी हम आपको बता दें, आपका पत्र AIR@gmail.com। इसे एक बार पुनः सुन लीजिए, APKAPATRAAIRINDORE@gmail.com। आपका पत्र AIR@gmail.com पर आप हमें अभी ईमेल करें और आप हमारे जो कार्यक्रम सुन रहे हैं उसकी समीक्षा आप कर सकते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं आपका पत्र कार्यक्रम के माध्यम से 7:20 से 8 बजे तक। सूचना समाप्त हुई।

0: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज ग्वालियर में प्रदेश स्तरीय बलराम जयंती महोत्सव में शामिल होंगे। प्रदेश कैबिनेट ने आरजीपीवी के पुनर्गठन के साथ 3 नए प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी और इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में शेरनी सुंदरी ने 2 शावकों को जन्म दिया, मां और दोनों शावक स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। ये शिखर सम्मेलन केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श करेगा और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करेगा। शिखर सम्मेलन 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है: जल अवसंरचना परियोजना का समयबद्ध कार्यान्वयन, जल संचय जनभागीदारी कैच द रेन, पेयजल प्राणियों के स्रोतों की स्थिरता तथा जल जीवन मिशन 2.0 शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज ग्वालियर के मेला मैदान में आयोजित प्रदेश स्तरीय बलराम जयंती महोत्सव में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवपुर में आयोजित बलराम महोत्सव को वर्चुअली संबोधित

0: चौहान ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की समीक्षा की। बैठक में चिन्हित 100 जिलों में योजना में तेजी लाने, योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने और किसानों के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये योजना 6 प्रमुख उद्देश्यों पर केंद्रित है, कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, फसल कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाना, सिंचाई अवसंरचना में सुधार करना, अल्पकालिक और दीर्घकालिक कृषि ऋण तथा अधिक पहुंच अल्पकालिक और दीर्घकालिक कृषि ऋण तक अधिक पहुंच को सक्षम बनाना और शासन तथा सेवा वितरण में सुधार करना शामिल है। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम इस महीने की 15 तारीख से इस वर्ष 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। नई भंडार सीमा का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगाना, पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करके उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और कीमतों में स्थिरता लाना है। संशोधित प्रावधानों के तहत कोई भी चीनी व्यापारी किसी भी भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकता है। चीनी व्यापारी देशभर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकते हैं। सतना जिले में लगातार बारिश होने से मंदाकिनी, टमस और सिमरावल सहित कई नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी कर राहत और बचाव दलों को सक्रिय किया है। चित्रकूट के प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी बचाव कार्य में जुटी हैं। कलेक्टर डॉ सतीश कुमार ने लोगों से नदी नालों और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है।
1: सतना जिला में कल रात कई इलाकों में 8 से 10 सेंटीमीटर का बारिश 3 से 4 घंटे के अंतराल में गिरा है। उसके कारण सतना का सभी नदी और नाला उफान पर है। हमने सभी जगह को सुबह 6 बजे सभी जगह को हमने अलर्ट जारी किया है। लोगों से ये अपील है कि काफी लोगों को नुकसान हुआ है, वो दुखी भी है, तो हम सुचार कर रहे हैं, बट हमने ये बता रहे हैं कि वो अकेले नहीं है। सब आपदा किसी एक को टारगेट करके नहीं आया, सबको आया है, सब इसमें सब लोग मिले हुए हैं और जो भी उनका नुकसान है उसका भरपाई किया जाएगा, सर्वे किया जा रहा है, जो भी उचित उनका मुआवजा सब चीज मिल जाएगा, बट अभी के लिए सुरक्षित रखें, हिम्मत रखें, ये हमने।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में करीब 41,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की जानकारी कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि आरजीपीवी का पुनर्गठन कर भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में 3 नए प्रौद्योगिकी और कौशल विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। वहीं सामाजिक न्याय विभाग में 9 गठित जिलों के लिए नए पदों को भी मंजूरी दी गई। किसानों के हित में ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन की सीमा 25 से बढ़ाकर 60% कर दी गई है। वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक सुखद खबर है। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में शेरनी सुंदरी ने 2 शावकों को जन्म दिया है। जू प्रबंधन के अनुसार दोनों शावक और उनकी मां स्वस्थ हैं और फिलहाल गुफा में सुंदरी के साथ हैं। शावकों का अभी लिंग परीक्षण नहीं किया गया है। इनके जन्म के बाद जू में शेरों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। जू प्रबंधन शावकों के स्वास्थ्य और गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहा है। पूरी तरह स्वस्थ होने और विकास की पुष्टि के बाद ही उन्हें दर्शकों के सामने लाया जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भोपाल में आईसेक्ट ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज की ओर से एजीयू स्पोर्ट्स अचीवर्स अवार्ड 2025-26 समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 148 खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार ने आयोजन के बारे में जानकारी दी।
3: कि मैंने आज से करीब 8-10 साल पहले मध्य प्रदेश की एकेडमी छोड़ी थी और आज भी मध्य प्रदेश मुझे याद करता है। इस अवसर पर जब खिलाड़ियों के उत्थान की बात आती है, उनके अचीवमेंट के बाद उनको इंसेंटिव देने की बात आती है, तो यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छे तरीके से, रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के पूरे मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से उन बच्चों को देखभाल करके अपने पास अपने एडमिशन में रखा। कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ खेलो और मेडल जीतो, तो इससे बढ़कर मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसेंटिव, कोई भी कार्य दूसरे नहीं हो सकते जो यूनिवर्सिटी कर रही है खिलाड़ियों के लिए।

भोपाल में वंदे मातरम के 150वें वर्ष के अवसर पर कल 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए गए। डीबी सिटी मॉल में आयोजित कार्यक्रम में 43 अलग अलग वाद्ययंत्रों के साथ वंदे मातरम के थीम पर संगीत प्रस्तुति दी गई। वहीं 200 से अधिक विद्यार्थियों ने सामूहिक गायन किया और 150 से अधिक छात्राओं ने कथक नृत्य प्रस्तुत किया। आयोजकों के अनुसार इन तीनों उपलब्धियों को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य वंदे मातरम के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को नई पीढ़ी से जोड़ना था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला में कल शाम से वर्षा का दौर जारी है। कभी तेज तो कभी हल्की बारिश होने से मौसम में ठंडक बढ़ गई है। नर्मदापुरम कलेक्टर ने कल आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं सुन निराकरण के निर्देश दिए। जबलपुर भोपाल मार्ग का शहपुरा भिटौनी टोल अस्थायी रूप से बंद रहेगा। फ्लाईओवर ब्रिज के क्षतिग्रस्त होने और लगातार हो रहे विरोध के बीच यह निर्णय लिया गया है। खंडवा में कल जेसीआई द्वारा माटी के श्री गणेश कार्यशाला का शुभारंभ भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया। आगर मालवा कलेक्टर डॉ शेर सिंह मीना ने कल जिले के हाईवे और मुख्य मार्गों के गांवों में संचालित गौशालाओं के संचालकों की बैठक ली। पन्ना में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई और किसानों के देवता बलदाऊ जन्मोत्सव आज मनाया जाएगा। अशोकनगर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर एक दिवसीय श्री कृष्ण पर्व गरिमा अनुरूप मनाया जाएगा। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। झाबुआ में कल साप्ताहिक जन सुनवाई के साथ स्वरोजगार दिवस का भी आयोजन किया गया। सेंट्रल जेल इंदौर में आयुष विभाग द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 253 मरीजों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब सुनिए आपका पत्र कार्यक्रम।

0: नमस्कार श्रोताओं, आपका पत्र कार्यक्रम के साथ आज हमारे बीच में हमारे दो प्रस्तुत हैं, हमारे कार्यक्रम प्रमुख सिद्धार्थ भूषण जी और कार्यक्रम अधिकारी प्रीति गजभिये जी आज हमारे बीच में हैं। तो श्रोताओं, सबसे पहले तो हम आप सभी का अभिवादन कर रहे हैं।
1: सभी को मेरा सुप्रभात, नमस्कार।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, आपको भी अच्छा लग रहा होगा ना, बहुत सुखद लग रहा होगा, क्योंकि सुखद होती है भौर। प्रातःकालीन ये बेला हम सभी को बहुत भाती है, और जब पंछियों की चहचहाट जब हमारे कानों में गूंजती है तो ये पूरा जो सुबह का वातावरण बहुत ही मधुरम हो जाता है। और उसी मधुरम को आगे बढ़ाते हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से, सुबह से ही जब आप यानी कि 6:05 से जब आप वंदना सुनते हैं तो भक्ति के सुरों से ऐसे मग्न हो जाते हैं, और हमारे बहुत सारे लोगों की दिनचर्या ही इस कार्यक्रम के माध्यम से शुरू होती है। और उसके बाद में चिंतन का वक्त आता है, तो चिंतन के माध्यम से बहुत कुछ सुनने को मिलता है। हम बहुत सारे विषयों पर चिंतन करते हैं, और बहुत सारे विशेषज्ञों के माध्यम से जो जानकारी चिंतन के रूप में दी जाती है वो सब भी आपके लिए बहुत लाभप्रद होती है। और उसके बाद में आता है खेती की बातें, और प्रीति जी आप बताइए खेती की बातें के बारे में।
2: जी, खेती की बातों में हम अपने श्रोताओं को खेती से जुड़ी हुई वो सारी जानकारी देते हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण रहती है, समसामयिक रहती है, और उसमें हम विषय विशेषज्ञों द्वारा भी जानकारी देते हैं जो उनके लिए खेती के लिए जरूरी है।
0: बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात यह है कि खेती की बातें जो जानकारी हम देते हैं वो मालवी और निमाड़ी
2: जी।
0: क्योंकि मालवा और निमाड़ क्षेत्र की दो प्रमुख बोलियां हैं, और उन्हीं बोलियों में हम जानकारी हमारे किसानों तक पहुंचाते हैं। और उसके बाद आती है बारी श्री रामचरितमानस कान की। हजारों हजार करोड़ों श्रोता इस कार्यक्रम को सुनने के लिए प्रातः रेडियो सेट खोल लेते हैं। श्री रामचरितमानस गान आज भी हमारी आस्था का प्रतीक है, और इसके माध्यम से श्री रामचरितमानस के हर प्रसंग को हम लोग अलग अलग दिनों में लेकर आते हैं और सुनवाते हैं। और श्रोताओं, आज आप बहुत कुछ जानेंगे। आपके पत्र जो हमें मिल चुके हैं, ईमेल के माध्यम से मिल रहे हैं, ढेर सारे पत्र आए भी हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। बस छोटी सी चर्चा हम कर रहे थे, क्योंकि आज हमारे बीच में सिद्धार्थ भूषण जी आए हैं और ये उनका पहला कार्यक्रम भी है, तो इसलिए हम उन्हीं के मुख से यानी उनसे जानना चाहेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है इस कार्यक्रम में शामिल होकर।
1: धन्यवाद मुकाम जी, आज मैं आपको आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ सबसे पहली बार, और ये कार्यक्रम यहाँ पर मैंने आके पता करा कि इतना महत्वपूर्ण है, लोग इतना चाहते हैं इस प्रोग्राम को कि दूर दूर तक इसकी ख्याति फैली हुई है, और सवेरे उठते ही वो अपने दिन की शुरुआत इससे करते हैं। इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है।
0: बिल्कुल, और लोगों में बहुत जिज्ञासा भी है, क्योंकि पिछले कार्यक्रम प्रमुख राजेश जी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे और अब सिद्धार्थ जी हैं, तो लोगों ने तो पत्र भेजे हैं और आपका स्वागत भी लिखा है कि सिद्धार्थ जी इस कार्यक्रम को करेंगे, हम बहुत उत्सुक हैं, और क्या उनके द्वारा क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएगी इसके विषय में भी लोग जानना चाहते हैं। लेकिन प्रीति जी भी आज हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं, तो प्रीति जी खेती गृहस्थी कार्यक्रम है, ग्राम सभा है, महिला सभा है, ये सारे कार्यक्रम आप देख रही हैं, तो आप हमारे सुनने वालों से क्या कहना चाहेंगी इन कार्यक्रमों के संदर्भ में।
2: मैं अपने श्रोताओं को सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि आप जिन भी कार्यक्रमों की समीक्षा या प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, और पर कुछ ऐसे कार्यक्रम रहते हैं जिनकी समीक्षा हम तक पहुंच नहीं पाती या फिर हमारे श्रोता उनको ज़्यादा सुनते नहीं हैं। तो जैसे हमारा प्रत्येक माह के चौथे गुरुवार को दिव्य धारा कार्यक्रम, जो कि संस्कृत में प्रसारित किया जाता है, उसकी समीक्षा भी अगर हमारे श्रोता हम तक पहुंचाएं। इसी तरीके से विकसित होता भारत जो कार्यक्रम है, हर शनिवार को 6:00 प्रसारित किया जाता है, तो उस कार्यक्रम की भी समीक्षा प्रतिक्रिया हम तक पहुंचे। और ऐसे कई सारे कार्यक्रम हैं जो हमारे श्रोता हम तक उसकी समीक्षा पहुंचा नहीं पाते हैं, तो हमें खुशी होगी अगर वो सारे कार्यक्रमों की सुने और इन कार्यक्रमों की समीक्षा भी हम तक पहुंचाएं।
0: और श्रोताओं, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देना चाह रहे हैं इस सोमवार यानी आगामी जो सोमवार है, और भादव मास की दूसरी सवारी यात्रा यानी कि अंतिम सवारी यात्रा निकाली जाती है बहुत सारे स्थानों पर, लेकिन अगर भगवान श्री महाकालेश्वर की बात करें तो यहाँ पर राजसी सवारी यात्रा का जो निकाली जाती है और उसका सजीव प्रसारण लेकर हम आ रहे हैं इस सोमवार को यानी कि 7 सितंबर को। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा जो पूरे 8 घंटे का होगा।
2: जी हाँ श्रोताओं, ये सजीव कार्यक्रम हम आपको आप तक लेकर आएंगे 7 सितंबर को, तो सुनना ना भूलें और ट्यून करिए आकाशवाणी इंदौर।
0: और प्रीति जी बताना चाहेंगे कि 8 सितंबर को दिन में 2 बजे से रात के 10 बजे तक पूरे 8 घंटे का सतत प्रसारण होगा। ये रेडियो इतिहास में एक रिकॉर्ड होगा क्योंकि इतना लंबा किसी नॉन स्पोर्ट्स इवेंट में इतना लंबा जो सजीव प्रसारण है वो हमारे आकाशवाणी के सभी 19 केंद्रों से यानी कि सभी प्राइमरी, सभी विविध भारती यानी विविध भारती के 3 केंद्र हैं इंदौर, भोपाल और जबलपुर, यहां से और सारे जो आकाशवाणी के चाहे प्राइमरी चैनल हो

0: LRS हो और या FM चैनल हो, उन सब मध्य प्रदेश स्थित सभी प्राइमरी और आकाशवाणी के साथ साथ विविध भारती केंद्रों से ये महाप्रसारण जो है 7 तारीख को किया जाएगा और इस महाप्रसारण का आनंद लेंगे आप उज्जैन से। हमारी इंदौर और उज्जैन की टीमें चप्पे चप्पे पर महाकाल सवारी मार्ग पर उपस्थित रहेगी और हर पल का विवरण आप तक पहुंचाएगी, तो श्रोताओं मिस मत कीजिएगा। इतना बड़ा प्रसारण, इतना बड़ा इवेंट, अगर आप सभी धार्मिक आस्था रखते हैं तो जरूर सुनिएगा भगवान श्री महाकालेश्वर की राजसी सवारी का विवरण। और समय आपको बता दिया, दिन में 2 बजे से रात के 10 बजे तक।
1: और इसके माध्यम से आप ये महसूस कर पाएंगे कि हम भी वहाँ पर मौजूद हैं और आपकी आस्था वहाँ तक जुड़ेगी। और जैसा कि अभी मुकाम जी ने बताया कि हमारे देश में त्योहारों का बहुत महत्व है
0: जी,
1: और त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है।
0: बिल्कुल,
1: और
0: बिल्कुल आपने त्योहारों का जिक्र किया है तो जन्माष्टमी का भी जिक्र कर दीजिएगा।
1: हाँ, जैसा कि जन्माष्टमी बस आने ही वाली है और कई जगह पे तो जन्माष्टमी शुरू भी हो चुकी
0: बिल्कुल
1: है। तो और मिठाइयों का आनंद लीजिए
0: जी,
1: और अपना सभी को अग्रिम मुबारक हो, अग्रिम मेरी तरफ से शुभकामनाएं।
0: बिल्कुल, और प्रीति जी जन्माष्टमी पर्व जब मनता है तो मथुरा से आकाशवाणी के सभी केंद्रों से सीधा प्रसारण किया जाता है, इस बार भी होना है। तो हमारे श्रोता बहुत प्रतीक्षा करते हैं क्योंकि साल में एक बार ही होता है जब भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा से हमें उनका जन्मोत्सव रेडियो के माध्यम सुनने को मिलता है।
2: और वैसे भी देखिए, भारत विविधताओं का देश है
0: जी,
2: और यहाँ मनाए जाने वाले प्रत्येक पर्व के पीछे हमारी समृद्ध संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों की एक सुंदर कहानी छिपी होती है। इन्हीं प्रमुख पर्वों में से एक है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जिसका आप रेडियो पर प्रसारण सुन सकते हैं।
0: बिल्कुल, ये हर वर्ष जो है प्रसारण होता है और इस बार 4 सितंबर को ये प्रसारण होगा रात्रि में। सबको लोगों को, हमारे सारे सुनने वालों को लगभग लगभग पता ही है, तो इस महा आयोजन का भी आप आनंद ले सकते हैं। और चूंकि जन्माष्टमी के दिन लगभग लगभग सभी लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, और एक बड़ा आयोजन जो होता है रात्रि में मटकी फोड़ का, और उसकी धूम तो हम सभी के जो है मन मस्तिष्क में बैठी हुई है। सिद्धार्थ जी आप बताइए ना, किस तरह से बचपन में जो है मटकी फोड़ का जो आनंद आप लेते थे और अभी भी वो यादें आपके दिमाग में बनी हुई है।
1: जो जन्माष्टमी का आनंद तो प्रमुखतः बच्चे ही लेते
0: जी,
1: हैं
0: जी,
1: और वो आपस में जो,
0: इसीलिए हमने बचपन का ही नाम लिया।
1: हाँ, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल भी, उन्होंने जो अटखेलियां की हैं
0: जी,
1: और जो उनके बचपन की कहानियां सब लोगों को सुनाई जाती हैं
0: जी,
1: वो हम रिलेट कर पाते हैं अपने बच्चों से।
0: बिल्कुल,
1: और उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। पहली बात तो स्कूल की छुट्टी रहती है।
0: हाँ,
1: तो छुट्टी का आनंद लेते हैं और साथ में मिलके खेलते हैं। और जैसा कि अभी मैं महाराष्ट्र से भी लौटा हूँ, तो महाराष्ट्र में भी इसका बहुत ही जोरों शोरों से आयोजन किया जाता है।
0: हाँ,
1: सभी लोग मग्न रहते हैं अपने इस कार्यक्रम में।
0: हाँ,
1: और मटकी फोड़ का जगह जगह पे आयोजन किया जाता है।
0: बिल्कुल, और इंदौर में भी बहुत सारी जगह, जो अगर देखें तो प्रमुख स्थान जो है बहुत प्राचीन मंदिर है गोपाल मंदिर, जो कि राजवाड़ा क्षेत्र में स्थित है, और वहां पर मटकी का एक बड़ा आयोजन होता है और लाखों, मतलब हमारे एक तरह से के हजारों जो है लोग वहां पर पहुंचते हैं और इससे बड़े आयोजन का आनंद लेते हैं। वैसे मैंने कहा कि आयोजन की बात करें तो जो मथुरा से हम सीधा प्रसारण ही लोगों को सुनवाते हैं और भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव होता है किस तरह से होता है, सब कुछ पल पल का विवरण हमें इस लाइव प्रसारण के माध्यम से मिल जाता है।
2: तो मुकाम जी, अब पत्रों का सिलसिला जारी करते हैं क्योंकि हमारे श्रोता भी इंतजार कर रहे होंगे कि कब उनके पत्र पढ़े जाए।
0: बिल्कुल, चूंकि अब बहुत सारे पत्र आ चुके हैं, तो ये पहला पत्र आया है पद्यावती कॉलोनी सनावत से राजेश साध, मनीषा दृष्टि और नक्ष साध का। ये लिखते हैं कि आकाशवाणी इंदौर के सभी उद्घोषकों को हमारा सादर प्रणाम। आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम मैं 32 वर्षों से सुन रहा हूं, जिसके हर कार्यक्रम में मेरे और मेरे परिवार के दिलों में जगह बनाई हुई है। सभी उद्घोषकों द्वारा सादगी और सरलता के साथ कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जिसकी सराहना के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। कार्यक्रम मनभावन, लोकगीत, युववाणी जैसे सुहावने और मदमस्त ज्ञान

0: वर्धक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हमें बहुत पसंद है। मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि बहुत दिनों से आकाशवाणी को पत्र नहीं लिख पा रहा था, लेकिन अब वादा करता हूं कि लगातार कार्यक्रम सुनूंगा भी और पत्र भी लिखूंगा।
1: कार्यक्रम सुनने के लिए हमारे उद्घोषकों तक अपनी प्रतिक्रिया पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी।
1: आपकी प्रतिक्रिया हमें बेहतर कार्यक्रम प्रस्तुत करने की प्रेरणा देती है। आप इसी तरह पत्र लिखते रहिए, ईमेल करते रहिए और आकाशवाणी इंदौर से जुड़े रहिए।
0: बिल्कुल प्रीति जी और सिद्धार्थ जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि स्क्रीन पर हम देख रहे हैं ढेर सारे मेल प्राप्त हो चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि फटाफट हमको मेल पढ़ना होंगे और आप भी फटाफट जवाब देते जाइएगा आप दोनों। बिल्कुल ये पत्र जो है मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है और ये प्राप्त हुआ है खरगोन जिले के सनावत क्षेत्र से। लिखने वाले हैं हुकुम चंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, मिश्रा गोल्डन, केपीएस चौहान, दीपक सचिन कटारिया, कृष्णा विराज, अर्नव काव्यांशी और प्रभा कटारिया। हमारे ढेर सारे श्रोताओं के नाम है इस पत्र में और बहुत लंबी बातें भी है, तो हम आपको बता दें। ये लिखते हैं कि आदरणीय दोनों प्रस्तुतकर्ताओं को सादर प्रणाम। वैसे आज तीन प्रस्तुतकर्ता है हमारे बीच में, दो से ज्यादा, यानी एक कदम और हम आगे बढ़ चुके हैं जी बिल्कुल। तो आपको बता दें और नमस्कार, सितंबर माह के सभी त्योहारों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 26 अगस्त का आपका पत्र कार्यक्रम सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। आदरणीय राजेश जी और मुकाम सिंह चौहान जी की प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। कम से कम 24 से 25 पत्रों का इस कार्यक्रम में समावेश था। इतने अच्छे आयोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ये लिख रहे हैं कि विजया जैन जी ने एक से बढ़कर एक गीतों का समावेश किया था और बहुत अच्छा खुशनुमा बना दिया था और उनकी सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने चॉइस टाइम कार्यक्रम का जो कि 26 तारीख को प्रसारित उसका बता रही हैं। 28 अगस्त को इंदौर परिक्रमा कार्यक्रम सुनने को मिला और इस अवसर पर राखी पर्व पर बहन और भाइयों के पवित्र बंधन रक्षाबंधन के अवसर पर यह राखी बंधन है ऐसा गीत सुनकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई और संस्कृत दिवस और श्रावणी के बारे में भी जानकारी दी गई थी। संस्कृत दिवस 1969 भारत सरकार के आदेश अनुसार संस्कृत दिवस मनाया जाता है। चार वेदों के साथ साथ वेदांतों और अंश के बारे में भी जाना अच्छा लगा। संस्कृति के बिना कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता है। वह गांधी जी के विचार थे और मिला जुला जो कार्यक्रम था इंदौर परिक्रमा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहा है। और राखी पर्व पर माजिदा खान की प्रस्तुति सुनने को मिली और बहुत सारे गीत जो थे राखी से संदर्भित वो मिले, इसलिए इन्होंने माजिदा खान को भी धन्यवाद कहा है। और आगे लिख रहे हैं कि योग निरोग कार्यक्रम का प्रसारण किया गया था। डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद से प्रदूषण के कारण विभिन्न प्रकार के विकारों के बारे में जो जानकारी इस योग निरोग में दी गई थी वो हमें अच्छी लगी। प्राणायाम द्वारा हम किस तरह से ठीक हो सकते हैं ये भी हमें सुनने को मिला हमारे योग निरोग कार्यक्रम में। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि प्रीति जी इनका पत्र बहुत लंबा है, लेकिन इन कार्यक्रमों के बारे में जरूर बताइए।
1: जी एक तो इन्होंने आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रमों को सुना और सुनकर इतने विस्तार में अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुँचाई, इसके लिए हुकुम चंद कटारिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
0: बिल्कुल,
1: आपकी प्रतिक्रिया हमें मतलब कि इस तरीके के आत्मीय पत्र और बहुमूल्य प्रतिक्रिया के लिए हम अपने श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो कार्यक्रम को सुनकर और फिर उसकी ऐसी समीक्षा हम तक पहुंचाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो ये बहुत ही बड़ी बात है।
0: बिल्कुल, और आगे भी इनका पत्र भी बचा हुआ है। बिल्कुल सिद्धार्थ जी कहना चाहते हैं जी।
2: हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमें इतनी तल्लीनता से सुनते हैं और हमारे इन कार्यक्रमों को इतना सराहते हैं। आपकी ये प्रेरणादायक शब्द ही हमारा हौसला बढ़ाते हैं और हम इसको और भी बेहतर करने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे।
0: बिल्कुल, तो आगे इनके पत्र को हम और पढ़ देते हैं। बता दें कि गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम भी सुना और जन्माष्टमी पर्व पर, यानी कि जन्माष्टमी पर केंद्रित इस कार्यक्रम में गुड मॉर्निंग इंदौर में जो व्यक्ति इस्कान टेम्पल से आए थे
1: जी
0: और स्वामी जी ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी थी इसके बारे में, ये बता रहे हैं। फोटोग्राफी चित्रकार सचिन मतकर जी से पंढरपुर यात्रा के विषय में बहुत कुछ जानने को मिला और आर्यन शर्मा,

0: उज्जैन महाकाल सवारी के विषय में भी उन्होंने जानकारी दी थी, वो भी इन्हें अच्छी लगी। और 31 अगस्त को आकाशवाणी इंदौर परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, उसमें भी हम यहाँ सहभागी हुए, इसके लिए पूरी आकाशवाणी को हम धन्यवाद कहते हैं।
1: क्या बात है। गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि ये हमारा दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम है और इसके माध्यम से हम इंदौर में जो समसामयिक गतिविधियाँ होती है उसका कवरेज करके अपने श्रोताओं तक पहुँचाते हैं।
0: बिल्कुल। और अगला भी ईमेल दिख रहा है और ये आया है जसवाड़ी जिला खंडवा से, दुर्गेश नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे का। ये लिखते हैं कि नमस्कार, हमें आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। दिनांक 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार था और कार्यक्रम महिला सभा हमें बहुत अच्छा लगा। तो महिला सभा की जो कार्यक्रम अधिकारी है प्रीति जी हमारे बीच बैठी हुई है, प्रीति जी कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा लग रहा है। कार्यक्रम पसंद करने के लिए, सराहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और मैं बताना चाहूंगी कि हमारा महिला सभा कार्यक्रम हफ्ते में 3 दिन प्रसारित किया जाता है, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को, जिसके लिए हमारे कंपेयर कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी प्रस्तुति आप तक पहुँचाते हैं और आप फिर ईमेल के माध्यम से उनकी प्रस्तुति को सराहते हैं। इससे बढ़कर बात और क्या हो सकती है?
0: बिल्कुल। ये लिख रहे हैं कि आधुनिक समाज में रक्षाबंधन का बदलता स्वरूप विषय पर दी गई जानकारी बेहद लाजवाब रही और रक्षाबंधन पर आधारित फिल्मी गीत जो बहुत ही कर्णप्रिय थे और इसके लिए शिखा साहू को बहुत बहुत धन्यवाद कहा है
1: जी।
0: और अगला ईमेल भी हमें दिखाई दे रहा है और ये ईमेल प्राप्त हुआ है धर्मपुरी जिला धार से, शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर अयान, फैजान, सुमेरा, कशिश, साइमा, हसनैन और खुशी का है। और ये लिखते हैं कि दिनांक 24 अगस्त को प्रातःकालीन बेला में प्रसारित कंपेयर्ड फिल्म संगीत बहुत पसंद आया। इस प्रोग्राम में कतिपय संगीतकारों और अपनी सुरीली आवाज से गीतों को अमर कर देने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकारों पर केंद्रित यह प्रस्तुति संगीत की दुनिया का मनोहारी सफर रहा, जहां सुर, साज और स्वर मिलकर भावनाओं की इबादत लिखते हैं। चयनित गीतों ने स्मृतियों के बंद दरवाजे खोल दिए और प्रस्तुति ने हर नगमे की आत्मा को बड़ी खूबसूरती से श्रोताओं तक पहुंचाया। और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थी पद्मश्री तपस्वी, तो इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद कहा है। ऐसे लगातार पत्र जी, जी, आप जी। क्या कहेंगे?
1: कार्यक्रम पसंद करने के लिए और हम तक ईमेल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया पहुंचाने के लिए हमारे श्रोताओं को हम धन्यवाद ही देना चाहेंगे। साथ ही पद्मश्री तक भी आपकी आपका बधाई संदेश हम पहुंचा देंगे।
0: बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, लगातार चूंकि आप अभी आए हैं और हमारे सुनने वालों को बता दें कि सिद्धार्थ जी जो है श्रव्य माध्यम से कम परिचित हैं, वो दृश्य माध्यम के ज्यादा एक तरह से कहें कि उस माध्यम यानी कि वीडियो के लिए जाने जाते हैं। आप दूरदर्शन में लगातार काम करते रहे तो दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रमों में कुछ थोड़ा सा बदलाव होता है। ये हमारे सिर्फ यहाँ हमारे जो श्रोता हमें देख नहीं पाते हैं लेकिन सुनते हैं, और दूरदर्शन के कार्यक्रमों में वो सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो यहाँ कैसा लग रहा है आपको?
2: सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग कभी भी किसी चीज़ के लिए प्रतिक्रिया करते हैं तो सबसे पहले हम सुनते हैं।
0: हाँ।
2: और सुनते हैं, पलटते हैं, फिर हम देखते हैं
0: जी।
2: तो शुरुआत तो सुनने से ही होती है और थोड़ा अंतर तो है लेकिन जो हम सुनने के माध्यम से समझते हैं वो देखने के माध्यम से उतना नहीं समझ पाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: क्योंकि हमारे सारे सेंसेस जो हैं वो बहुत ही एक तरीके से सिंक्रनाइजेशन में काम करते हैं
0: जी।
2: और जैसा कि हम भी आपके साथ समक्ष जुड़ते हैं ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से और दूरदर्शन के माध्यम से
0: जी।
2: तो हमारी हमेशा कोशिश यही रहती है कि आप तक हम एक ऐसी चीज़ पहुंचाएं जिससे आपके मन में खुशी हो, आपको जानकारियां मिलें और इंफोटेनमेंट जो है इन्फॉर्मेशन के साथ एंटरटेनमेंट,
0: हाँ,
2: ये दोनों चीजें एक साथ आप तक पहुंचे, ये हमारा हमेशा से प्रयास रहता है। और इन पत्रों के माध्यम से जैसा आज मुझे पता चल रहा है कि हमारे श्रोतागण इतने अच्छे तरीके से हमें सुनते हैं, समीक्षा करते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं, और सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और आगे भी हम आपके पत्रों के माध्यम से मिले हुए सुझावों के प्रति अच्छे तरीके से काम करेंगे और अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की कोशिश।
0: बिल्कुल। और इस कार्यक्रम की जो खास विशेषता ये है कि लगातार

0: आप सुन रहे हैं और लगातार आप जो हमें ईमेल कर देते हैं, यानी कि सुनते सुनते भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं आपका पत्र airindore@gmail.com के माध्यम से। और एक पत्र और है, और ये पत्र आया है बड़वाहा के श्रोताओं का, प्रवीण शिमाली का, और लिखते हैं कि 28 अगस्त को इंदौर परिक्रमा कार्यक्रम सुना, बहुत पसंद आया। इसी दिन सुनहरे पल में राखी पर केंद्रित गीतों को सुनवाया गया था। लाजवाब पेशकश माजिदा जी की थी। इसी दिन प्रातः 8:30 बजे कवि गोष्ठी का आनंद लिया। प्रतिभागी कवि कैलाश सोनी, सुंदरलाल जोशी, दिनेश दवे, हरचरण सिंह चावला की रचनाओं ने हमारा मन मोह लिया। 30 अगस्त को योग निरोग कार्यक्रम सुना, और चंद्रशेखर आजाद से प्रदूषण से होने वाली बीमारियों और प्राणायाम के द्वारा उसका उपचार के बारे में जो वार्ता हमने सुनी वो बहुत ही स्वास्थ्यप्रद लगी। और इसी दिन विविध भारती चैनल पर हमारे मेहमान कार्यक्रम सुना, जिसमें आशीष पोरवाल और रजनीश श्रीवास से सहज योग के बारे में जो मैंने चर्चा की थी उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि हमें बहुत अच्छी लगी। और 31 अगस्त को गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम भी सुना, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो विशेष अंक लेकर आई थी शिखा साहू वो हमें बहुत अच्छा लगा। और 1 सितंबर का भी जिक्र कर रहे हैं, यानी कल तक की जानकारी उन्होंने लिख के भेज दी है, और लिख रहे हैं कि 1 सितंबर को विविधा के अंतर्गत भेंटवार्ता व्यवसाय में लेखा प्रबंधन पर महत्वपूर्ण जानकारी दी सीए कैलाश चंद्र शर्मा ने, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहा आकाशवाणी का। तो आप इन चारों कार्यक्रमों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, कार्यक्रम सुन के पसंद कर रहे हैं हमारे श्रोता, और तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी अपने श्रोताओं से कि हमारे श्रोताओं द्वारा लिखे गए पत्र या मेल केवल शब्द नहीं होते हैं, बल्कि ये उनके विचारों, सुझावों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं को हम तक पहुँचाने का माध्यम भी होते हैं। तो इसी तरीके से आप हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए और हर कार्यक्रम की समीक्षा हम तक पहुंचाते रहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट हम और अगले भी ईमेल ले लेते हैं। और ये आया है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और समृत पंचोलिया जी का ईमेल है, और लिखते हैं कि आज के कार्यक्रम में मुकाम सिंह जी और सिद्धार्थ जी और प्रीति जी को नमस्कार। हमारे श्रोता तुरंत सुन रहे हैं, तुरंत मेल भेज देते हैं, और लिखते हैं कि आकाशवाणी इंदौर केंद्र के कार्यक्रम प्रमुख राजेश जी की सेवानिवृत्ति के बाद अब जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के लिए सिद्धार्थ जी आ चुके हैं, तो हम उनका स्वागत कर रहे हैं, और हमें यकीन है कि आगे का जो क्षण है, आगे के जो कार्यक्रम है, वो भी बेहद अच्छे होंगे। जैसा कि राजेश जी ने उनके नेतृत्व में, सृजनशील नेतृत्व में गौरवपूर्ण अध्याय का समापन हुआ, उनका कहना है, राजेश जी के बारे में लिख रहे हैं, और वैसे ही आगे भी चलते रहेंगे। विदाई अवसर के पलों में शामिल होने के लिए मुझे मौका मिला, और राहुल तिवारी जी की बुलंद आवाज़ में संचालन था, अभियांत्रिकी प्रमुख अभय कुमार गुप्ता जी और प्रताप राव कदम सर के, पाठक सर के लिए जो उत्कृष्ट विचार हमें सुनने को मिले, संजीव मालवी जी के विचार भी हमें सुनने को मिले, अच्छा लगा। मोना ठाकुर जी की बेहतरीन सांस्कृतिक मंची प्रस्तुति के लिए क्या कहना, ढोलक की थाप पर थिरकन, सब कुछ प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति में गरिमापूर्ण यादगार विदाई रही, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। और आकाशवाणी इंदौर के नए कार्यक्रम प्रमुख सिद्धार्थ भूषण जी का बहुत बहुत स्वागत।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने पत्र में लिखा कि राजेश जी का एक लंबे कार्यकाल के बाद उनका रिटायरमेंट हुआ, तो हम भी उसमें शामिल थे, और अब मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि उस कार्य को आगे बढ़ाऊं, और आपके द्वारा जो हमें आशीर्वाद मिलेगा उससे मुझे विश्वास है कि मैं आपके उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, इसके लिए प्रयासरत भी रहूंगा।
0: बिल्कुल, अगला पत्र है लाबरिया भेरू इंदौर से, ये चलकर आया है मेल के माध्यम से, और लिखने वाले हैं अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदिनी मुस्कान, नीलम सावन और कृष्ण कुमार का, और ये लिखते हैं कि आपका पत्र प्रस्तुतकर्ताओं को प्यारा प्यार भरा नमस्कार, प्रशंसा एवं सुझाव हम लिख रहे हैं। दिनांक 30 अगस्त को चॉइस टाइम कार्यक्रम में जिस प्रकार गीतों का चयन किया गया और अधिक से अधिक श्रोताओं के पत्र इस कार्यक्रम में शामिल किए गए थे, इसके लिए उन्होंने मुझे, यानी कि चॉइस टाइम मैंने जो प्रस्तुत किया था उसके लिए धन्यवाद कहा है। और ये लिख रहे हैं कि 26 अगस्त को आपका पत्र कार्यक्रम हमने सुना, बहुत अच्छा लगा, प्रस्तुति लाजवाब थी, राजेश जी ने कविता के माध्यम से आपका पत्र कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए, और कार्यक्रम के समय बहुत भावुक भी हुए, उनकी सेवानिवृत्ति का वक्त था, तो हम समझ सकते हैं कि यह अवसर बहुत ही विदाई

0: वेला का होता है और भावपूर्ण कर देता है, और हम उन्हें पुनः बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। आकाशवाणी केंद्र से रात्रि कालीन सभा में आज हमारी बारी कार्यक्रम का प्रसारण तो होता है, ये बोल रहे हैं कि इस कार्यक्रम को आप पुनः कब शुरू करेंगे, ऐसा उनका कहना है। ये जो है हमारी बारी, अब हमारी बारी, एक कार्यक्रम हमने शुरू किया था और एक फोन इन कार्यक्रम था,
1: जी
0: और वैसे श्रोताओं हमारी बारी जो है हम आपके मन भावन कार्यक्रम जो है हम सुनवा रहे हैं इस के स्थान पर, और लगातार आपके पसंदीदा फिल्मी गीत और आपके पत्रों का समावेश मन भावन कार्यक्रम में जो रात्रि कालीन होता है
1: जी जी
0: वो कर रहे हैं। और एक और पत्र जो है ईमेल से प्राप्त हुआ है, हनुमंत शिंदे ऋषिकेश शिंदे ग्राम शिरटे जिला सांगली महाराष्ट्र से ये पत्र आया है, और ये लिखते हैं कि प्रस्तुतकर्ताओं का नमस्कार, सोमवार दिनांक 31 अगस्त को प्रसारित मराठी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे मराठी कार्यक्रम के बारे में आप?
1: मुझे ये जान के बहुत खुशी हो रही कि हमारे श्रोता जो हैं हमारे मराठी कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं और सुनकर अपनी समीक्षा हम तक पहुंचा रहे हैं। कार्यक्रम में हमारे जो मराठी कंपेयर हैं वो समसामयिक विषयों पर आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। कार्यक्रम को पसंद करने के लिए, अपना स्नेह देने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल सिद्धार्थ जी और प्रीति जी, लगातार ईमेल प्राप्त हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसा कमेंट्री की तरह ही हम आपको बता दें, ढेर सारी ईमेल प्राप्त हो रहे हैं और लगातार जो है बॉल फेंकी जा रही है
1: बस
0: और बैटिंग भी वैसे
1: आप
0: की
1: भी
0: जा
1: नॉन
0: रही है
1: स्टॉप बोलते रहिए, पढ़ते रहिए ईमेल।
0: तो अगला जो
2: प्यार आने दीजिए लगातार।
0: बिल्कुल बिल्कुल अगला ईमेल जो है प्राप्त हुआ है ये भैरोलाल वाकतरिया धाकड़ का है, उन्हेल जिला उज्जैन से, और ये लिखते हैं कि आपका पत्र कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं को नमस्कार, और आकाशवाणी इंदौर से कार्यक्रम प्रमुख राजेश जी की सेवानिवृत्ति पर हम शामिल हुए थे, एक बार पुनः हम उन्हें बधाई देते हैं, और जो नए कार्यक्रम प्रमुख सिद्धार्थ भूषण जी आए हैं उनका स्वागत लिख रहे हैं हमारे श्रोता, और लिखते हैं
2: धन्यवाद
0: कि 27 अगस्त को सुबह संस्कृत कार्यक्रम दिव्य धारा सुना, जिसमें संस्कृत दिवस पर डॉक्टर रश्मि खांडाल से वार्ता सुनी। प्रीति जी दिव्य धारा कार्यक्रम आप देख रही
1: जी
0: हैं,
1: अभी
0: बताइए।
1: जी अभी मैं यही अपने श्रोताओं से कह रही थी कि दिव्य धारा कार्यक्रम के लिए कभी कोई पत्र या ईमेल प्राप्त नहीं होते हैं और आज ही हमें ईमेल प्राप्त हो गया, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। इसी तरह आप हमारे संस्कृत कार्यक्रम को सुनते रहिए। ये कार्यक्रम हम प्रत्येक माह के चौथे गुरुवार को प्रसारित करते हैं सुबह 7:20 पर, और जिसमें हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको कुछ विशेष विषयों पर और रोचक जानकारी दे सके। कार्यक्रम से इसी तरह आप जुड़े रहिए।
0: बिल्कुल आगे लिख रहे हैं कि संस्कृत भाषायाः गौरवस्य महतस्य च उत्सवः,
1: उत्सव
0: यह बहुत अच्छी लगी। उसी दिन सुनहरे पल में मुकेश जी की पुण्यतिथि पर उनके गाए गीत पसंद आए। 31 अगस्त को सुबह 7:20 पर मानवीय भूल से मोबाइल ऐप पर प्रादेशिक समाचार के स्थान पर विविध भारती मुंबई का प्रसारण रहा। उसी दिन गुड मॉर्निंग इंदौर में इस्कॉन मंदिर इंदौर के प्रभु जगतगुरु जी महाराज से जन्माष्टमी महोत्सव और दर्शन यात्रा की जानकारी सुनने को मिली। इसी कार्यक्रम में फोटोग्राफर सचिन मतकर से पंढरपुर मंदिर विठोबा भगवान पर केंद्रित जानकारी बहुत पसंद आई। शिक्षा की प्रस्तुति सराहनीय लगी, और 1 सितंबर को सुबह विविधा कार्यक्रम हमको सुनने को मिला, और इस कार्यक्रम में जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट शिक्षाविद और माननीय इंदौर जिला सह संघ चालक कैलाश चंद्र शर्मा जी से मुकाम सिंह चौहान की बातचीत सुनी। वार्तालाप व्यापार व्यवसाय में लेखा प्रबंधन समझदारी का हिसाब आर्थिक संबंधित बातचीत और सलाह हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहा है।
1: तो मुकाम जी को भी बहुत बहुत बधाई, उनके लिए लगातार ईमेल आ रहे हैं।
0: बिल्कुल हमारे जो है श्रोता सारे कार्यक्रम को किस तरह
1: जी
0: सुन रहे
1: जी
0: हैं, अच्छी बात है। आर्थिक जगत की बात अगर हम करें तो ये जो कार्यक्रम था विविधा में कैलाश चंद्र शर्मा जी ने बहुत
1: जी
0: महत्वपूर्ण जानकारी दी, चाहे उद्योगपति हो, व्यवसायी हो, छोटे या बड़े सभी तरह के व्यवसायी हो,
1: जी
0: उन्हें टैक्सेशन के बारे में उन्होंने जानकारी दी, किस प्रकार से आप रिटर्न कर सकते हैं, अगर चूक जाएं तो क्या कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी जानकारी दी। तो सिद्धार्थ जी आप क्या बोलना चाहेंगे?
2: इन पत्रों के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि 40 मिनट के अंदर जो आज प्रोग्राम

0: चल रहा है
1: जी
0: उसमें पूरे महीने का ब्यौरा एक साथ प्रस्तुत करा जा रहा है।
1: पूरे सप्ताह का, वैसे तो कहें पूरे महीने का तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये एक सप्ताह का विवरण जो है हमको भेज के
0: लेकिन
1: लिखते
0: इतने बारीकी से वो किया जा रहा है कि
1: हैं।
0: लग रहा है कि पूरे सप्ताह का नहीं
1: जी
0: पूरे
1: जी
0: महीने का है।
1: बिल्कुल सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। और एक अगला पत्र है छीपा कॉलोनी खंडवा से, यूनुस खत्री और सादिक खत्री और अय्यूब खत्री और आयुष खत्री, इन तीनों के नाम
0: जी
1: लिखे हुए हैं। लिखते हैं कि आदरणीय मुकाम सिंह जी और दीदी यानी कि प्रीति जी और सिद्धार्थ जी को आदाब नमस्कार गुड मॉर्निंग, ये इन्होंने कहा है।
0: नमस्कार नमस्कार।
1: और लिखते हैं कि जिस प्रकार से हमारे नए कार्यक्रम प्रमुख का आगाज हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लाजवाब तरीके से आप जो है आपका पत्र कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
0: आपका धन्यवाद। ये मेरा पहला मौका है कि मैं रेडियो की तरफ से आप तक पहुंच रहा हूं, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोगों से आपके विचार सुन के और आप तक मेरी आवाज़ पहुंचा के।
1: बिल्कुल, एक और पत्र हमें दिख रहा है ईमेल के माध्यम से, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ना होगा, समय हम कम रहा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के बेरड़ी से ये लिखने वाले हैं, नानाजी लाम से, मीना जय लाम से, तेजस और हर्षिता लाम से, और लिखते कि हम आपका कार्यक्रम हर रोज मोबाइल ऐप के माध्यम से सुन रहे हैं। नई तकनीक के बारे में आप जरूर बताइए, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जिस प्रकार से
0: जी
1: हमारा
0: हमारा
1: प्रसारण
0: जो
1: जा रहा है।
0: न्यूज़ ऑन AIR ऐप है, इस पे आप नॉनस्टॉप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उस दौरान भी आप आकाशवाणी इंदौर से जुड़े रह सकते हैं अपने मोबाइल ऐप के जरिए। तो आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रमों को बिल्कुल भी मिस ना करें और इस नई तकनीकी के साथ आप आकाशवाणी इंदौर से जुड़े रहिए।
1: बिल्कुल, हिंगोली महाराष्ट्र के ये श्रोता हैं, शाहजी बोर्ड के, नंदा बोर्ड के, हनुमान और उत्तम जमधाड़े, ये लिखते हैं कि दिनांक 2 और 3 को चॉइस टाइम कार्यक्रम जो कि मैंने प्रस्तुत किया था सुना, यानी कि पिछले महीने की शायद बात लिख रहे हैं, और बेहतरीन गीतों का चयन किया था और श्रोताओं को शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं।
0: चॉइस टाइम के बारे में कुछ बताइए मुकाम जी, आप कि इस कार्यक्रम में किस तरीके से आप प्रस्तुत करते हैं।
1: बिल्कुल, ये कार्यक्रम फरमाइशी कार्यक्रम है
0: जी
1: और फरमाइशी पत्र जो है देश भर के श्रोता हमें भेजते हैं और हम उनके पत्रों को छांटते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पत्र हम लोग इस कार्यक्रम में शामिल करें, तो इसी को हमारे देश भर के श्रोता
0: मैंने ये
1: सुनते
0: सवाल
1: हैं
0: इसीलिए किया क्योंकि
1: जी।
0: लगातार चॉइस टाइम की प्रशंसा ईमेल के माध्यम से हम तक पहुंच रही है, तो अच्छा है हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं।
1: बिल्कुल प्रीति जी, अगर सिद्धार्थ जी को बताना चाहेंगे कि हमारे ड्यूटी रूम में देखेंगे तो पत्रों का ढेर लगा हुआ है, और कई बार तो ऐसे पत्र ढेर सारे हो जाते हैं कि यहाँ कहीं पत्र ही पत्र दिखाई देते हैं,
0: क्या
1: तो
0: बात है,
1: आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से हमारे श्रोता हमारे कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनते हैं और लिखने के लिए समय निकालते हैं।
0: आज की भागती दौड़ती दुनिया में
1: हाँ
0: इतना समय निकालना ही काफ़ी
1: बिल्कुल
0: मतलब मुश्किल होता है,
1: बिल्कुल
0: और उसमें हमारे श्रोतागण इतना समय निकाल के खुद हाथ से लिख के उस चीज़ को हमें भेज रहे हैं, तो वो एक लिखावट नहीं है, वो प्यार का एक
1: तोहफा
0: मतलब
1: है,
0: तोहफा है।
1: और ढेर सारे तोहफे जो हैं इधर इधर इधर बिखरे पड़े हैं, और अच्छा लगता है।
0: अच्छा लगता है
1: और जब हमारे जो बहुत सारे आगंतुक आते हैं आकाशवाणी में, तो बहुत सहज आश्चर्य होता कि हाँ पत्र अभी भी है, यानी कि पत्र जो है बाकी जगह तो लगभग लगभग गायब हो गए हैं, लेकिन आकाशवाणी में आज भी ढेर सारे पत्र आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अब आकाशवाणी के लिए ही लोग पत्र खरीद रहे हैं, पोस्ट ऑफिस तक जाते हैं।
0: सही है
1: जल्दी जल्दी एक और पत्र पढ़ दूं, ये पत्र आया है पालदाना का, इंदौर से, हसीना भी मंसूरी, अमीना भी मंसूरी, और ये लिखते हैं कि आप दोनों को बहुत बहुत नमस्कार कहते हैं, बहुत सारा स्वागत कर रहे हैं, और मैडम जो कि महिला सभा की प्रस्तुतकर्ता हैं उन्हें धन्यवाद कह रहे हैं
0: ईमेल करने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी। और लगातार पत्र हमें मिल रहे हैं, और एक और पत्र हमें मिल गया है, दिख रहा है क्योंकि समय कम है, और ये पत्र आया है सोनू विश्वकर्मा, संगीता प्यारी बेटी माही विश्वकर्मा, ग्राम साल्याखेड़ी, जिला आगर मालवा से, और ये लिखते हैं कि हम आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, सुबह से शाम तक सारे प्रोग्राम हम सुनते हैं, हमें अच्छे लगते हैं। वंदना रामचरितमानस गान, योग निरोग।

0: मन भावन गुड मॉर्निंग इंदौर, महिला सभा जैसे कार्यक्रम हम कभी भी मिस नहीं करते हैं, ऐसा उनका कहना है।
1: क्या बात है
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रमों को सुनने के लिए। ऐसे ही सुनते रहिए और
1: जरूर।
2: हमें अपने सुझाव सुनाते रहिए।
0: बिल्कुल। एक और पत्र आया है आनंद जोशी का खंडवा से, और ये लिखते हैं कि नमस्कार, 31 तारीख को आदरणीय पाठक जी सेवानिवृत्त हुए हैं। खराब स्वास्थ्य के कारण हम आकाशवाणी तक नहीं पहुंचे, लेकिन हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, ये उनका कहना है।
1: निस्संदेह राजेश जी भी हमारे ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे और उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा कि श्रोता उनको इतना ज्यादा पसंद करते थे और इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं।
0: बिल्कुल प्रीति जी, एक और ईमेल है,
1: जरूर।
0: और देवेंद्र सिंह सिसोदिया सेवानिवृत्त राजभाषा अधिकारी हैं, हिंदी अधिकारी रहे हैं,
1: जी,
0: और ये लिखते हैं कि आदरणीय सिद्धार्थ जी का मालवा की सौंधी मिट्टी आकाशवाणी केंद्र इंदौर में हार्दिक अभिनंदन। निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में, आपके अनुभव से इंदौर केंद्र और ऊंचाइयों को छुएगा। आप यहां के स्वादिष्ट भोजन और श्रोताओं के स्नेह का आनंद लीजिए। प्रीति जी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन, और आने वाले दिन हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं कही है।
2: आपको भी आने वाले हिंदी दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: बिल्कुल प्रीति जी, अब तो समय ही नहीं
1: जी,
0: बचा
1: जी, जी।
0: तो चलते चलते हम क्या कहें, सिर्फ नमस्कार कर सकते हैं।
2: नमस्कार।

0: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत ताज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी की भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मोज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फोरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों के पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर्स सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
2: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है।
2: 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता बताई।
2: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग झूठ की गुंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए इन

0: सारी चीजों को पार करते हुए उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में व्यापक सुधार हो सके। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: संशोधित प्रावधानों के तहत कोई भी चीनी व्यापारी किसी भी भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकता है। चीनी व्यापारी देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता है। हालांकि कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल ही रहेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि कोलकाता उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से चीनी खरीदता है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहित देश के पूर्वी हिस्से को इसकी आपूर्ति करता है। इसलिए कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के लिए 4000 क्विंटल की मौजूदा सीमा को बरकरार रखा गया है। भानु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंचा और इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर तथा दिल्ली एनसीआर में वितरित किया गया है। 840 मीट्रिक टन प्याज कल चेन्नई पहुंचा और इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाना है। मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा बाजार स्थितियों और मूल्य रुझानों के आधार पर लगभग 1000 मीट्रिक टन प्याज सड़क मार्ग से प्रमुख उपभोग केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। मंत्रालय ने सूचित किया कि लगभग 3400 प्याज उत्पादक किसानों को 210 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया कि बफर स्टॉक से प्याज जारी करने से बाजार में उपलब्धता में सुधार हुआ है और बिक्री शुरू होने के अगले दिन से कीमतों में गिरावट आई है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाकर नए सिरे से आक्रमण शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार बंदर अब्बास, होर्मोज, असालवे, जिरोफ्ट, केशन द्वीप सहित कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। वहीं अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनकी ओर से ईरानी सेना को निशाना बनाकर किए गए हमले पूरे हो चुके हैं। इस दौरान वायु रक्षा क्षेत्रों, बारूदी सुरंगों की क्षमता वाली जगहों और संचार संबंधी केन्द्रों सहित कई प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया गया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीकी हमले में कोहिस्ताक शहर में एक शादी समारोह के दौरान एक घर को भी निशाना बनाया गया, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चेतावनी दी है कि ईरान की

0: से इस हमले के जवाब में किसी भी प्रकार की कार्रवाई का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। नेपाल में 19 सदस्यीय भारतीय फोरेंसिक दल ने फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की पहचान में सहायता के लिए डीएनए के नमूनों की जांच शुरू कर दी है। नेपाल में आई बाढ़ में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है और बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि कल शाम तक 1068 शव बरामद किए गए, जिनमें से 400 शवों के केवल आंशिक अवशेष ही मिले, जिससे पहचान प्रक्रिया जटिल हो गई। बाढ़ के बाद मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसीलिए अधिकारियों ने पहचान के प्रयासों में सहायता के लिए कई लावारिस शवों से डीएनए नमूने एकत्र किए हैं। चितवन जिले में अब तक सबसे अधिक शव बरामद हुए हैं। पहचान के लिए डीएनए नमूने एकत्र करने के बाद अधिकारियों ने नदी किनारों पर खुले स्थानों में सैकड़ों शवों को दफना दिया है। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भागलपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है।
1: गंगा के तेज कटाव के चलते नवगछिया प्रखंड में वर्षों पुराने दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर और करीब 500 मीटर लंबा जमींदारी बांध गंगा में समा गया है। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि गंगा की धारा में अप्रत्याशित बदलाव से कटाव गंभीर हो रहा है।
2: भागलपुर में खरीक ब्लॉक का शंकरपुर गाँव है, वहाँ पे गंगा की धारा कुछ बदलने की प्रवृत्ति हो रही है। यह बात सही है कि स्थिति वहाँ पर जो है उससे थोड़ा खतरा बना हुआ है, लेकिन हमारे सभी वरीय पदाधिकारी गए हुए हैं।
1: इधर सारण, वैशाली, बेगूसराय, बक्सर, जहानाबाद, नवादा और औरंगाबाद में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में छिटपुट बारिश की संभावना है, जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में और अधिक मिलकर काम करने के लिए सहमत हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और अमरीका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच हुई बैठक के बाद इस पर सहमति बनी। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पुरुष युगल में खेलते नजर आएंगे। इससे पहले भारत की उन्नति हुड्डा कल टूर्नामेंट से बाहर हो गयी। हुड्डा महिला एकल के पहले दौर में दक्षिण कोरिया के विश्व नंबर 12 किम गांग यून से सीधे गेम में 10-21, 18-21 से हार गयी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे, उपकप्तान तिलक वर्मा को बनाया गया है। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी टीम का हिस्सा हैं। 13 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा, दूसरा मैच 15 सितंबर को, सीरीज का अंतिम मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। तीनों मैच नई दिल्ली में खेले जाएंगे।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। वैश्विक चुनौतियों के बीच विकास की गति जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया स्वदेशी का मंत्र। एक बार फिर से सोना खरीदारी और विदेश भ्रमण से दूर रहने को कहा। दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। नदियों का जलस्तर बढ़ने के बीच नेपाल में बाढ़ की चेतावनी, जनसत्ता की खबर है। अमर उजाला ने वहां की तस्वीरें प्रकाशित करते हुए लिखा है, नेपाल में

0: सीधे एआई से पूछ रहे हैं सवाल, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। जनसत्ता ने नादिया में जन्माष्टमी के त्योहार से पहले भगवान कृष्ण की मूर्ति को अंतिम रूप देते हुए कलाकार की मनमोहक तस्वीर प्रकाशित की है। डिब्बा बंद भोजन का आंत का कैंसर भी बढ़ा रहा है। एम्स के अनुसार हर तीसरे व्यक्ति को गैस्ट्रो की परेशानी, खराब खानपान और जीवन शैली वजह है, हिन्दुस्तान में है। पेट को स्वस्थ रखने के लिए पानी का अधिक सेवन और फाइबर युक्त भोजन लेने की दी सलाह।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी की भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मोज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फोरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi renews call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings abroad. Prime Minister to address valedictory session of departmental summit of Jal Shakti Ministry in New Delhi today. Government reduces stock holding limit of sugar from 4 to 2,000 quintals. US begins fresh strikes on IRGC targets inside Iran, explosions heard in Bandar Abbas and Hormuz. Indian forensic team begins DNA analysis to identify flash flood victims in Nepal. And India's leading shuttlers Lakshya Sen, Kidambi Srikant and Tanvi Sharma to begin their campaigns at China Master Super 750 in Shenzhen today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has renewed his call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings abroad. In a video message, the Prime Minister asked Indians to shun leisure trips abroad, avoid getting married overseas, and refrain from buying gold unless necessary.
3: Swadeshi ka mantra, vocal for local, videshon ki yatraen, agar ghumne phirne jate hain, to nahi karna chahiye. Shaadi bahar videshon mein karte hain, nahi karna chahiye. Made in India ke mantra ko jeena chahiye. Aur zarurat na ho, to sona bhi nahi khareedna chahiye. Hum jitna zyada Swadeshi par bal denge, jitna aatmanirbhar par bal denge, mujhe pakka vishwas hai, jab azadi ke 100 saal honge, hum hamari yuva pidhi ko viksit Bharat suprat karenge.
2: Mr. Modi congratulated the country on recording 7.8% economic growth and spoke of the need to promote self-reliance and give greater emphasis to Swadeshi products. The Prime Minister said India is progressing rapidly despite global uncertainty, wars, crises and disruptions to supply chains.
3: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
2: Taking a swipe at his critics, he said some people within the country drowned in an atmosphere of despair are spreading the lies all around.
3: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए, इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है।

0: other signals stay green on resilient strength. In a historic milestone for the Indian Air Force, Air Vice Marshal Shakti Sharma has become the first woman officer, non-medical, in the country's armed forces to attain the rank of Air Vice Marshal or equivalent, informs the Pioneer. And finally, scientists from the Zoological Survey of India, in collaboration with ICAR, Center Marine Fisheries Research Institute, and international experts, have discovered a new species of deep sea skate in the Arabian Sea off India's southwestern coast, informs the Pioneer. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi renews call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings abroad. Prime Minister to address valedictory session of departmental summit of Jal Shakti Ministry in New Delhi today. Government reduces stock holding limit of sugar from 4 to 2,000 quintals. US begins fresh strikes on IRGC targets inside Iran, explosions heard in Bandar Abbas and Hormuz. Indian forensic team begins DNA analysis to identify flash flood victims in Nepal. And India's leading shuttlers Lakshya Sen, Kidambi Srikanth and Tanvi Sharma to begin their campaigns at China Masters Super 750 in Shenzhen today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुने फिल्म संगीत। नमस्कार श्रोताओं, फिल्म संगीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में कुछ बातें होती है और कुछ गीत हम आपको सुनवाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के उस चमकते हुए सितारे की, जिनकी खूबसूरती, जिनकी नशीली आंखें और जिनका एक खास अंदाज आज भी सीने प्रेमियों के दिलों पर राज करता है। जी हाँ, आज 2 सितंबर है। भारतीय रजत पट की सदाबहार अभिनेत्री साधना कट से फैशन की दुनिया में तहलका मचाने वाली और सस्पेंस फिल्मों की मलिका साधना का जन्मदिन है। आइए आज के इस अंक में उनके शुरुआती सफर, उनकी बेमिसाल फिल्मों और उनकी जिंदगी के अनछुए पहलुओं को याद करते हैं। 2 सितंबर 1941 को कराची में जन्मी साधना शिवदासानी का फिल्मों में आने का सफर बेहद दिलचस्प था। उनके पिता को नृत्यांगना साधना बोस बेहद पसंद थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी साधना रख दिया। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार मुंबई आ गया। साधना बचपन से ही फिल्मों में आने का सपना देखती थी। क्या आप जानते हैं कि साल 1955 में आई राज कपूर की मशहूर फिल्म श्री 420 के लोकप्रिय गाने मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के में साधना ने कोरस गर्ल के रूप में भी काम किया था। इसके बाद उन्हें साल 1958 में पहली सिंधी फिल्म अबाना में अभिनय करने का मौका मिला और फिर आया वो साल जिसने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया, 1960, और फिल्म थी लव इन शिमला। लव इन शिमला के निर्देशक थे आर के नैयर। साधना के माथे पर झूलती हुई लटों वाला हेयर स्टाइल उसी फिल्म की देन था। हॉलीवुड अभिनेत्री ऑड्रे हेपबर्न से प्रेरित इस स्टाइल को निर्देशक ने गढ़ा था, जो आगे चलकर भारत में साधना कट के नाम से ऐसा मशहूर हुआ कि हर कॉलेज जाने वाली युवती की पहली पसंद बन गया। फिल्म सुपरहिट रही और निर्देशक आर के नैयर के साथ साधना की प्रेम कहानी भी परवान चढ़ी, जो बाद में शादी के बंधन में भी बदल गई। आइए सुनते हैं उसी फिल्म का एक खूबसूरत गीत।

मित्रों 60 के दशक में साधना ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। निर्देशक राज खोसला के साथ उनकी जोड़ी को कौन भूल सकता है। वो कौन थी, मेरा साया और अनीता जैसी फिल्मों में उन्होंने रहस्यमय भूमिकाएं इतनी खूबसूरती से निभाई कि उन्हें मिस्ट्री गर्ल का खिताब मिल गया। फिल्म वो कौन थी का वह गाना आज भी साधना के चेहरे और लता मंगेशकर की जादुई आवाज के बिना अधूरा सा लगता है।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख?
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
6: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
8: सिर्फ सस्पेंस या रोमांस की ही नहीं, यश चोपड़ा की मल्टी स्टारर फिल्म वक्त 1965 में आई थी। साधना का फैशन सेंस भी इतिहास बन गया। उस फिल्म में उनके द्वारा पहने गए टाइट चूड़ीदार कुर्ते और अनारकली स्टाइल में उस दौर के भारतीय फैशन में एक नया ट्रेंड सेट कर दिया गया था। देव आनंद के साथ फिल्म हम दोनों हो या सुनील दत्त के साथ मेरा साया या फिर राज कपूर के साथ चोरी चोरी या फिर राजेंद्र कपूर के साथ मेरे महबूब, हर फिल्म में साधना का अभिनय दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ गया।

लेकिन श्रोताओं, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अपने करियर की पीक पर साधना को आंखों की गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा। उन्होंने इलाज कराया लेकिन पर्दे की चमक दमक से धीरे धीरे दूरी बना ली। उन्होंने साल 1974 में फिल्म गीता मेरा नाम से निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा। साधना ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में लाइम टाइट से पूरी तरह दूरी बना ली। उनका मानना था कि उनके दर्शक उन्हें हमेशा पर्दे की खूबसूरत और युवा साधना के रूप में ही याद रखें।

25 दिसंबर 2015 को यह खूबसूरत अदाकारा इस दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन उनकी फिल्में, उनका वह खास अंदाज और उनकी मुस्कान आज भी हमारे बीच अमर है। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमने याद किया हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक अभिनेत्री साधना को। उनके जन्मदिन के इस विशेष अवसर पर हम सब उन्हें नमन करते हैं। मुझे आशा है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया है, और यदि पसंद आया तो आपका पत्र कार्यक्रम के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति लेते हैं और कहते हैं नमस्कार।

आज का फिल्म संगीत आप सुन रहे थे और आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म अभिनेत्री साधना पर। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, अब आपको सुनवा रहे हैं लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे शोभाराम और साथियों के गाए लोकगीत। आइए सुने कार्यक्रम का ये पहला लोकगीत, राजस्थानी।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत और इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं शोभाराम और साथियों के गाए राजस्थानी लोकगीत। आइए सुने ये अगला लोकगीत।

लोक संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम के आखिर में सुन पा रहे हैं शोभाराम और साथियों का गाया ये राजस्थानी लोकगीत।

आप सुन रहे थे लोक धुनों पर केंद्रित लोक संगीत कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में सुनवा रहे थे शोभाराम और साथियों के गाए राजस्थानी लोकगीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब आपको सुनवा रहे हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं अनीता उपाध्याय। आइए सुने अनीता उपाध्याय गायी की ये पहली रचना, भजन के रूप में रचना सूरदास की है।

सुगम संगीत आप सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अनीता उपाध्याय की गाई रचनाएं। अभी आपने सुना संत सूरदास का लिखा भजन और अब अगली भक्ति रचना सुनवा रहे हैं अनीता उपाध्याय के स्वर में। रचना मीराबाई की है।

आप सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम और इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं अनीता उपाध्याय गायी की भक्ति रचनाएं। आइए सुने कार्यक्रम के आखिर में ये भजन रचना संत कबीर की है।

आप सुन रहे थे अनीता उपाध्याय की गाई भक्ति रचनाएं। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारा प्रसारण मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर सुन रहे हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं शास्त्रीय संगीत और इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अब्दुल हमीद का वॉयलिन वादन राग नट भैरव।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे अब्दुल हमीद का वॉयलिन वादन राग नटभैरव। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है जबलपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुरभि तिवारी, वाचन स्वर दीपा सिंह। जबलपुर जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत प्रत्येक शुक्रवार जन संवाद और समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। अभियान की शुरुआत 7 अगस्त को पनागढ़ से हुई थी। इस दौरान श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, विधायक सुशील कुमार तिवारी इंदु, कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय मौजूद रहे। अभियान 8 जनवरी 2027 तक चलेगा। जिले को अलग अलग क्लस्टरों में बांटकर 5 विशेष प्रशासनिक दल बनाए गए हैं। जिले में बारिश की रफ्तार फिलहाल धीमी हुई है, हालांकि अगले 2 दिनों में गरज चमक के साथ बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। नर्मदा नदी का जलस्तर भी अब घट रहा है। बरगी बांध के सभी 13 गेट 28 अगस्त को बंद कर दिए गए थे। ग्वारी घाट और तिलवारा घाट सहित नर्मदा के घाटों पर भी स्थिति सामान्य हो रही है। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में जबलपुर को बड़ी सौगात मिली है। 27 अगस्त को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वाहन निर्माणी जबलपुर में 472 करोड़ रुपए की लागत वाले टी सीरीज टैंक ओवरहॉल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। आर्म व्हीकल्स निगम लिमिटेड द्वारा तैयार किए जा रहे इस प्रोजेक्ट में T-72, T-90 टैंकों की मरम्मत और आधुनिकीकरण किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता को लेकर भी जिले में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। मिलावट, कम नापतौल और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए राजस्व, खाद्य, नापतौल विभाग और तेल कंपनियों के अधिकारियों की संयुक्त टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें पेट्रोल पंपों पर अचानक पहुंचकर जांच कर रही हैं। रांची के पनेहरा स्थित एक पेट्रोल पंप की 3 डिस्पेंसिंग नोजल सील की गई हैं। न्यायिक व्यवस्था में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में भी जबलपुर में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उच्च न्यायालय में नए आर्बिट्रेशन और मीडिएशन सेंटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा और लिफ्ट क्रमांक 5 का लोकार्पण कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रुषिया ने किया। आधुनिक न्यायिक तकनीक से न्याय तक पहुंच को सरल, तेज और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। वहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डुमना नेचर पार्क से कैच द रेन अभियान के तहत 11 लाख पौधरोपण महाअभियान का शुभारंभ किया। डुमना, उमरिया और कठौंदा में मियावाकी तकनीक से पौधरोपण के साथ सोकपिट निर्माण अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत भी जिले में तेजी से काम जारी है। वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 30,538 आवासों में से 16,901 आवास पूरे हो चुके हैं। जिले ने 56.50% लक्ष्य हासिल कर लिया है। युवाओं के कौशल विकास पर भी जिले में विशेष जोर दिया जा रहा है। शासकीय आईटीआई में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण शुरू किया गया है। पहले चरण में 30 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें ड्रोन संचालन, उड़ान, सुरक्षा, सर्वेक्षण और तकनीक उपयोग की जानकारी भी दी जाएगी। वहीं पीएम श्री एमएलबी स्कूल में पर्यटन क्विज 2026 प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें जिले के 303 शासकीय और निजी स्कूलों के 909 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रदेश के इतिहास, संस्कृति, पर्यटन और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े सवाल पूछे गए। जबलपुर की महाकौशली गाय को देश की 57वीं पंजीकृत देसी गौवंश नस्ल के रूप में पहचान मिली है। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में वर्ष 2018 से 2022 तक इस पर शोध किया गया था। ICAR राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संशाधन ब्यूरो करनाल ने इसे पंजीकृत देसी नस्ल के रूप में मंजूरी दी। दूसरी ओर जिला पंचायत परिसर में जिले का पहला दीदी कैफे शुरू करने की तैयारी है। स्वसहायता समूह की महिलाओं को कैफे के प्रबंधन, बिक्री और संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कैफे में महिलाएं भोजन बनाने से लेकर पूरे संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगी। जबलपुर से कोलकाता के बीच सीधी हवाई सेवा भी शुरू हो गई है। 8 अगस्त को पहली उड़ान डुमना विमान

0: विमानतल पहुंची विमान का वाटर कैनन सलामी के साथ स्वागत किया गया। पहली उड़ान से 17 यात्री जबलपुर पहुंचे जबकि 28 यात्री कोलकाता के लिए रवाना हुए। वहीं जिले की 56 वर्षीय पर्वतारोही सुनीता सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को लाहौल स्पीति में लगभग 21,000 फीट यानी 6,111 मीटर ऊंचे माउंट यूनाम पर तिरंगा और भारतीय स्टेट बैंक का झंडा फहराया। इसी के साथ जबलपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। शहर के राधा कृष्ण मंदिरों को सजाया जा रहा है। सामूहिक रूप से भव्य शोभा यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी, यह आकाशवाणी भोपाल है।
2: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारा प्रसारण मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर सुन रहे हैं। आइए सुने सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
3: हेलो MH हॉटलाइन।

0: हेलो हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: नमस्कार श्रोताओं, एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम के साथ मैं मुकाम सिंह चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। और श्रोताओं, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपको हमारे टेलीफोन नंबर बता दें 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। और श्रोताओं, आप लोगों से हम लोग लगातार निवेदन कर रहे हैं कि जिनके कॉल हर तीसरे दिन लग जाते हैं वो कृपया करके ना लगाएं, क्योंकि बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जिनके कॉल नहीं लग पाते हैं। और नहीं क्यों लग पाते हैं, इसके पीछे का कारण है आप स्वयं जानते हैं कि यदि आप स्थान छोड़ेंगे तो उन्हें मौका मिलेगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि हमारे उन नए श्रोताओं को जुड़ने का जो विगत कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं और बहुत लंबा प्रयास करते हैं, वो एक घंटा तक लगातार फोन डायल करते हैं लेकिन जब नहीं लगता तो उन्हें निराशा होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है उन्हें मौका दें। और अब जुड़ रहे हैं हमारे ये श्रोता और जानते हैं उनकी बात। हेलो, एम एच हॉटलाइन कार्यक्रम।
2: हाँ जी सर, नमस्कार सर।
1: जी नमस्कार
2: सर। जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से सर।
1: जी जी जी लोकेंद्र जी, मैंने अभी हमारे सुनने वालों से बहुत ही विनम्र निवेदन किया है कि उनके कॉल जो है बारी बारी से लगाएं, यानी कुछ कुछ अंतराल लेने के बाद लगाएं। तो आपने पिछली बार कब लगाया था?
2: सर एक महीना हो गया आपके इस प्रोग्राम में लगाए हुए मुझे।
1: अरे वाह, तो अच्छी बात है, आपने इतना धैर्य रखा।
2: बिल्कुल सर जी, हम तो चाहते हैं कि और भी मित्र आपके प्रोग्राम में बहुत से जुड़े, दूर दूर से जुड़ते हैं, हमारे दोस्त भी जुड़ते हैं, जम्मू कश्मीर से जुड़ते हैं
1: जी जी,
2: और मथुरा से भी जुड़ते हैं। और हम भी चाहते हैं कि दूर दूर से जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।
1: बिल्कुल, और लोकेंद्र भाई आप अच्छा काम करते हैं, बहुत सारे जो श्रोता हैं उन्हें भी आप बताते हैं कि आकाशवाणी इंदौर की एमएच हॉटलाइन हो या विविध भारती इंदौर का हेलो विविध भारती कार्यक्रम हो, सभी कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप उन्हें प्रेरित करते हैं, उन्हें नंबर बताते हैं, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं आप।
2: जी सर जी, एक व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा हेलो फरमाइश का, तो उसमें मैं प्रतिदिन मैसेज करता हूँ, आपके सारे प्रोग्रामों के डिटेल्स भेजता हूँ सर।
1: जी जी,
2: और आज सुबह भी पत्र मिला, कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे।
1: अच्छा, आपका पत्र कार्यक्रम आपने सुना?
2: बिल्कुल सर जी, सुना था। और अभी जो नए महोदय
1: जी, हमारे नए कार्यक्रम प्रमुख सिद्धार्थ भूषण जी हैं। जी
2: जी जी जी बिल्कुल, और उनसे भी उनकी बातचीत भी सुनी, मैडम थे साथ में,
1: प्रीति छड़ीदार थी जी। तो मतलब आपने आपका पत्र कार्यक्रम सुना, आपको अच्छा लगा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और बताइए आपकी पसंद का गाना कौन सा सुनवा दें। और चूंकि अब आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी पर्व, क्योंकि

0: का एक बड़ा आयोजन होता है, है ना। तो हम कोशिश करेंगे, और आप तो उज्जैन की धरती से जुड़ चुके हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा हुई थी, तो बताइए कौन सा गाना सुनवा दें।
1: सर ये गाना है छोटी बहू फिल्म का, मेरे कन्हैया तू विजय मैया कहेगा मैया। और सर जी उज्जैन का इतिहास ऐसा है कि यहाँ पर शांतिपनी आश्रम है
0: जी जी,
1: और शांतिपनी आश्रम में कृष्ण भगवान ने 64 दिन की पढ़ाई की थी।
0: हाँ।
1: और श्री कृष्ण भगवान की सुदामा जी से मुलाकात यहीं पे हुई थी, यहीं पे दोस्ती चालू हुई थी
0: जी जी।
1: और यहाँ से थोड़ा सा दूर 15 किलोमीटर दूर नारायणा गाँव है।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: कृष्ण जन्माष्टमी को यहाँ मेला लगता है।
0: अच्छा।
1: और यह गांव इसलिए प्रसिद्ध है कि जो कृष्ण भगवान है
0: हाँ।
1: और सुदामा जी जो लकड़ी बीनने के लिए जाते हैं लकड़ी चुनने के लिए, तो वो माता जी ने जब उनको लकड़ी चुनने के लिए भेजा था
0: जी,
1: तो वो लकड़ी चुनते चुनते ढूंढते ढूंढते इतने दूर 15 किलोमीटर दूर नारायणा गांव में पहुंच गए थे।
0: हाँ।
1: और वहां पर सर बारिश हो गई थी, तो बारिश होने की वजह से वो लकड़ियों की जो गठड़ी है उन्होंने वहाँ उस मंदिर के पास में कहीं रख दी थी। तो वहां से सर वो आज भी इतिहास में दर्ज है वो, कि वो जो लकड़ियों से झाड़ बन गए थे, पौधे उग गए थे, तो आज भी सर वो वहां पर है। और इसलिए जो कृष्ण जन्माष्टमी आता है तो वहां पर मेला लगता है, और आज भी वो मंदिर प्रमुख है वहां पर।
0: क्या बात है। तो इस जन्माष्टमी वहां पर फिर मेला लगेगा?
1: हाँ बिल्कुल सर जी, फिर मेला लगेगा वहां पर,
0: तो
1: मेला लगता है।
0: क्या बात है, आपने बहुत अच्छा विवरण दिया। तो श्रोताओं आप भी उज्जैन ही आ सकते हैं, उज्जैन आ सकते हैं, और जहां भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा हुई जो सांदीपनी आश्रम है, वहां के दर्शन कर सकते हैं और नारायणा गांव का जिक्र आपने किया लोकेंद्र भाई ने, आप वहां भी आ सकते हैं।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सर जी, और सुविधा मिलेगी आपको आने जाने के लिए
0: जी,
1: प्रतिदिन वाहन भी चलते हैं वहां जाने आने के लिए जिस दिन मेला रहता है
0: जी। तो अब आपकी पसंद का गाना सुनवा दें
1: जी। धन्यवाद
0: जी
1: जी सर जी।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम
1: जी, चौहान साहब जी को नमस्कार।
0: नमस्कार भाई साहब, आपका नाम बताइए।
1: जी, मैं अरविंद अग्रवाल।
0: अरविंद अग्रवाल साहब तो हमारे बहुत ही नियमित श्रोता हैं
1: जी,
0: और इतने नियमित है कि एक दो दिन में ही आपके कॉल लग जाते हैं।
1: मैं क्या हूँ, तो ड्रिंक तो रोज चली जाती डेली।
0: लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हमारे बेचारे बहुत सारे श्रोता हैं जो लगातार कोशिश करते हैं, उन्हें भी मौका देना चाहिए।
1: अब इसमें भी आप आरक्षण लगाएंगे कि अब है? किसी के पैर बांधेंगे कि कोई आगे आ जाए?
0: ऐसा देखो,
1: तो सबके लिए
0: बारी बारी बारी बारी से तो मौका मिलना चाहिए ना, क्योंकि इस देश में सबको मौका मिलना चाहिए।
1: सबके लिए समान अवसर तो है ही।
0: हाँ तो सही, यही बिल्कुल आपने कहा, आपकी बात मैंने पकड़ ली। आपने कहा सबके लिए समान अवसर, तो सबका अवसर मिलना चाहिए कि नहीं?
1: तो वो अपना करे प्रयास, कभी उनका भी
0: नहीं करते हैं, करते हैं प्रयास, लेकिन क्या होता है ना कि आपने कोई तरीका निकाल लिया, उन्हें शायद वो तरीका पता नहीं होगा।
1: तरीका कुछ नहीं है।
0: हाँ, बता दीजिए, आप ही बता दीजिए हमारे सुनने वालों को कि क्या तरीका होता है जिसमें आपके तो लगातार लग जाते हैं और बाकी लोगों के नहीं लग पाते हैं।
1: तरीका कोई भी नहीं है, दिल से दिल मिला है, जुड़ा है, इसलिए लग जाता है।
0: दिल से दिल तो सबका है ना, और सब जुड़ना चाहते हैं
1: जी।
0: और आप अपना दिल थोड़ा बड़ा कीजिए और उन्हें मौका दीजिए, हमारे बहुत सारे सुनने वालों को, तो फिर मजा आएगा। चलिए ठीक है, आप खैर आज की हमारी अपनी निजी बात हुई। अब बताइए आपकी पसंद का गाना हम कौन सा सुनवा दें?
1: जी, सत्यम शिवम सुंदरम का है।
0: जी जी,
1: मैया से बोले नंद
0: जी। आपके वहाँ क्या रहता है जन्माष्टमी पर विशेष?
1: जन्माष्टमी पे यही सब देश में जैसा होता है वैसा ही, तो अलग से नहीं है।
0: नहीं तो क्या क्या रहता है बताइए ना।
1: जन्म होता है, रात में
0: आप क्या करते हैं?
1: दिन भर व्रत रखते हैं, उपवास।
0: अच्छा,
1: रात में पूजा करके ही भोजन प्रसाद लेते हैं।
0: तो दिन भर कुछ नहीं खाते कि कुछ खा लेते हैं?
1: फलाहार थोड़ी बहुत।
0: अच्छा, फलाहार खा लेते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव हो जाता है, यानी कि रात्रि के 12 बजे, उसके बाद खाना खाते हैं या फिर अगले सुबह?
1: जी, और यहाँ मटकी फोड़ने का भी कार्यक्रम होता है। आज भी हर चट है, आज भी महिलाएं व्रत रखती हैं संतान के लिए, लड़कों के लिए।
0: क्या बात है, चलिए अच्छी बात हुई, आपसे बात हुई। और थोड़ी देर में आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं, लेकिन एक और श्रोता हम जोड़ रहे हैं। हेलो, तो अब हम सुनवा देते हैं अरविंद अग्रवाल जी की पसंद का गाना सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से।

0: एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: हेलो
0: जी नमस्कार।
1: जी सर नमस्कार।
0: क्या नाम है आपका?
1: जी सर हम धेमाजी असम जुनाई मिसाली सबर से बोल रहा हूँ, बिमोल बसुमतारी।
0: अच्छा असम का कौन सा जिला है?
1: हम लोग का धेमाजी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सर।
0: अच्छा और अभी बारिश की क्या स्थिति वहां पर?
1: बारिश कल गिर रहा था सर सुबह से आज, लेकिन नहीं गिरा आज, तो भी थोड़ा ठंडा मौसम है, आज भी ठीक है सर।
0: अच्छा जी जी जी और क्या कौन कौन सी बड़ी नदियां हैं आपके क्षेत्र में?
1: जी सर हम लोग का जो बोरा नदी है, हम लोग का ये ब्रह्मपुत्र नदी है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा ब्रह्मपुत्र नदी। ओ जी
1: जी सर, ये हम लोग का डिब्रूगढ़ थोड़ा सामने पड़ता है, हम लोग का जो बस्ती है ये नदी का बीच में पड़ता है सर।
0: अच्छा तो आपके निवास स्थान से कितनी दूर पड़ती है ब्रह्मपुत्र नदी?
1: ब्रह्मपुत्र हम लोग का से लगाए रखा है सर, ये जैसे हो गया ब्रह्मपुत्र असल थोड़ा बड़ा वाला लगता है, हम लोग का जैसे 3-4 किलोमीटर लगता है उससे, और छोटा छोटा नदी आता है ना ब्रह्मपुत्र के पानी आता है, तो हम
0: हाँ।
1: उसका बीच में रहता हूँ सर।
0: और कई बार अति बारिश में बाढ़ की स्थिति भी आ जाती है?
1: जी सर कभी कभी ये अभी तो हुआ नहीं, आगे में थोड़ा आया था बांध अरुणाचल से ऐसे पानी आया था, तो अभी थोड़ा साल हो गया अभी ऐसे नहीं हुआ सर।
0: जी जी जी और अभी 2 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश और विश्व भर में मनने वाला है, और कहीं कहीं तो शुरू भी हो चुका है क्योंकि कि बहुत सारी जगह कहीं 8 दिन अलग अलग तरीके से मनता है। तो आपके वहाँ आसाम में किस तरह से मनता है?
1: असम में हम लोग का जो बस्ती में हम लोग का जैसे मंदिर है सर, उधर हम लोग रात को मनाएगा, जैसे शाम से लेकर सुबह तक मनाएगा।
0: अच्छा
1: जन्माष्टमी पूजा ऐसे करेगा सर।
0: अच्छा कौन सा बड़ा मंदिर है वहाँ पर?
1: बड़ा मंदिर तो हम लोग का जैसे हो गया सर, हम लोग तो बड़ा मंदिर में नहीं करेगा, लेकिन हम लोग का जो गांव का मंदिर है ना।
0: हाँ जी हाँ जी जी
1: सब अपना आप करता है सर, सबका बस्ती में करता है।
0: अरे वाह बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग अभी से उत्साहित हैं, और चूंकि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए हम सब तैयार हैं, तो क्यों ना हम भक्ति गीत के माध्यम से उनकी आराधना करें। और आपकी पसंद का गाना बताइए हमें।
1: जी सर हमको सुना दीजिए जो लता मंगेशकर का एक आराधना गाना सुना दीजिए। हो जाएगा सर।
0: जी जी जी लता जी की आवाज में सुनवा देते हैं सावन फिल्म का ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम
1: जी। नमस्कार सर।
0: नमस्कार
1: सर, मैं रघुवर से राजपूत बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप चौक छिपाड़ तहसील खरकिया जिला हरदा से।
0: जी राजपूत जी, आपकी आवाज़ हम बहुत दिनों बाद सुन रहे हैं, ऐसा क्यों?
1: जी सर, बहुत समय बाद मैंने अभी फोन लगाया और आकाशवाणी इंदौर और सभी श्रोताओं और सभी उद्घोषकों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: बिल्कुल, हमारी ओर से भी आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की।
1: धन्यवाद सर
0: जी।
1: आप सभी सर
0: जी, हम बहुत अच्छे हैं। और आपकी पसंद का गाना बताइए।
1: जी सर, परिवार फिल्म का गीत है जात वसे नहीं बोलो कन्हैया, जो जन्माष्टमी के अवसर पर सुनना चाहेंगे।
0: बहुत बहुत सुरीला गीत आपने पसंद किया, लता जी और मन्ना डे जी की आवाज में ये गीत है।
1: जी जी सर,
0: और
1: तो आपसे भी मुलाकात हुई थी 2016-17 में। हाँ। खंडवा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था श्रोताओं का।
0: जी जी,
1: आपसे सुधा शर्मा जी से सभी से बहुत अच्छी मुलाकात।
0: बिल्कुल, मुझे याद है, बहुत अच्छी तरह से याद है, और बहुत यादें हमारे दिल में हैं। आप सभी हम लोगों के दिल में रहते हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और हम हैं तो आप हैं। हमारा पूरा आकाशवाणी एक परिवार है, इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: परिवार एक ही है सर।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ जो है आपका हरदा, हरदा के पास में ना आप?
1: हाँ जी सर, हरदा से 30 किलोमीटर है हमारा छिपावड़।
0: तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी तो सभी जगह मनती है, लेकिन वहाँ के कुछ प्रमुख जो प्रमुख भगवान श्री कृष्ण के हो या भगवान विष्णु के मंदिर हो, उनके बारे में जानकारी दीजिए ना
1: सर। हमारे यहाँ जैसे हनुमान जी मंदिर से 5 हनुमान मंदिर है।
0: अच्छा,
1: तो हमारे जो मोहल्ले में हनुमान मंदिर है वहाँ से लगाकर थाना चौराहे में जो हनुमान मंदिर है वहाँ तक शोभा यात्रा निकाली जाती है कृष्ण भगवान की।
0: अच्छा,
1: और सभी गांव के लोग शामिल होते हैं।

0: बड़ा गांव है सर हमारा।
1: तो जन्माष्टमी के दिन निकलती है शोभा यात्रा?
0: हाँ जी सर, रात 10 बजे से रात के 12 बजे तक, मतलब एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली जाती है।
1: हाँ,
0: सभी लोग शामिल होते हैं और फिर उसके बाद भगवान की आरती पूजन और भजन वगैरह होते हैं।
1: हाँ
0: जी जी सर,
1: क्या बात है, ये तो अच्छी जानकारी दी, क्योंकि हम कम ही लोग जानते हैं कि शोभा यात्रा भगवान श्री कृष्ण की यानी कि जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में निकलती। ज़्यादातर लोग तो जानते हैं कि माखन मिश्री के साथ में मटकी फोड़ी जाती है।
0: जी सर,
1: हाँ, लेकिन एक नई जानकारी भी हमारे सुनने वालों को मिली, अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: जी सर।
1: और
0: और हमारे छिपाड़ से 8 किलोमीटर की दूरी पर भगवान गुप्तेश्वर का बहुत प्राचीन मंदिर है, जो पहाड़ की खुदाई के दौरान निकला था। वहाँ पर
1: अच्छा
0: महाशिवरात्रि और सावन में मतलब बहुत बड़ा मेला लगता है।
1: जी
0: और
1: जी
0: जैसे अभी सावन का त्योहार गया, तो नेमावट से कावड़ लेकर पूरे आसपास क्षेत्र के जितने गांव है, सभी लोग कावड़ लेकर नेमावट से चारुआ आते हैं गुप्तेश्वर भगवान के को जल चढ़ाने सर।
1: जी तो राजपूत साहब, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी पसंद का
0: जी
1: गाना
0: जी
1: आप
0: सर,
1: तक पहुंचा
0: आपसे
1: रहे।
0: बहुत समय बाद बातचीत हुई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा
1: जी
0: सर। तट पर नीरत करत उत नीरत करत उत हिरत फिरत उत हिरत फिरत ऐसी चंद्र तपन दिग दिग नाद दिग नाद दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग दिग

लहर ओडनिया लहकी मृदंग ठनका झट झट झट झट नगिन दे दे सगन नदा किच झट झट झट झट नगिन सग सगन का नगिन का।

0: आप सुन रहे हैं एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से, और लगातार हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं। अब ये श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो एमएच हॉटलाइन
1: सर जी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार,
1: टेकचंद अग्रवाल बोल रहा हूँ सर, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: जी अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका। कौन सा गीत सुनवा दें
1: सर? सबसे पहले तो माफी चाहूंगा सर
0: जी,

0: अभी सर हो सकता है कि मैं कुछ समय के पहले आपसे फोन लगा लिया।
1: कोई बात नहीं,
0: तो इसके लिए बीच में सर मेरा इतना आपसे वादा रहा कि आने वाले समय में जो उसका समय निर्धारित है उसी पे फोन लगाऊंगा।
1: क्या बात है, ऐसा ऐसा ऐसा बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छी बात कही और मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जी जी
0: सर, सबसे पहले तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं दे देता हूँ जन्माष्टमी की।
1: जी जी,
0: और कहना चाहिए सर, जैसे कि सर हम लोग के यहाँ जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है,
1: हाँ,
0: तो सर मंदिरों में काफी रौनक बढ़ गई है।
1: हुँ.
0: और कुछ सजावट वगैरह चल रही है अभी
1: जी,
0: और बाजारों में भी सर रौनक ज्यादा है,
1: हाँ,
0: कुछ खरीदारी के प्रति।
1: जी जी जी,
0: तो उसी के चलते में सर मुझे 1963 की एक फिल्म थी,
1: हाँ,
0: शम्मी कपूर साहब की
1: जी,
0: ब्लब मास्टर,
1: हाँ जी हाँ,
0: तो मोहम्मद रफी साहब की आवाज है
1: जी,
0: और गाने के बोले सर गोविंदा,
1: ये गाना तो ऐसा है कि अगर जन्माष्टमी पे ना बजे तो वो आनंद ही नहीं आएगा।
0: जी जी, कुछ अधूरा सा लगता है सर।
1: अधूरा सा लगता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गोविंदा आला आला रे और मटकी फोड़ का आनंद जो है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इस गाने को सुनने के बाद ही पांव थिरकने लगते हैं और जो उत्साह आ जाता है कि हाँ मटकी जो है, दही हांडी का जो उत्सव है।
0: दुनिया में कुछ गाने जो बने हुए हैं
1: जी,
0: वो त्योहारों के को लेकर के बने हुए हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो वो सर बिल्कुल एकदम कहना चाहिए, वो जब फिल्मों में भी उस टाइप का दिखाया गया और हम लोग असल जिंदगी में जो है ना सर, गानों की काफी अहमियत नजर आती है।
1: बिल्कुल सही बात है। तो आपके इधर दही हांडी का उत्सव होता है कि नहीं, मटकी फोड़ का?
0: सर होता है, बिल्कुल होता है।
1: कभी आपने भाग लिया?
0: मोहल्लों में बच्चों के द्वारा छोटे छोटे होते,
1: आपने आपने बचपन में भाग लिया कि नहीं या बाद में?
0: नहीं सर, मैं तो कभी ऐसा मौका नहीं मिला।
1: ऐसा?
0: और अब तो सर एक सीनियर सिटीजन हो गए हैं, तो अब तो कोई मौका भी नहीं है।
1: लेकिन बचपन में तो हम करते हैं ना,
0: क्योंकि
1: बालपन में बच्चों के झुंड में
0: टूटा टाटी हुई है, जोड़ा टूट गया है, तो उसको जोड़ने में काफी समय लग जाएगा।
1: नहीं, अब तो देखने में ही आनंद आएगा
0: सर, बस देखने में आनंद आएगा।
1: बिल्कुल सही बात है। तो चलिए भाई साहब, आपकी पसंद का गाना सुनवा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया सर
1: जी।

0: एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: हेलो नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: गांव बिटोड़ा भोयर जिला वाशिम महाराष्ट्र से योगीराज मस्के बात कर रहे हैं।
0: क्या बात है, वाशिम महाराष्ट्र।
1: जी
0: जी, तो वहां पर तो दही हांडी का उत्सव बहुत जोरों के साथ मनता है।
1: जी सर, जन्माष्टमी पर्व में दही हांडी उत्सव, और उत्सव में लगभग सारे गांव देहात चाहे छोटी बस्ती भी हो तो भी ये, और पारंपरिक विधा उसमें ये है कि दही हांडी में जो मीनार खड़ी की जाती है वो मानव मीनार होती है।
0: कितनी ऊंची होती वो मीनार?
1: लगभग अब तो 100 फीट तक भी।
0: 100 फीट? जी जी जी जी
1: जी, 100 फीट तक ऊंचाई वाली भी मीनारे। अब बच्चे बड़ी शिद्दत से काम कर रहे हैं उस पर।
0: अच्छा जी
1: जी, और लगभग सारे तबके के लोग इस उत्सव में एक दूसरे से मिलजुल के तो छोड़िए, पर इसमें स्नेह भाव इतना होता है कि बस सारे कान्हा के रंग में रंग जाते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। और जब दही हांडी का उत्सव होता है और एक के कंधे पर दूसरे का पांव और इस तरह से जो चलता है, ये बहुत ही आत्मीयता का ही प्रतीक है।
1: जी सर, आत्मीयता का तो प्रतीक है ही।
0: हाँ,
1: अपनों से जुड़ाव जो होता
0: अपनों से जुड़ाव
1: अपने। जी सर,
0: और जब मीनार, आपने कहा कि जब इतनी 100 फीट ऊंची अगर मीनार बनती है और मीनार टूटती है, नीचे गिरती है और लोग गिरते जाते हैं और नीचे वाले उठा लेते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, तो
1: उनको तो बस अब जैसे मान के चलिए ऊपर वाला अगर गिर रहा है तो उसको
0: जी
1: ऊपर ही
0: पकड़ लेते हैं।
1: जी सर।
0: अच्छा, आपको मौका मिला कभी दही हांडी में मटकी फोड़ने का?
1: निरंतर बहुत बार मिला है।
0: अच्छा,
1: अब उम्र जवाब।
0: नहीं, लेकिन यादें तो हमेशा हमारे साथ रहेगी ना।
1: जी सर, निरंतर इस पर्व का हिस्सा रहा हूँ सर मैं।
0: क्या बात है, तो बताइए पहले और आज में कितना परिवर्तन हो गया है?
1: परिवर्तन का अगर कहेंगे बस एक बात है कि
0: जी

0: हेलो हेलो, शायद इनका कॉल।
1: हेलो।
0: जी हाँ, आ रही आ रही आ रही, आवाज आ रही।
1: तो दिक्कत हमारे यहाँ तो बस अब यह है कि परिवर्तन के बहुत परिवर्तन हुआ है सर। पहले इतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती थी
0: जी
1: जैसे खेती के लिए। अब तो बहुत सारी विधाओं से उसे संरक्षित किया जाता है।
0: बिल्कुल, पहले जो है गाने भी उस तरह से बजते थे, आज तो डीजे ने स्थान ले लिया है।
1: जी सर, डीजे डीजे डीजे वाला तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है
0: जी जी जी जी
1: जी। और आज की तारीख में आज भी लोकगीत बड़े धूमधाम से पूरी जन्माष्टमी पर्व में लोकगीतों का बड़ा महत्व रहे।
0: बिल्कुल। अच्छा, मराठी में कोई ऐसा लोकगीत सुनाइए ना, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का हो या भगवान श्री विट्ठल का हो, श्री हरि का हो, वो बताइए ना।
1: जी वो एक एक गीत है, चिंदी बांधते द्रौपदी हरिचा बोटाला। यानी
0: अच्छा
1: इसके इसका तर्जुमा ये हुआ कि
0: हाँ
1: कृष्ण की उंगली पे जो अपना पल्लू है, पल्लू
0: हाँ
1: फाड़ के उसका एक टुकड़ा बांध रही है द्रौपदी।
0: द्रौपदी जी जी
1: जी तो चिंदी बांधते हरिचा बोटाला
0: हाँ
1: द्रौपदी,
0: सुर लगा के बताइए, मतलब एक तरह से सुरमई हो
1: चिंदी
0: जाइए आप।
1: बांधते द्रौपदी हरिचा बोटाला,
0: क्या बात,
1: चिंदी बांधते द्रौपदी हरिचा बोटाला। जी
0: क्या बात है, बहुत अच्छे से
1: सर,
0: गुनगुनाया। और अब हम आपकी पसंद का गाना सुनवा दें, बताइए कौन
1: जी
0: सा
1: सर,
0: गाना सुनवा दें।
1: जोगीत नहीं जन्मा वो गीत बनाएंगे।
0: संगीत फिल्म का गाना आप सुनना चाहते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में,
1: जी सर,
0: बिल्कुल सुनवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, महाराष्ट्र के वाशिम से आप जुड़े।
1: जी, शुक्रिया सर।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: जी सर
0: नमस्कार।
1: जी सर मैं मुन्नालाल शर्मा।
0: कहाँ से
1: आपने? ये ब्लाइंड स्कूल इंदौर से। आपने
0: अच्छा
1: ना, आप लाइन पर रहिए।
0: जी जी जी तो शर्मा साहब कौन सा गाना सुनवा दें?
1: मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए।
0: अरे आप तो बहुत सुरीले हैं, आप तो गा के बताइए ना।

0: Mari.
1: ¿Y eso no hay de Sarana? Anda acá.
2: क्या बात, बहुत सुरीले अंदाज में आपने ये गाना सुनाया और बहुत अच्छा लग रहा है।
1: कभी आइए आप स्कूल में।
2: जी जरूर,
1: मैं यहाँ म्यूजिक टीचर हूँ।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, संगीत के शिक्षक हैं, फिर तो बहुत सारी बातें आपसे की जा सकती है।
1: जी जी बिल्कुल, अभी हमारे यहाँ बच्चे जो है राखी पे छुट्टी पे गए हैं, तो पीरियड खाली था, तो मैंने 15-20 कॉल लगाए जब लगा।
2: ओ क्या बात है, 15-20 बार प्रयास करने के बाद में 21वीं बार तो आपका लग ही गया।
1: बिल्कुल सर।
2: अच्छा, पिछली बार कब जुड़े थे?
1: नहीं, मैंने पहली बार ही लगाया।
2: पहली बार लगाया
1: जी।
2: ओहो क्या बात है, कैसा लग रहा है?
1: बढ़िया बढ़िया
2: जी, हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि आप जैसे आपने कहा कि दृष्टि बाधित हैं और संगीत के शिक्षक भी हैं, और संगीत आपके जीवन का तत्व है।
1: बिल्कुल सर
2: बिल्कुल। तो किस तरह से आप आकाशवाणी इंदौर भारती सुनते हैं, क्या किस माध्यम से सुनते हैं, रेडियो से सुनते हैं या और किसी और माध्यम से?
1: नहीं, मेरे पास एक ऑनलाइन वाला रेडियो है।
2: हाँ,
1: तो वो नेट से चलता है, तो वाईफाई ऑन करके उससे सुनता हूँ।
2: जी जी, और सूरदास जी की जो रचनाएं हैं वो इतनी सारी है और इतना भाव विहल कर देती है अगर हम सुनते हैं पढ़ते हैं तो।
1: मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, जय हो लोट धरन पर वहीं तेरी गोद न आई हूँ।
2: जी
1: मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, वाकई आप सही कह रहे हैं, आनंद आ जाता।
2: आनंद आ जाता, आनंद, और क्या भाव थे सच में,
1: मतलब
2: हम लोग साक्षात जो है उनको नमन करते हैं, सूरदास जी को, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जो रचनाएं गाए, जो पद गाए, वो अद्भुत है।
1: वो प्रासंगिक है।
2: बिल्कुल प्रासंगिक है।
1: बिल्कुल सर।
2: तो चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना, बताइए।
1: जी, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए,
2: मुगले आजम फिल्म का।
1: जी जी,
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।
2: जी।

0: एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: हाँ नमस्कार, मैं राजाराम नगर देवास से राजू अग्रवाल बोल रही हूँ।
0: जी अग्रवाल साहब, जल्दी से गाना बता दीजिए क्योंकि अब समय बहुत कम है, सिर्फ 3 मिनट बचे।
1: हाँ बदला पिक्चर का सुनवा दिए, शोर मच गया, शोर देखो आया माखन चोर, किशोर दा की आवाज में बदला फिल्म।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा गाना आपने पसंद किया,
1: धन्यवाद
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: ओ चला चला चला चला चला निकला माखन चोर।
1: श्रोताओं, अब चलते चलते आपको बता दें, हमारे इस कार्यक्रम के लिए हमें तकनीकी सहयोग मिला स्वाति बथमा और देवेंद्र सिंह स्वर्णकार का। और अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: आकाशवाणी भोपाल है, हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें।

0: श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम फोन करें गीत सुने लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो संगिनी प्रियंका। स्वागत वंदन और अभिनंदन के साथ स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। यादें वो परछाइयां हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ती। बदल जाते हैं लोग मगर यादें कभी मुंह नहीं मोड़ती। खामोशी में भी करती हैं बातें, रूठ कर रिश्ता नहीं तोड़ती। वक्त भले ही आगे बढ़ जाए यादें कभी पीछा नहीं छोड़ती। जी हाँ श्रोताओं, एक बार फिर हमें आपकी याद आ गई है तो हम हाजिर हैं आपके लिए आज का फोन इन प्रोग्राम लेकर। फोन करें गीत सुने, आइए जुड़ते हैं हमारे सबसे पहले कॉलर से। हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार
1: जी। नमस्ते मैम
0: जी, कौन बात कर रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
1: जी मैं अरविंद अग्रवाल, श्रीनगर जिला महुआ उत्तर प्रदेश से।
0: जी जी, स्वागत है हमारा हमारे आज के कार्यक्रम में आपका। कैसे हैं आप?
1: एकदम बढ़िया, आप कैसी हैं? प्रियंका मैम बोल रही क्या?
0: अरे क्या बात है, आपने हमें पहचान लिया। बिल्कुल, हम आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका बात कर रहे हैं।
1: आप कैसी हैं मैम?
0: हम बहुत अच्छे हैं। रक्षाबंधन का पर्व हमने मनाया और अब आगे जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: फिल्म का नाम रहेगा राज, आपके प्यार में हम समझने लगे।
0: जी चलिए, अपना बेहतर ख्याल रखिएगा। मौसम कैसा है वहाँ का?
1: जी अभी रिमझिम बारिश हो रही है, बारिश गिर रही है बिल्कुल मामूली। वैसे 4-6 दिन से अच्छा मौसम है, नहीं तो रोज थोड़ी बहुत गिर जाता है जी।
0: चलिए तो ऐसा होता रहना चाहिए ताकि हम भी तरोताजा होते रहे।
1: जी आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
0: धन्यवाद, हमारी भी यही आपके लिए शुभकामनाएं और हमारे सभी श्रोताओं के लिए। आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर। धन्यवाद।

0: हेलो
1: हाँ जी, फोन करेंगे इसने।
0: जी। हाँ, फ़ोन करें गीत सुने कार्यक्रम ही, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। क्या आप नेटवर्क में नहीं हैं?
1: हाँ मैडम,
0: थोड़ा सा आप ज़ोर से भी बोलेंगे तो हमें अच्छी तरह से सुनाई देगा। बताइए, आप कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जिला नासमकोट तहसील गाटरोहारा ग्राम पलोहा बड़ा समुन्ना के बट हो रहा है मैडम जी।
0: अच्छा जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बताइए, कौन सा गीत आज आप सुनना चाहते हैं?
1: ओ मिलन फिल्म का सुनना है मैडम जी, सावन का महीना पवन कर शोर।
0: अच्छा, अभी भी आपका सावन का महीना चल रहा है ना?
1: अरे मैडम जी, हमने 4 महीना होगा फोन लगाए, मगर उठो नहीं है, तो हम गाना जो सावन के महीना से सोच रहे थे। जी
0: हाँ, करते करते भादो आ गया।
1: हाँ, भादो भादो लग
0: हाँ,
1: गया, मगर सुनना यही है।
0: चलिए कोई बात नहीं। तो लेकिन ये है कि जब दिल खुश होता है तो हर दिन सावन होता है। नमस्कार।
2: जी सा

अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नमस्कार।
1: नमस्ते मैम। नमस्कार जी, क्या बात है भाई, बहुत दिनों के बाद लग गया मेरा कॉल मध्य प्रदेश प्रसारण के इस प्रोग्राम में।
0: जी, कार्यक्रम आज है, फोन करें गीत सुने। तो बताइए,
1: फोन
0: आज आप
1: करें
0: कौन
1: गीत
0: सी
1: सुने
0: फरमाइश
1: गीत।
0: सुनेंगे? लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं और अपना परिचयात्मक नाम मिल जाए
1: जी
0: बताइए।
1: बिल्कुल, मैं नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ। मेरे गांव का नाम है रामनगर, तहसील बमोरी, जिला गुना, मध्य प्रदेश। और फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ मैं ग्रीन सिटी क्लीन सिटी इंदौर मध्य प्रदेश से।
0: क्या बात
1: और मैं
0: है।
1: जी, आपका शुभ नाम मैम।
0: जी, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ, आपकी रेडियो
1: जी
0: संगीनी।
1: जी आपको मेरी तरफ से प्रणाम और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: जी, आपको भी हमारी तरफ से, आकाशवाणी परिवार की तरफ से।

0: 17 के बाद, हाँ 17 के बाद में अभी भोपाल आया था, तो अभी मैंने देखा भोपाल में काफी बदलाव हुआ है और बहुत अच्छा लगा। जैसे हमारे इंदौर में जिस तरह से स्वच्छता को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उस तरह से मैंने देखा कि भोपाल में भी काफी विकास हुआ है और वहाँ भी बहुत साफ सफाई मुझे दिखी।
1: जी शुक्रिया, यही तो है जागरूकता अभियान का परिणाम।
0: बिल्कुल, और जितने भी श्रोता साथी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनके लिए भी यही कहूँगा मैं भाई, इंदौर को देखकर इंदौर में एक बार जरूर आए आप और विजिट करें, यहाँ देखें कि इंदौर हमेशा स्वच्छता में नंबर वन रहता है। ये केवल आंकड़े ही नहीं, ये प्रत्यक्ष रूप देखने को मिल जाएगा।
1: जी जी, हमारे श्रोता से संपर्क टूट गया है, बहरहाल कोई बात नहीं, हमें उनकी फरमाइश तो मिल ही चुकी है। नरेश जी, आपके लिए ये गीत आपके रेडियो सेट पर।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार।
1: जी, नमस्कार मैम।
0: जी कौन बात कर रहे हैं और आप कहाँ से बात कर रहे हैं बताइए।
1: मैं ग्राम गौर झामर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी विपिन जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: हाँ जी मैम, हम बढ़िया हैं, अच्छे हैं। आप बताइए, आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे श्रोता अच्छे होते हैं तो हम तो वैसे ही अच्छे हो जाते हैं। बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में?
1: फिल्म का नाम है पापा कहते हैं, और इसी फिल्म में एक गीत है, पहले प्यार का पहला गम, कविता कृष्ण मूर्ति जी ने गाया है।
0: जी जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा गीत है, बड़ा सुकून भरा गीत है ये,
1: जी बिल्कुल,
0: है
1: और
0: ना?
1: इस गाने के स्वर है वो मध्यम है, मतलब आराम आराम से गाते हैं, गाना भी अच्छा लगता है, और अंतरे इस गाने की मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
0: जी, तो चलिए आप एंजॉय कीजिए अपना ये मनपसंद गीत अपने रेडियो सेट पर।
1: जी शुक्रिया, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते।
1: जी, नमस्कार।
0: बताइए कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं।
1: जी मैं रामबाबू मालवी बोल रहा था, कोलार रोड भोपाल से।
0: अच्छा, राम बाबू जी कैसे हैं।
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ, और हमारे परिवार वाले भी, बच्चे बच्चे, हमारे मम्मी, भैया, भाभी, हमारा संपूर्ण परिवार बहुत बढ़िया है। और आप सुनाइए, आप कैसे हो मैम,
0: हम
1: और
0: अच्छे
1: आकाशवाणी
0: हैं,
1: परिवार कैसा है?
0: बहुत अच्छा है। आकाशवाणी परिवार भी बिल्कुल आपके परिवार की तरह बहुत अच्छा है, खुशहाल है। आपकी
1: बिल्कुल
0: दुआएं हैं, ईश्वर की कृपा है ना। और
1: बिल्कुल,
0: आप
1: हमेशा
0: पर
1: खुशहाल बनाए रहे भगवान सभी के ऊपर। हम तो
0: जी
1: ये चाहते हैं सब खुश रहे, आनंद में रहे, मंगल में रहे, और हमारी आकाशवाणी को हमेशा सुनते रहे।
0: बिल्कुल, हम भी यही कह रहे थे कि ये ईश्वर
1: जी
0: की कृपा आपके परिवार पर जैसी है वैसी सब पर बनी रहे। राम बाबू जी,
1: जी
0: कौन सा गीत आज आपने पसंद किया है सुनने के लिए।
1: जय संतोषी माता का टाइटल सॉन्ग सुनवा दीजिए।
0: तो आपकी पसंद पर ये गीत, ये नमस्कार।
1: जी नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो नमस्ते मैम,
0: नमस्ते। कौन बात कर रहे हैं बताइए।
1: मैं नैन्सी बोल रही हूँ,
0: नेन्सी, कहाँ से बात कर रही हो?
1: विदिशा से। मैं
0: कैसी हो आप और क्या करती हो?
1: स्टडी करती हूँ
0: कौन सी क्लास में?
1: अभी 10th। थैंक
0: चलिए, तो इस बार बोर्ड से आपके हमारी शुभकामनाएं। आपके लिए अच्छी मेहनत करिए
1: यू।
0: और अच्छा परिणाम अपने आप के लिए और अपने माता पिता को लाकर दीजिए।
1: आप कौन बोल रही हैं?
0: जी, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ, आपकी अपनी रेडियो संगिनी।
1: ओके,
0: जी नेंसी जी, कौन सा गीत सुनेंगे आप बताइए?
1: मूवी का नाम है दिसों।
0: वरुण धवन की?
1: यस,
0: हाँ, इसका कौन सा गीत सुनेंगे?
1: एक सॉन्ग है सौ तरह।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो नेंसी, आप अगर स्कूल जाएंगे तो अपना गीत कैसे सुनेंगे? और आज कैसे फोन लगाया? इस वक्त स्कूल नहीं है आपका?
1: अभी मैं घर पे हूँ,
0: घर?
1: प्रोग्राम चल रहा है तो हमने सोचा आज सुन लें।
0: अच्छा, तो आज छुट्टी क्यों ली स्कूल से?
1: आज से ही मन कर रहा था, बारिश बारिश होती है,
0: अच्छा। और कल फिर गीत किसे सुनाएंगे आप अगर स्कूल जाएंगे तो?
1: फिर देखेंगे कोई ना कोई रीजन मतलब।

0: हेलो, नमस्ते
1: नमस्ते जी। जी नमस्ते।
0: जी, कौन बात कर रहे हैं बताइए, और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं सुरंगपाल सिंह गुर्जर, ग्राम बाबूपुरा, तहसील जिला जालौन से बोल रहा हूँ।
0: जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आसपास बच्चों की वक्त बच्चों का शोर भी बहुत आ रहा है, क्या बात है, घर में
1: हाँ,
0: चहल पहल है।
1: विद्यालय में हूँ इसलिए
0: अच्छा, विद्यालय में
1: अभी
0: है आप? हाँ, तो
1: लंच चल रहा है तो।
0: अच्छा, इसीलिए इतना शोर शराबा चल रहा है, बच्चे खाते हुए लंच करते हुए मस्ती कर रहे हैं और
1: जी
0: आप उनका
1: साहब
0: ध्यान रख रहे हैं।
1: जी, हिंदी
0: जी, कौन सा विषय पढ़ाते हैं आप विद्यालय में?
1: पढ़ाते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, तो चलिए बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मुझे क्रांति का सुना दीजिए,
0: कौन सा गीत? क्रांति फिल्म का?
1: कोई भी सुना दीजिए। अच्छे, सभी अच्छे हो तुम।
0: सभी अच्छे हैं, ठीक है, तो हम
1: आपकी बरस जरा बरखा की रानी भर देंगे, ये सुनवा
0: ये गीत
1: दीजिए।
0: आपके लिए आपके रेडियो सेट पर। नमस्कार।
1: नमस्कार जी।

0: हेलो
1: जी नमस्ते, मैं
0: नमस्ते।
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: जी उज्जैन से बात कर रहे हैं। प्रेम सिंह जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। कैसे हैं?
1: जी थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हो।
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे श्रोताओं के साथ हम कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रम सुनते भी हैं और उन्हें सुनवाते भी हैं, तो यही
1: जी
0: हमें
1: सर,
0: बहुत अच्छा
1: मोबाइल ऐप पर
0: लगता है।
1: कार्यक्रम सुनते हैं, बड़ा अच्छा कार्यक्रम पेश करते हैं आप।
0: धन्यवाद धन्यवाद। तो आप उज्जैन केंद्र सुनते हैं या उज्जैन से भोपाल केंद्र सुनते हैं?
1: उज्जैन, भोपाल, इंदौर, ऐसे भी मोबाइल ऐप पर आते हैं ना कार्यक्रम, तो
0: जी जी
1: बताऊँ आपको, मैं लगभग 30 आकाशवाणी केंद्र सुनता हूँ।
0: ओहो, क्या बात है,
1: जी
0: इतना लगाव है आपको रेडियो से।
1: हाँ जी बिल्कुल, और
0: हाँ हाँ
1: मैं अपना जो कॉल का रिकॉर्ड होता है ना,
0: जी जी
1: वो अपने एक डायरी में भी मेंटेन बना रखा है। 1 जनवरी 2026 से अभी तक मेरे 1200 कॉल हो चुके हैं।
0: हर 30 केंद्र मिलाकर।
1: हाँ जी बिल्कुल, हर 30 केंद्र मिला के,
0: चलिए, बहुत
1: उसमें
0: अच्छी
1: कुछ
0: बात
1: प्रोग्राम
0: है।
1: लाइव भी आते हैं और कुछ रिकॉर्डेड भी होते हैं। जब मैं फोन लगाता हूँ, कॉल शामिल हो जाता है और रिकॉर्डिंग शामिल हो जाती है, तो उसको एंट्री कर लेता हूँ।
0: उसकी एंट्री कर लेते हैं, तो यानी आपने अच्छा खासा बही खाता बनाया हुआ है अपने फोन कॉल्स का।
1: 2000 कॉल लगाने का एक लक्ष्य रखा हुआ है,
0: अच्छा, 2000 का रखा है और अभी 1600 हुए हैं, 400
1: नहीं
0: और बचे।
1: 1200 भी, 1200
0: अच्छा,
1: भी।
0: 1200 हुए हैं। सही,
1: हाँ
0: ठीक। तो हम चाहते हैं कि आपका ये लक्ष्य आप जरूर प्राप्त करें। और
1: जी,
0: इस वक्त कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे, बताइए।
1: आप सुनवा दीजिएगा, फिल्म का नाम है प्रेम रतन धन पायो और गाने के बोले आज उनसे मिलना है हमें, और ये छोटी लड़की है साक्षी, जो 5वीं कक्षा में पढ़ाई करती है, ये भी आपसे बात करना चाहती है,
0: बिल्कुल
1: आप
0: बिल्कुल,
1: कैसे हैं।
0: करवाइए।
1: हेलो
0: हेलो, कैसी हो आप?
1: जी, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो मैम।
0: हम भी अच्छे हैं। साक्षी, आपने 5वीं क्लास में आप पढ़ती हो,
1: जी मैम,
0: तो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ती हो या हिंदी माध्यम में?
1: हिंदी माध्यम में।
0: हिंदी माध्यम में। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। बड़ा अच्छा लगा हमें ये सुनकर कि बच्चा मतलब आप जो है हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं। और आपका पसंदीदा विषय कौन सा है, बताइए। इंग्लिश अच्छा लगता है, क्या बात है। हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं और इंग्लिश बहुत अच्छा लगता है आपको। और मैथ्स से डर लगता है, गणित से
1: जी लगता है तो है, पर हाँ
0: सॉल्व कर लेते हैं समझ कर।
1: जी
0: हाँ, तो साक्षी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। अच्छी पढ़ाई कीजिए और खूब नाम रोशन कीजिए अपने मम्मी पापा का।
1: मैम, और मेरी एक बड़ी दीदी भी है और एक भैया भी।
0: अच्छा, तो आपको दीदी भैया का अच्छा गाइडेंस मिल जाता है ना?
1: जी
0: चले, तो सबको हमारा नमस्कार कहिएगा और पापा की पसंद पर सुनिए ये गीत। नमस्ते।
1: नमस्ते मैम।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: नमस्ते दीदी, नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: दीदी। बहुत बढ़िया। और फोन लग गया तो बहुत बढ़िया हो गया।
0: और भी अच्छे हो गए, फोन लग गया तो। अभी ये भी बता दीजिए कि हमारी बात किन से हो रही है?
1: जी मैं जगत सिंह चड़ार ग्राम तहसील बेगौन जिला रायसेन से बोल रहा हूँ जी। जगत सिंह चड़ार
0: जी, जगत सिंह जी, स्वागत है। आज कौन सा गीत पसंद किया है आपने सुनने के लिए और सुनवाने के लिए?
1: मोहम्मद अजीज और अलका की आवाज में गाना है, गाना के बोल हैंगे चांद और तारे दिन और रात।
0: चलिए ठीक है,
1: जी आप
0: नमस्कार।
1: प्रियंका मैडम जी बोल रहे हैं?
0: हाँ जी, प्रियंका मैडम बोल रहे हैं। पहचान लिया आपने हमें,
1: जी
0: धन्यवाद।
1: जी पहचान लाई मैंने।
0: हाँ जी, चलिए, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: श्रोताओं, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। कभी हंसी की बारिश है तो कभी आंसुओं का समंदर है। जिंदगी का हर एक पल किसी इम्तिहान का मंजर है। कभी सपनों के फूल खिले हैं तो कभी रेगिस्तान भी बंजर है। पर थकना नहीं ए मुसाफिर, ये जिंदगी अवसरों का समंदर है। अब दीजिए अनुमति आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका को आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार, अगली मुलाकात तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और नेक गतिविधियों में व्यस्त रहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति प्रियंका माहेश्वरी की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
6: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इस महीने के अंत में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत इस साल ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में 12 से 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में संगठन के 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अमेरिका के एशविले में G20 बैठक के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत में बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी की भूमिका पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी, डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्रों को उपलब्धियां प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज ग्वालियर में प्रदेश स्तरीय बलराम जयंती महोत्सव में उत्कृष्ट किसानों, जिला सहकारी बैंकों और पैक्स संस्थाओं को सम्मानित करेंगे। इस दौरान वे किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल और कृषि कवच योजना का शुभारंभ करेंगे। वहीं शिवपुर में आयोजित बलराम महोत्सव को वर्चुअली संबोधित करेंगे। किसानों की आराध्य शक्ति और परिश्रम के प्रतीक भगवान श्री बलराम जी की जयंती और पावन पर्व हलषष्ठी के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश वासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि बलराम कृषि महोत्सव प्रदेश के अन्नदाता किसानों के सम्मान, सशक्तिकरण और समृद्धि का उत्सव है। और क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में T20 सीरीज का पहला मैच 13 सितंबर को खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला 15 सितंबर और तीसरा और अंतिम मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम पत्रों का है। इसमें आप हमें अपनी पसंद के गीत बताते हैं पत्रों के माध्यम से। पहला गीत सुनेंगे फिल्म कभी कभी से। आवाज़ें लता मंगेशकर किशोर कुमार की हैं।

संगीतकार साहिर हैं संगीतकार खयाम। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है नेपाल पैलेस सागर से। श्रोता हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। अगले श्रोता राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से हैं। एमएम राजावत, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अगला गीत सुनेंगे फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से। स्वर बेनी दयाल, सुनिधि चौहान और साथियों के हैं। गीत लिखा अनवर खालिद ने, संगीतकार हैं बिद्दू। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है छत्तीसगढ़ से। श्रोता हैं दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास माणिकपुरी, लछनपुर से विश्वनाथ साहू और पिपरिया से हैं दुर्गाराम साहू। अगले श्रोता सिंहपुर बड़ा से हैं राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

आशा भोसले के स्वर में अगला गीत सुनेंगे फिल्म उमराव जान से। गीतकार हैं शहरयार, संगीतकार हैं खयाम। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है ननोरा महोबा उत्तर प्रदेश से। श्रोता हैं बलराम दास अहिरवार, श्रीमती कस्तूरी, आराधना, सोनिका, उपमा और नैतिक वर्मा। अगले श्रोता भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से हैं स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, भाऊ मराठा, गणेश मराठा, कार्तिक मराठा, संजना, ललिता नारायण। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अगला गीत सुनेंगे फिल्म रंगीला से। इस गीत को सुरों से सजाया है आशा भोसले और आदित्य नारायण ने। गीत लिखा महबूब ने, संगीतकार हैं AR रहमान। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से। श्रोता हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान मालाकार।

अनिला मिर्ज़ा और उहलमान की आवाज़ में अगला गीत सुनेंगे फिल्म ब्लफ मास्टर से। गीत लिखा आरपी भट्ट, अर्श उहलमान और अनिला ने, संगीतकार हैं विशाल शेखर। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है पजोनिया जलौन उत्तर प्रदेश से। श्रोता है सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया। अगले श्रोता डोगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजबिये। अगले श्रोता गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जतेक बीरक और मीका बीरक। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
1: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
1: क्या?
0: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
1: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: और सुनेंगे कैसे?
0: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
4: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
3: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
4: अरे काहे का मजा।
3: क्यों, क्या हुआ?
4: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
3: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
4: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
3: ये हुई ना बात। युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
4: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान
5: आकाशवाणी इंदौर।
4: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
6: अरे रेवती ताई, या रविवारी आपल्याला उज्जैनला चलायचं आहे, तयार रहा बरं का?
7: मी नाही येऊ शकणार।
6: अरे आपल्याला सकाळी चलायचं आहे, काय त्रास आहे त्यात?
7: रविवारी सकाळी रेडिओवर मराठी कार्यक्रम येतो 10:30 वाजता, तो मी नक्की ऐकते, तो कधी सोडत नाही।
6: असं का? अरे पण आता आपल्याकडे मोबाईल आहे आणि रेडिओ आता मोबाईलवर सुद्धा ऐकता येतो।
7: अरे वा, हे तर खूपच छान, मग मी नक्की येणार।
6: तर मोबाईलवर ऐप न्यूज ऑन AIR डाउनलोड करा आणि त्यावर ऐका
7: मराठी कार्यक्रम।
6: तर नक्की ऐका प्रत्येक रविवारी सकाळी 10:30 वाजता
7: मराठी कार्यक्रम।
2: मालवा की शान
1: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म गीत।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
8: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जमुनिया का 15वां भाग।

रहमदिल और नेक इंसान रतन की पत्नी जमुनिया, जो कि अनपढ़ है और उसके पास एक नवजात शिशु है, उसे करण छल कपट से घर से निकाल देता है और उसी गांव का एक नेक दिल इंसान छुल्लन मदद करता है। रात दिन एक करके जमुनिया पढ़ लिख लेती है और अचानक सरपंची की सीट महिला हो जाने के नाते गांव के लोग उसे उम्मीदवार बना देते हैं। दूसरी ओर दीवान अपनी पत्नी को भी इसी पोस्ट के लिए खड़ा कर देता है। अब आगे।

0: जमुनिया, आदमी के जीवन में सबसे अच्छी उम्र यही होती है।
1: सच्ची बात कही, खाओ पियो खेलो मस्त रहो, न रोटी की चिंता न इलेक्शन की।
0: हाँ, और इलेक्शन की चिंता तो आपको ही सबसे ज्यादा है, बाकी लोग तो मजे में देखो कैसे कबड्डी खेल रहे हैं। चलो हम, मैं कमरे में चलता हूँ, आगे आप संभालो।
1: ठीक है जयंत जी, आप जाइए, मैं देखती हूँ आगे क्या करना है। ठीक
2: का जमुनिया दीदी।
1: कल
2: का होने वाला है?
1: कल का होने वाला है ये तो तुम हमसे बेहतर जानते हो भैया, हम का बता सकते हैं। अरे मेघा जी
3: नहीं आया क्या?
1: आराम करने गए हैं अभी घर पर।
3: शिल्पी और जमुनिया, देखो आज हमें अलग अलग घरों में जाकर अलग अलग समझाना होगा, कौन किसको वोट दे, है ना? इस तरह हम एक साथ तीन तीन लोगों को समझा पाएंगे।
4: हाँ,
3: है ना?
1: आइडिया
3: है ना? बढ़िया,
1: बिल्कुल।
3: अगर एक साथ निकले तो हमारा काम तिहाई हो जाएगा।
1: ठीक कह रही हो दीदी, ऐसा ही करते हैं।
4: देखो जमुनिया
1: जी,
4: ये तो इसी गांव के हैं, इन्हें सब जानते हैं और मेघा को लगभग सभी लोग पहचानते हैं। रही मेरी, मैं नई हूँ, सब मुझे जानते नहीं, तो मेरा अकेला जाना क्या ठीक रहेगा?
3: बिल्कुल ठीक रहेगा, ये इतना मुश्किल नहीं है शिल्पी, जितना तुम सोच रही हो।
4: कैसे?
3: देखो एक दो घर में जाओगी तो अपने आप समझ में आ जाएगा।
4: अच्छा,
3: और फिर तुम्हारा असर लोगों पर ज्यादा पड़ेगा। सोचो तो सही, लोगों को लगेगा कि एक बाहर की लड़की आकर जमुनिया का साथ दे रही है।
4: अच्छा,
3: तो उन्होंने भी उसका साथ देना ही चाहिए, है ना? बढ़िया।
4: हाँ, ये ठीक है, तो चलो कोशिश करती हूँ, अगर बात नहीं बनती तो फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगी।
1: ठीक है, तो फिर हम लोग अलग अलग होकर अलग अलग घरों में जाते हैं।
4: हाँ, ये ठीक रहेगा।
1: चलिए
3: चलिए।
4: हाँ मेघा। हाँ
5: क्या है, कौन हो, कहाँ से आई हो?
4: हम शहर से आए हैं, वो यहाँ की लड़की मेघा।
5: अच्छा, वो
4: उसके दोस्त हैं।
5: रामधरेश की बिटिया तो नहीं मेघा?
4: हाँ हाँ, वही मेघा।
5: अच्छा अच्छा, हाँ तो।
4: और प्रचार करने निकले हैं।
5: किसका?
4: अरे जमुनिया के पक्ष में, इस बार उसे ही मौका दीजिए और अब ज्यादा सोचिए मत। और हाँ याद रखिए, आज की रात अपने आदमी को शराब से बचा कर रखना।
6: हाँ। अच्छा अच्छा, वो तुम ही हो?
4: हाँ?
6: जो मेघा दीदी के साथ जमुनिया का प्रचार कर रही हो?
4: हाँ।
6: अरे हम तो पहले से ही सोच के बैठे हैं कि जमुनिया बहन को जिताना है।
4: अच्छा,
6: इसीलिए अगर चाहो तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। और सुनो, हमें सब पता है
4: क्या?
6: कौन कौन लोग दीवान के हैं या दीवान को वोट देना चाहते हैं। हाँ
4: अच्छा,
5: अपन सीधे वहीं चलते हैं।
6: हाँ।

0: अच्छा पानी वानी लोगी? तुम्हारे होठ तो सूखे हुए दिख रहे।
1: हाँ प्यास तो बहुत लगी है।
0: ए सीला।
2: हाँ माँ।
0: हाँ पानी ले आ बिटिया।
2: लाई अम्मा।
0: हाँ चलो एक मिनट हाँ। रुको है, ये जल पानी ला रही है ना। हाँ दे बिटिया लो पानी पी लो।
1: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, बड़ी प्यास लगी थी।
0: हाँ, हाँ,
1: लगी अच्छा लगा।
0: एक मिनट रुको बहन, बस घर में ताला लगा लू है ना।
3: चलो चलो जल्दी करो जल्दी।
0: हाँ रुको तो लग रहा है बस। चलो
3: आ जा आ जा
1: चलो।
4: दीदी लाज रखना, बाकी तुमसे का कहे, तुम तो खुद समझदार हो।
5: बहन इसमें लाज की कोनो बात नहीं है। अरे तुमको वोट देकर तो हम खुद को ही वोट देंगे, और यही नहीं बल्कि इस गांव में नया राज भी लेकर आएंगे।
4: पक्का?
5: हाँ पक्का।
4: तो फिर चलो करते हैं बात।
5: हाँ हाँ चलो बहन चलते हैं। अरे रघु जरा घर देखना।
6: फिक्र मत करो।
5: बस अभी मैं थोड़ी देर में आती हूँ।
4: बहन तुम्हें तो पता ही होगा कि कल वोट पड़ने वाले हैं।
3: हाँ हाँ
4: सरपंची का चुनाव होने वाला है, और मैं जमुनिया बहन के लिए आपका वोट मांगने आई हूँ। आप याद रखना।
3: हाँ हाँ दीदी।
4: वो दो वादे। एक वादा तो वो कि आज अपने आदमी को दारू मत पीने देना, और एक वादा वो कि कल वोट जमुनिया को देना।
3: मेघा दीदी आप तो इसी गांव की हो, हम भी इसी गांव के हैं। मैंने सोच ही रखा था वोट जमुनिया को ही दिया जाए, पर हमें जरा ये तो समझाओ कि जमुनिया को वोट देने से हमारा क्या फायदा होगा।
4: फायदा वो
3: तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता दूं कि दीवान ने हमें कंबल दिए, धोती दी, हमारे आदमी को दारू भी बांटी। हमें जमुनिया से क्या मिलेगा, हमारा क्या फायदा होगा? जमुनिया हमारे लिए क्या कर सकती है दीदी?
4: देखो हमारी बात गौर से सुनो बहन, जो कुछ भी तुम्हें मिला है या दीवान ने दिया है उसकी जिंदगी बहुत थोड़ी है, और वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और जो जमुनिया करेगी या देगी वो तुम्हारे जीवन भर चलेगा।
3: ये तो आपने सही कहा दीदी, बिल्कुल सही कहा।
4: अच्छा चलती हूँ। हाँ राम राम। और हाँ याद रखना कल वोट पड़ना है, तो आज रात को दारू की बैठक में तुम्हारे आदमी को बुलावा है तो जाने मत देना, है ना?
3: समझ गई मेगा बहन, आप तो निश्चिंत रहो। वोट किसी के सामने तो पड़ता नहीं है।
4: हाँ।
3: इसलिए हमने किसको वोट दिया किसे पता।

0: अरे रोको रोको रोको, अरे रोको भैया। कहा भैया,
1: कौन
0: कहा हो रहा है ये?
2: तुम्हें क्यों बताएं? तुम हो कौन?
1: और का?
2: और तुम तो इस गांव का वोटर भी नहीं हो
1: भैया।
0: भैया मैं वोटर तो नहीं हूँ, इसलिए वोट तो डालूंगा नहीं।
1: अच्छा,
0: पर मैं इस देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ, इसलिए जहाँ भी गलत काम होगा उसका विरोध करने का मुझे अधिकार है।
1: हो रहा है
0: और वो मैं जरूर करूंगा।
1: अरे क्या गलत काम हो रहा है यार, तो आप रोकोगे?
3: समझ में नहीं आ रहा यार। अरे हम प्रचार कर रहे भैया,
1: हाँ?
3: हमारी मालकिन चुनाव की उम्मीदवार है।
1: और क्या,
3: अब उसके लिए वोट मांगने निकले
1: तो मांगेंगे।
3: और इसलिए तो प्रचार करने निकले हैं यार,
1: हाँ?
3: इसमें कौन सी गलत बात होगी?
0: गलत ये है भैया,
1: हाँ?
0: चुनाव से एक दिन पहले आप भोपू पर चुनाव प्रचार नहीं कर सकते।
3: हाँ,
0: चुपचाप लोगों से मिलकर अपनी बात कह सकते हो,
1: हाँ?
0: लेकिन भोपू जुलूस पर चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी है। और हाँ, आपकी हम शिकायत भी कर सकते हैं।
1: करो करो भैया, करो करो, जा जा, जब तक वो लोग यहाँ आएंगे ना। हाँ को भैया, अपना तो काम ही खत्म हो जाएगा।

0: कर लो यार, चलो चलो दो वोट दो,
1: मालकिन को वोट दो,
2: वोट दो,
1: मालकिन को वोट दो।
3: गुरुजी, जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने अनुभव किया है कि आप ज्यादातर चुप रहते हैं, लेकिन आपके भीतर बहुत अनुभव और ज्ञान है। लेकिन उसका इस गांव को, गांव वाले को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है।
4: हाँ, तुम ठीक कहते हो जयंत, पर मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। मुझ में इतना उत्साह नहीं है कि मैं गांव के लोगों को संगठित करूं, उन्हें दीवान के सामने खड़ा कर सकूं। गांव की सारी तरक्की अकेले दीवान के चंगुल में फंसी हुई है।
3: मैं इस गांव में केवल थोड़े बहुत अनुभव के लिए आया था, पर यहां की स्थिति देखकर लगता है कि यहीं रह जाऊं। और हां, मेघा ने वैसे भी मुझे चुनौती दी थी कि जब तुम मेरे गांव चलोगे तो वापस आने का मन नहीं होगा। गुरुजी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कल के चुनाव में आप सक्रिय भूमिका निभाइए। हम दोनों वहां चलेंगे और देखेंगे कि वहां कोई गड़बड़ी ना हो, वोटिंग निष्पक्ष हो।
4: भाई, तुम कहते हो जयंत, तो फिर मैं जरूर चलूंगा। तुम्हारी बातें सुनकर मुझ में भी एक नया जोश पैदा हो रहा है, जो जमुनिया के मार्फत लगता है साकार होगा और इस गांव की तकदीर बदलेगी।
3: हाँ गुरुजी, जरूर बदलेगी।
5: दोनों कहाँ रहे आज दिन भर? पता है, मैं अकेली थी घर पर।
6: क्या बाबा, तुम भी नहीं थे? चिरैया अकेली थी घर पर?
5: हाँ।
7: नहीं नहीं नहीं जमुनिया, ऐसी कोई बात नहीं बिटिया। अरे हम खाना वाना बना कर निकले थे, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था ना, हमने सोचा हम भी तुम्हारे हक में लोगों को समझाएं, बस इसीलिए निकल गए थे। लगता है कि इस बार दीवान तुम ही से हारेगा। चलो चलो चलो, खाना खाते हैं, कल भी बहुत काम है बिटिया।
6: हाँ चलो।
8: क्यों भाई लोगों, कहाँ रिपोर्ट? अरे मालिक मालिक कहा कर रहे हो? चल तू सुना, तुझे कहा लगाते हैं?
9: मालिक।
8: हाँ हाँ बोल।
9: मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता।
8: हट, आज तक समझ में आता रहा तुझे सब कुछ, और जब दीवान से फायदा उठाना होता है तब समझ में आता है, लेकिन जब उसे कुछ जानना होता है, उसके फायदे की बात होती है, तब तुम्हारी समझ में नहीं आता। तो छोड़ छोड़ तू।
10: मुझे तो हालात ठीक नहीं दिख रहा मालिक।
8: ससुर जब बोलेगा बुरा ही बोलेगा।
10: हालात
8: बुरे दिखाई दे रहे हैं, सुन ले कान खोलकर।
10: मालिक,
8: अगर रिजल्ट बुरा रहा ना तो सबसे पहले तुझे ही निपटाऊंगा मैं।
10: रहम मालिक, रहम रहम।
8: चल रहम किया। अब सुन
10: मालिक,
8: मुझे भुग्गा चाहिए।
10: भुग्गा?
8: भुग्गा, तुरंत, अभी, इसी समय।
10: मालिक।
8: हाँ जा बुला के ला उसे।
10: अच्छा मालिक, अच्छा, अब बुला के ला तू।
8: हाँ बुला के ला। और हाँ कतवारू।
11: हाँ मालिक।
8: हाँ तुमसे ही कह रहे भैया।
11: जी मालिक जी।
8: आप फरमाओ
11: जी,
8: आपके पास कछू कोई संतोषजनक खबर है कि नहीं?
11: मालिक अब क्या बताऊं मैं आपको, देखा कि पूरे गांव में घर घर जाके उन लोगों ने सबको जाने का घुट्टी पिला दी। अरे कोई कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है।
8: का?
11: वो हर जगह एक ही जवाब कि इतने साल सरपंच रह के तुम्हारे दीवान जी ने गांव के लिए क्या कर लिया। और मालिक भाई तो हम चुप रह जाते हैं।
8: जवाब? सर चुप। अरे तुम सबको ही चुप्पी की बीमारी लग गई है। हाँ अरे तुम्हारे पास कहने को कुछ है ही नहीं। अरे हम होते ना तो सुबह से शाम तक बता देते कि हम

0: इस गांव के लिए क्या क्या किया है। अरे कल जब चुनाव है तो कम से कम इस रात सब लोग गांव में जाके फैल जाओ। कंबल दो, धोती दो, दारू दो, दारू
1: दारू मालिक।
0: हाँ, और जिसको जो जरूरत है वो दो से, पर वोट जरूर लो। समझ गए? और अगर किसी को इसमें से कुछ नहीं चाहिए तो उसको पैसा दो, खरीद दो सबको, पर वोट जरूर लो। सुनो तुम लोग, इसे मेरी गीदड़ भपकी मत समझना। अगर मालकिन चुनाव हार गई ना,
1: नहीं नहीं नहीं मालिक,
0: तो सचमुच इस गांव में मैं आग लगा दूंगा।
1: मालिक,
2: चल चल।
3: राम राम मालिक।
0: हाँ, भुग्गा आओ आओ, बैठो।
3: ठीक है मालिक।
0: आ सुनो तुम लोग, ये भुग्गा को छोड़कर जो बाकी लोग यहाँ बैठे हैं ना, वो जाओ गांव में जाके फैल जाओ, और लोगों को कल की जरूरत के हिसाब से वोट देने के लिए तैयार करो। समझ गए? चलो जाओ सब। चलो गए सब, गए सब। हे बुग्गा।
3: जी मालिक।
0: सुन हमारी बात, हमने तुझे यहाँ एक खास मकसद से बुलाया है।
3: वो क्या है मालिक?
0: सुन, तुम्हारी घरवाली शारदा तो रही नहीं।
3: जी मालिक।
0: है ना? और तुम्हारे पास कोई ज्यादा सामान भी नहीं है।
3: ओह मालिक।
0: तो सुनो, हम ये चाहते हैं कि अपना रहा सहा सामान निकाल कर अपनी चुपड़िया खाली कर दो।
3: आए मालिक।
0: वो इसलिए कि हम तुम्हारी चुपड़िया में आग लगाने वाले हैं।
3: अच्छा, रहम करो मालिक, क्या कर रहे हैं?
0: और जब थाना पुलिस आए तो तुझे बयान देना है कि ये आग लगाने वाला काम जमुनिया के लोगों ने किया हैगा।
3: ये कहा कह रहे मालिक?
0: हाँ, और जमुनिया के लोगों ने इसलिए आग लगाई तेरी झोपड़ी में क्योंकि तूने जमुनिया को वोट देने से इनकार कर दिया था।
3: ये क्या जुलम कर रहे हैं मालिक? हमारे कंधे पर बंदूक रख कर चला रहे हैं।
0: अरे शुक्र कर कि हम तेरे कंधा पर ही रख कर बंदूक चला रहे हैं। अरे नहीं तो हम तेरी छाती पर सीधे बंदूक चला देते।
3: मालिक
0: सुन, ये हमारा हुक्म है
3: मालिक। ठीक
0: है। हाँ, हम तेरे से कोई राय मशवरा नहीं कर रहे हैं।
3: जी मालिक।
0: और तेरा घर हमने इसलिए चुना है क्योंकि तू गांव के बाहर रहता है। अरे उसमें हम आग लगाएंगे तो किसी और के घर के जलने का डर नहीं रहेगा।
3: ऐसा जुलम मत करो मालिक, ये क्यों कर रहे हैं आप? जब शारदा जचकी में थी मालिक तो जमुनिया ने ही साथ दिया था।
0: अच्छा?
3: हाँ, मान लो यही बात अगर जमुनिया कहने लगे तो आप पर भी तो आएगी ना मालिक। हाँ मालिक। अगर आप चाहें तो यही काम इलेक्शन के बाद भी कर सकते हैं। हाँ, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा मालिक।
0: अरे चुप कर, समझ गए हम सब कुछ।
3: जी मालिक।
0: जान गए तेरी असलियत भी। जा, अगर जा, दूर हो जा मेरी नजरों से, जा।
3: मालिक, अगर कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। प्रणाम मालिक, प्रणाम।
0: गुस्ताखी तो तुझसे हो गई है भुक्का।

हम देखते हैं कि तुझे कैसे माफ करना है। का करें समझ में नहीं आ रही कछु।

0: चमुनिया जी, लगता है थक गई हैं आप, थोड़ा आराम कर लीजिए।
1: थक तो आप गए हैं जयंत बाबू, चलिए पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं थोड़ी देर,
0: अच्छा भाई,
1: है ना?
0: हाँ भाई सही, चलो। हाँ भाई, अच्छा लगा, पेड़ के नीचे की छांव की ठंड का मजा ही अलग है।
1: हाँ जयंत जी, एक दो दिन के लिए ऐसी ठंड अच्छी लगती है।
0: ऐसा क्यों कह रही हो? और कल के बारे में क्या सोच रही हो?
1: हमारी जिंदगी में काम का खाता बहुत बड़ा है जयंत बाबू, और आराम का कम, इसलिए पेड़ के सामने होते हुए भी हम छा नहीं पाते। और जो कल की बात है, तो चुनाव है, एक परीक्षा है, तो उसका थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा ही।
0: कोई घबराने की जरूरत नहीं है जमुनिया, और हाँ, कोई टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा। और टेंशन तो उन्हें होगा जो सरपंच थे, जिनकी सरपंची हो सकती है चली जाए। तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है? मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो कोई बात नहीं।
1: जयंत जी, मैं इस तरह नहीं सोचती, मैं जब कुछ ठान लेती हूं ना, तो उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही मानती हूं।
0: वो ठीक है भाई, ठीक है, ये अंजाम पर कल ही पहुंचेगा, पर मैं तुमसे उस कल की बात नहीं कर रहा हूं जो कल चुनाव में आएगा, मैं तो उस कल की बात कर रहा हूं जो आने वाले ढेर सारे कल है और जिनसे तुम्हें जूझना होगा।
1: साफ साफ कहिए जयंत जी, हमें आपकी बात साफ समझ में आई नहीं।
0: देखो जमुनिया, रतन तो रही नहीं, चिरैया वो भी एक न एक दिन अपने आदमी के साथ चली जाएगी, और झुल्लन बाबा काफी उम्र के हो चले हैं, और फिर तुम अपने बारे में क्या सोचती हो?
1: अब आके दूसरी शादी का तो सवाल ही नहीं उठता, मेरा एक बेटा भी है, उसे दीवान बंधुआ मजदूर बनाए बैठा है, उसको मैं जीत कर लाऊंगी, और अब ये गांव, ये ही मेरा सब कुछ है, इसी के लिए जीऊंगी मरूंगी।
0: मुझे लगता है हम लोग काफी आराम कर चुके हैं, अब चलना चाहिए।
1: बहुत देर हो गई।
2: अरे क्या बात है बिटिया, इतने तनाव में क्यों हो? अरे जमुनिया, तनाव तो बहुत बुरी बात है।
1: तनाव कोई इतनी बुरी बात नहीं है, गुरुजी कहते हैं कि तनाव ना हो तो धनुष का क्या फायदा, जब तक अच्छा तनाव नहीं होगा तीर काम नहीं करेगा।
2: अरे वारी जमुनिया, वाह वाह, तू तो बहुत पढ़ लिख गई है रे। अरे हम तो सोचते थे कि टेंशन बुरी बात है,
3: पर माई ये टेंशन आज ही की रात क्यों? कल वोटिंग है इसलिए ना।
1: दादी मत बन, चल मान ले कल वोट पड़ेगा इसलिए, ठीक है?
2: अरे जमुनिया
1: जी बाबा,
2: खाली वोट के नाम पर तेरी ये हालत तो नहीं होती, कुछ तो खास है बिटिया जो तू बता नहीं रही है।
1: बताऊंगी पापा, आपको नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी, आप ही तो हो।

0: तो मेरे सुख दुख का ख्याल रखते हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ।
1: हाँ, पूछ बिटिया।
0: कि मान लो कल मैं सचमुच जीत जाती हूँ, तो फिर उसके बाद क्या? कुछ दिनों बाद चरैया भी फूल हो जाएगी और गोलू मान लो मैं दीवान की कैद से छुड़ाकर ले भी आऊं, तो आखिर वो अपना घर बसाएगा, मुझे कौन पूछेगा बाबा?
1: समझ गया बेटी, साफ समझ गया। अरे तुझे लग रहा है ये झुल्लन अब ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं
0: है। अरे ये क्या कह दिया पापा आपने? हम तो आने वाले दिनों के बारे में सोच रहे थे। हम अकेले हैं और अजात है, कोई हमारे आसपास ज्यादा घूमेगा तो वैसे ही 100 बातें फैलेंगी। और दूसरी शादी हम करना नहीं चाहते, या यूं कह लो कि हमें अब शादी वादी की दरकार नहीं। ऐसी हालत में हम क्या करें बाबा?
1: अरे बिटिया, कुछ फैसले हमारे हाथ में नहीं होते हैं बेटा, और हमें उसे समय पर छोड़ना
2: पड़ेगा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जमुनिया की 15वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
3: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इस महीने के अंत में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत इस वर्ष ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में 12-13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में संगठन के 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के एश्वेले में G20 बैठक के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत में बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी की भूमिका पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 3रे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी, डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज ग्वालियर में प्रदेश स्तरीय बलराम जयंती महोत्सव में उत्कृष्ट किसानों, जिला सहकारी बैंकों और पैक्स संस्थाओं को सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल और कृषक कवच योजना का शुभारंभ भी करेंगे। वहीं श्योपुर में आयोजित बलराम महोत्सव को वर्चुअली संबोधित करेंगे। भगवान श्री बलराम जी की जयंती एवं पावन पर्व हलषष्ठी के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि बलराम कृषि महोत्सव प्रदेश के अन्नदाता किसानों के सम्मान, सशक्तिकरण और समृद्धि का उत्सव है। नेपाल के लिए राहत और बचाव सामग्री लेकर आज 5वां भारतीय विमान रवाना हो गया है। विमान में 11 सदस्यीय बचाव दल और 5 टन से अधिक आवश्यक दवाएं हैं। और क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में T20 सीरीज का पहला मैच 13 सितंबर को खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला 15 सितंबर और तीसरा 17 सितंबर को होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की है।
4: महिला सभा सुनने वाली मेरी प्यारी सखियों को आपकी सखी नीलम का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, जहाँ बेटियाँ होती हैं ना, वहाँ खुशियाँ अपने आप दस्तक देती हैं। बेटी घर में जन्म लेती है तो वह सिर्फ एक बच्ची नहीं होती, वह अपने साथ मुस्कान, संस्कार, संवेदनाएं और ढेरों सपने लेकर आती हैं। उसकी हंसी से घर चहक जाता है, उसकी बातों में अपनापन होता है, उसके होने से परिवार पूरा कंप्लीट सा लगता है। बेटियां कभी माँ की सहेली, पिता का गुरूर, भाई की सबसे प्यारी दोस्त और पूरे परिवार की ताकत। सच में एक बेटी है जो कितने सारे रिश्तों को सवारती हैं। इसलिए सखियों, बेटियों को भी वो सब दीजिए जिसकी वो हकदार है। ऐसा नहीं समझिए कि बेटियां घर की जिम्मेदारी है। सच ये है कि घर की खुशियों की वजह बेटियां ही होती हैं। सखियों, एक बात और, बेटा हो या बेटी, दोनों ही परिवार की संतान है। दोनों के सपने हैं, दोनों में प्रतिभा है और दोनों को ही आगे बढ़ने का अधिकार है। यदि बेटा परिवार का नाम रोशन करता है तो बेटी से भी हमें यही उम्मीद लगानी चाहिए। बेटा एक परिवार को बढ़ाता है, लेकिन बेटियां दो परिवारों में संस्कार और खुशियां बांटती हैं। आज हमारी बेटियां डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, शिक्षक है, वैज्ञानिक है, खिलाड़ी है और देश की सीमाओं की रक्षा तक कर रही हैं। इसलिए बेटियों को रोकिए मत, उसे पढ़ने के लिए पंख दीजिए। उसे कहें, बेटी तुम जो सपने देखोगी हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। सखियों, आज हम कितनी भी तरक्की की बात कर लें, लेकिन आज भी कई बेटियों को अपने सपनों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कहीं उनकी पढ़ाई रोक दी जाती है, कहीं उनके फैसलों को महत्व नहीं दिया जाता, तो कहीं उन्हें बेटों से कम समझा जाता है। लेकिन इतने संघर्षों के बाद भी आज भी बेटी हार मानने वाली नहीं है। वह हर चुनौती का सामना कर रही हैं, अपनी पहचान बना रही हैं और साबित कर रही हैं कि बेटी किसी से कम नहीं, बस उसे अवसर और विश्वास की जरूरत है। तो आइए सखियों, हम एक ऐसा समाज बनाएं जहां बेटी को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष ना करना पड़े, बल्कि उसे जन्म से ही सम्मान, शिक्षा और सुरक्षा का समान अवसर मिले। क्योंकि बेटी की उड़ान रोकनी नहीं है, उसे हमें आसमान देना है।

0: सखियों, संतुलित और पौष्टिक आहार से शरीर को ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और अन्य आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। अपने खान पान में मोटे अनाज, अंकुरित दाल, फल, हरी सब्जी को शामिल करना है। इसी विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक भेंट वार्ता। शीर्षक है, स्वस्थ जीवन का आधार पोषण। तो सखियों, आइए सुनते हैं शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक वर्मा से निरंजना जैन की बातचीत।
1: सखियों, आप सभी जानती हैं कि स्वस्थ जीवन का आधार है पोषण। आज इसी संदर्भ में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर दीपक वर्मा जी को, जो कि जिला हॉस्पिटल मुरार में शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद मैडम, आपने मुझे इस स्टूडियो में बुलाकर सम्मान दिया है और इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार कितना ज़रूरी है।
2: संतुलित आहार शरीर को आवश्यक ऊर्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वसा और फाइबर प्रदान करता है, जो कि शरीर के विकास में लाभदायक सिद्ध होते हैं। इससे शरीर स्वस्थ रहता है और रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है।
1: तो भोजन में कौन कौन से प्रमुख पोषक तत्व होते हैं?
2: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, जैसे कि विटामिन B1, B2, B5, B6, B12, विटामिन सी, खनिज लवण, मिनरल्स, पानी और फाइबर भी मुख्य पोषक तत्वों के हिस्से माने जाते हैं।
1: तो सर, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है?
2: प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों, ऊतकों और कोशिकाओं के निर्माण एवं मरम्मत के लिए आवश्यक है। बच्चों में वृद्धि और विकास के लिए भी इसकी विशेष आवश्यकता होती है।
1: और विटामिन और खनिज लवण से क्या होता है डॉक्टर साहब?
2: ये शरीर की विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं, हड्डियों, रक्त का निर्माण, प्रतिरोधक क्षमता, दृष्टि और सामान्य बुद्धि विकास के लिए आवश्यक होते हैं।
1: और अगर जैसे किसी बच्चे में या बड़े में आयरन की कमी हो जाती है तो कौन कौन सी समस्या हो सकती है?
2: आयरन की कमी होने से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, जिससे कि इससे थकान, कमजोरी, शरीर में पीलापन और कंसंट्रेशन यानी ध्यान न लगने या सीखने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है।
1: और बच्चों के विकास में पोषण की क्या भूमिका है?
2: बच्चों के विकास में पोषण की अत्यधिक भूमिका है, क्योंकि बच्चों की लंबाई, बच्चों का वजन और बच्चों का जो मानसिक विकास है वो पोषण पर ही निर्भर करता है। अगर आपने बच्चे को सही समय पर सही पोषण नहीं दिया तो बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास बाधित हो सकता है।
1: तो जैसे कई बार सुनने में आता है कि बच्चा कुपोषित है, तो क्या चीज़ की कमी रह जाती है जिससे वो कुपोषित हो जाता है?
2: कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन ऐसी स्थिति है जब किसी व्यक्ति के शरीर को आहार में आवश्यक विटामिन, मिनरल्स, खनिज और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की कमी या उनकी अधिकता का सामना करना पड़ता है। तो इसकी वजह से शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा असर पड़ता है।
1: अब जैसे आजकल हम देखते हैं कि बच्चों को जंक फूड बहुत पसंद होते हैं, लेकिन क्या जंक फूड बच्चों को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए?
2: जंक फूड की मात्रा बहुत ही सीमित होना चाहिए, क्योंकि जंक फूड में अत्यधिक वसा, अत्यधिक नमक और अत्यधिक चीनी का उपयोग होता है, और ये इनमें प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल होता है जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं।
1: आजकल बच्चे ये भी कहते हैं कि हमें नाश्ता नहीं करना है।
2: नाश्ता बच्चों के लिए अनिवार्य है। अगर आपने सुबह अच्छे से नाश्ता किया है तो वो आपको दिन भर ऊर्जा प्रदान करेगा। इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा रहेगा और बच्चों में सीखने की क्षमता विकसित होगी।
1: हरी पत्तेदार सब्जियां बच्चे हों या बड़े हों, इनके लिए कितनी जरूरी है?
2: हरी पत्तेदार सब्जियां हर उम्र के व्यक्ति के लिए जरूरी हैं। शरीर के लिए आवश्यक मिनरल्स, विटामिन्स और खनिज लवण, फाइबर्स इत्यादि प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिससे कि शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, शरीर की जो प्रक्रिया है, वो आसान तरीके से संचालित होती रहे।
1: और कई बार हम जैसे बच्चों को खैर प्रोत्साहित करते हैं कि भाई हाथ धोकर खाना खाओ, बाहर से आए हो तो पहले हाथ धो, तो अगर बच्चे नहीं इसको ध्यान देते हैं तो

0: क्या हो सकता है?
1: बिल्कुल ऐसी आदत बच्चों में शुरुआत से ही डालना चाहिए। अगर हमने बच्चों को हाथ धोना नहीं सिखाया तो खाने के साथ ये कीटाणु जो हाथों पर जम्स होते हैं वो भोजन में चले जाते हैं अंदर पेट में, और उसकी वजह से बच्चे को संक्रमण हो जाते हैं, जिससे कि बच्चे को दस्त है, उल्टी है और निमोनिया, इस टाइप की बीमारियाँ हो सकती हैं और बच्चे के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
0: डॉक्टर साहब, पोषण और स्वास्थ्य का आपस में क्या संबंध है?
1: पोषण और स्वास्थ्य आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा स्वास्थ्य अच्छे पोषण की वजह से ही आ सकता है, इसलिए आपके जीवन में पोषण का बहुत महत्व है।
0: मतलब पोषण की कमी से जैसे बच्चों की पढ़ाई पर भी प्रभाव पड़ता है, बच्चों की दिमागी जो कहना चाहिए कि याददाश्त बढ़ती है वो भी कम हो जाती है अगर पोषण की कमी होती है, तो इस टाइप की कुछ परेशानियां हो सकती है बच्चों को, है ना?
1: जी बिल्कुल, अगर बच्चों में पोषण की कमी है तो उनको कंसंट्रेशन यानी एकाग्र रहने में कठिनाई आएगी और वो अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे और उनके शारीरिक और मानसिक विकास में भी बाधा उत्पन्न होगी अगर पोषण की कमी है तो।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक बात ये भी जानना चाहती थी कि जैसे अभी बाज़ार में कई तरह के फ्रूट्स आते हैं या कुछ बगैर मौसम के भी आते हैं, तो वो भी उतने पोषक तत्व देते हैं जो कि एक मौसम में आते हैं फल?
1: कहना जरूरी है कि ये जो आर्टिफिशियल फल आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनमें प्रिजर्वेटिव और केमिकल का उपयोग हो रहा है, तो उतने पोषक तत्व जो फल मौसम में उस जिस मौसम में जो फल आना चाहिए अगर वो उस मौसम में आ रहा है और उस मौसम में उसका सेवन करें तो ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। अगर वो हम दूसरे मौसम में उसका सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें जो पोषक तत्व हैं उनमें कमी आ सकती है।
0: डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमने बच्चों के पोषण की बात की थी, अब हम जानना चाहते हैं कि महिलाएं गर्भावस्था के दौरान किस तरीके की डाइट लें कि उससे गर्भस्थ शिशु का विकास भी अच्छे से हो और महिलाएं भी स्वस्थ रह सकें।
1: ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। गर्भावस्था में दो लोगों के लिए दोगुना खाना नहीं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर और संतुलित आहार लेना जरूरी है। इसका उद्देश्य माँ की पोषण संबंधी ज़रूरतें पूरी करना और बच्चों की वृद्धि एवं विकास को समर्थन देना है। गर्भावस्था में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन्स, पानी और खनिज प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। जैसे कि प्रोटीन के रूप में हम दाल, अनाज, राजमा, सोयाबीन, दूध, दही, पनीर ले सकते हैं
0: जी
1: और अंडा, मछली या चिकन भी ले सकते हैं अगर यदि लेते हों। हरी
0: जी
1: सब्जियां जरूर उसमें शामिल होना चाहिए और कैल्शियम और विटामिन डी के लिए हमें दूध और दही का सेवन करना चाहिए।
0: और कई बार क्या होता है कि जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद भी माँ को किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है?
1: माँ का दायित्व है बच्चे को अपना फीड कराना, दूध पिलाना। ब्रेस्ट फीडिंग सरकार ने मैंडेटरी कर रखी है,
0: जी
1: अनिवार्य रूप से 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना है, तो इसके लिए माँ को पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार लेना चाहिए जिसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और सारे आहार संतुलित मात्रा में होना चाहिए।
0: डॉक्टर, संतुलित आहार क्या होता है? मतलब हमारी थाली में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होना चाहिए जिसको कि हम कह सकते हैं कि ये संतुलित आहार है?
1: संतुलित आहार ऐसा आहार होता है जिसमें व्यक्ति की उम्र और आवश्यकता के अनुसार सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित और सही मात्रा में मौजूद हों, जो कि संतुलित आहार कहलाता है, जिसमें मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, खनिज लवण, पानी और फाइबर। ये सारे तत्व आपकी थाली में होने चाहिए। इनका स्रोत क्या है? तो इनका स्रोत ये है कि अनाज, मिलेट्स और दाल, चावल, सब्जियाँ, फल, ये सारे तत्व आपकी थाली में होने चाहिए।
0: हम जैसे सही पोषण और स्वस्थ जीवन को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे अपना सकते हैं?
1: व्यायाम निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी है। संतुलित आहार, व्यायाम, योगा दिनचर्या का हिस्सा होना ही चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, साफ पानी पीना भी क्या पोषण का ही हिस्सा माना जाता है?
1: साफ पानी नहीं पीते हैं तो इसकी वजह से पानी में मौजूद बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकते हैं, जैसे कि टाइफाइड है, पीलिया है और भी कई गंभीर बीमारियां दूषित पानी पीने की वजह से हो सकती हैं।
0: बढ़ते हुए बच्चे जो होते हैं या कहते हैं किशोरावस्था है, तो उसमें बच्चों के लिए पौष्टिक आहार बहुत ज़रूरी है। वैसे तो पौष्टिक आहार सबके लिए ज़रूरी होता है, बढ़ती उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उस समय उनकी बॉडी में कैल्शियम, आयरन सबकी ज़रूरत होती है।
1: अगर बच्चे को उम्र के अनुसार सही मात्रा में संतुलित आहार नहीं मिला तो उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, जो कि उनके शारीरिक और मानसिक विकास में बाधक सिद्ध होगी।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आजकल अब हम कहते हैं कि बच्चों को जंक फूड ना दें, तो हम उनको बिल्कुल बंद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें किस तरीके से दें कि भाई वो कम खाएं और दूसरी चीज़ों की तरफ आकर्षित हों?
1: उनको हमें जो थाली में परोसे जाने वाला भोजन है वो हमें आकर्षक बनाना है,
0: जी
1: जिससे कि बच्चों का ध्यान आकर्षित हो। हम जो बच्चों को बोलते हैं बच्चे उससे नहीं सीखते, बच्चे हमारी नकल करते हैं, बच्चे बड़ों की नकल करके सीखते हैं। तो हम संतुलित आहार अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे तो बच्चे हमें देख के नकल करेंगे और हम भी बच्चों को अपने साथ बैठा के खिलाएं। और जंक फूड चूंकि पूरी तरीके से हम बंद नहीं कर सकते, ये बिल्कुल

0: अपनी जीवन शैली में शामिल करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप आज इस स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
2: सखियों। अभी आपने सुनी भेंटवार्ता स्वस्थ जीवन का आधार पोषण। जानकारी दे रहे थे शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक वर्मा, और उनसे बातचीत कर रही थी निरंजना जैन। सखियों, ऑनलाइन शॉपिंग आजकल हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए सामान ऑर्डर करना बेहद आसान हो गया है, और अब तो भीड़ भाड़ वाले मॉल में जाने या लंबी कतारों में इंतजार करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप आसानी से कीमतों की तुलना घर बैठकर ही कर सकती हैं। आप उसके रिव्यू को पढ़ सकती हैं। कैश ऑन डिलीवरी, रिटर्न की सुविधा, पसंद ना आए तो वापस कर देना, इतनी सारी सुविधाएं घर बैठे मिल जाए तो सही में हमारा कितना सारा टाइम बच जाता है ना। लेकिन थोड़ी सी लापरवाही आर्थिक नुकसान और साइबर धोखाधड़ी का कारण भी बन सकती है। इसलिए सखियों, कोशिश करें कि ऑनलाइन शॉपिंग हमेशा आधिकारिक तौर पर प्रमाणित वेबसाइट से ही करें, या अज्ञात साइट पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करें। और सखियों, हर ऐप और वेबसाइट का पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग बनाएं। फोन पर ओटीपी आने पर किसी के साथ साझा ना करें जब तक आपको उस पर विश्वास ना हो। पेमेंट करते समय भी पासवर्ड जो आप रखते हैं उसे भी ध्यान से बनाएं। और शॉपिंग के समय जब हम अपनी कार्ड डिटेल डालते हैं ना, या फिर नेट बैंकिंग की डिटेल डालते हैं, तो भविष्य में दोबारा इस्तेमाल करने के लिए हम इसे सेव कर देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमेशा आप मैन्युअली ही अपनी बैंकिंग जानकारी भरें, ये आपके लिए ज़्यादा सुरक्षित है। ऑनलाइन शॉपिंग के बाद बैंक स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शन को नियमित रूप से आप चेक करते रहें। अपने अकाउंट पर लगातार नज़र बनाए रखें ताकि फ्रॉड की संभावना कम से कम हो। सखियों, कई शहरों और मॉल के आसपास पब्लिक वाईफाई फ्री में मिल रहा है, तो ज़्यादा खुश ना हो, सावधान रहे और ऐसे जगहों से पेमेंट करने से बचें। शॉपिंग करना हम महिलाओं की अच्छी आदत है। खूब शॉपिंग कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और हम तो यही चाहते हैं कि आपके साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए थोड़ा सावधान रहें।
3: अरे फैशन की दीवानी ये गुड़िया है जापानी, अरे फैशन

सखियों अब बारी है आज के व्यंजन की। सखियों हमारे भारतीय खान पान में कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाती बल्कि हमारी परंपरा और संस्कृति से भी जुड़ी होती हैं। नारियल उन्हीं में से एक है। गुड़ और नारियल की बर्फी बिना चीनी के बनने वाली एक बेहद स्वादिष्ट और सेहतमंद पारंपरिक मिठाई है। इसके लिए 2 से 4 कप कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल, गुड़ का पाउडर 200 से 250 ग्राम, देसी घी 1 से 2 बड़े चम्मच, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर, कटे हुए मेवे काजू किशमिश बादाम पिस्ता ऊपर से गार्निश करने के लिए। सखियो सबसे पहले ताजे नारियल को कद्दूकस कर लें, फिर एक कढ़ाई में घी गर्म करें, फिर इसमें पिसा हुआ नारियल डालकर धीमी आंच पर 2 से 4 मिनट तक भुनें ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें गुड़ का पाउडर डालकर लगातार चलाते रहें। तब तक चलाते रहें जब तक कि गुड़ पूरी तरह पिघल ना जाए और नारियल के साथ अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। मिश्रण को गाढ़ा होने तक इसे पकाते रहें। अंत में इलायची पाउडर डाल दें। अब एक थाली में घी लगाकर इसे चिकना करें। फिर मिश्रण को इसमें अच्छे से फैलाकर ऊपर से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दें। जब ये ठंडा हो जाए तब मन चाहा आकार देते हुए बर्फी के आकार में काट लें। सखियो ये तो हुआ मीठा। नारियल चावल दक्षिण भारतीय क्षेत्रों का एक प्रमुख और पसंदीदा व्यंजन है जिसे तमिल में थेंगई सडम भी कहते हैं। थेंगई का अर्थ नारियल और सडम का अर्थ चावल होता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले 1 कटोरी बासमती चावल को अच्छे से धोकर 20 से 30 मिनट के लिए भिगो के रख दें। इसके बाद आप चावल से सारा पानी निकाल कर प्रेशर कुकर में चावल जैसे आप बनाती हैं वैसे ही बना लें। फिर कुकर की सीटी निकलने के बाद आप चावल को एक थाली में निकाल कर पूरी तरह से ठंडा होने दें। फिर एक पैन में 2 बड़े चम्मच घी डालकर गर्म होने दें। फिर इसमें आप 1 छोटी चम्मच राई डाल दें। जब राई चटकने लगे तब आप इसमें 1 बड़ा चम्मच धुली हुई चना दाल और उड़द दाल डालकर 1 मिनट तक मिक्स करें। भुनने के बाद इसी में 2 बड़े चम्मच कटे हुए काजू डालें और इसे भी सुनहरा होने तक चलाते रहें। इसके बाद आप 2 सूखी लाल मिर्च, 10 से 12 कड़ी पत्ता, 1 चुटकी हींग डालकर अच्छी तरह से फिर से भुनें। अब इस मिश्रण में 1.5 कप कद्दूकस किया हुआ नारियल डालकर 3 से 4 मिनट तक अच्छे से चलाएं। फिर इसमें ठंडा चावल जो हमने पहले से बनाए रखे थे उसको डालकर और स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छी तरह से मिला लें। जब सभी चीज़ें एक साथ मिक्स हो गई हैं तब आप गैस बंद कर दें। सखियों आप चाहे तो सर्व

0: करते समय इसमें बारीक कटी हरी धनिया, नींबू भी डाल सकती हैं। लीजिए, तैयार है नारियल चावल। सखियों, आने वाले त्यौहार में एक बार जरूर ट्राई करें। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए अपनी सखी नीलम को अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है अंतराल का।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की है। आज आप सुनेंगे भंवर सिंह अहिरवार के गाए कुछ लोकगीत, आरंभ कर रहे हैं इस हर्ष गीत के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे भंवर सिंह अहिरवार के गाए कुछ लोकगीत। लोक संगीत के ये कार्यक्रम की प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 1:45 हुए हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अनुज राठौड़ के गाए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की है।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे अनुज राठौर के गाए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।
1: बड़े अच्छे लगते हैं
2: क्या
1: ये धरती ये नदिया ये रैना
2: और
3: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
4: इस समय आप हैं हमारे साथ।
5: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
6: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
7: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
6: तो सुनते रहिए मालवा की शान
8: आकाशवाणी इंदौर।
7: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
9: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
6: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
7: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
6: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
7: अरे काहे का मजा।
6: क्यों, क्या हुआ?
7: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
6: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
7: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
6: ये हुई ना बात।
10: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
11: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
12: क्या?
11: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
12: वो कैसे?
11: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।
0: सुनिए फिल्म संगीत। मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का ये गीत है। गीता दत्त ने इसे गाया है। ओपी नैयर की धुन है मजरू के बोल।

0: शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा यह गीत लता मंगेशकर ने गाया था। फिल्म थी आम्रपाली। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषित साझा किया, जिसमें निडरता का भाव जगाने और जीवन बचाने के गुणों पर बल दिया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि जो कोई भी लोगों का डर दूर करता है, उसे बहुत आशीर्वाद मिलता है और तीनों लोगों में जीवन बचाने से बड़ा कोई मूल्यवान उपहार नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान पोर्टल लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि अभियान के 4 सप्ताह सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। पोर्टल पर अभियान के तहत किए गए भ्रमण, निरीक्षण, जनसंवाद, उद्यम संवाद और जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों की जानकारी दर्ज की जाएगी। डॉक्टर यादव ने इसके साथ ही सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इस अभियान के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की सेवा, सुशासन और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज शिवपुरी में अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। इस डाकघर को आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। यहां स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और

0: वित्तीय सेवाएं एक ही जगह पर मिलेंगी। इसके बाद श्री सिंधिया ने ककरवाया क्षेत्र में 85 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले देश के 7वें डाक प्रशिक्षण केंद्र का भूमि पूजन भी किया। इस केंद्र में प्रदेश के साथ आसपास के राज्यों के डाक विभाग के कर्मचारियों को भी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।
1: एक नया उदय, जहां भारत सरकार के डाक विभाग की पोस्टल प्रशिक्षण केंद्र जो पूरे देश में केवल 6 हैं, वो 7वां केंद्र 91 करोड़ रुपए की लागत से शिवपुरी में लगने जा रही है। हमारे 4 लाख ग्रामीण डाक सेवक जो घर घर जाते हैं, अगर भारत के 6 लाख गांव में कोई दूत है तो वो दूत मेरा ग्रामीण डाक सेवक।
0: ग्वालियर में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में बलराम जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। किसान कल्याण वर्ष के तहत हो रहे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल और कृषक कवच योजना की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर यादव प्रदेश में नवीन पंजीकृत 200 प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं के कार्यालयों का शुभारंभ भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4 सितम्बर को सीहोर में सीजी पावर की नई पावर ट्रांसफार्मर यूनिट से पहले ट्रांसफार्मर के रोल आउट की शुरुआत करेंगे। करीब 50 एकड़ में बनी यह भारत की एक ही जगह पर स्थित सबसे बड़ी पावर ट्रांसफार्मर विनिर्माण सुविधाओं में से एक है। यहां 220 से 1200 केवी तक के ट्रांसफार्मर बनाए जाएंगे। प्रदेश में इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े स्तर पर मनाई जाएगी। प्रदेश के 81 प्रमुख कृष्ण मंदिरों में विशेष सजावट, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। वहीं मुख्यमंत्री निवास पर 4 सितंबर को 1000 से ज्यादा बच्चों को बालकृष्ण के रूप में तैयार कर कार्यक्रम कराया जाएगा। स्कूलों में मटकी फोड़, बांसुरी, झांकी और चित्रकला जैसी प्रतियोगिताएं होंगी, जबकि गौशालाओं में सफाई, गौपूजन और पशु स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। भोपाल में 7 दिवसीय रासलीला समारोह और आगरमालवा जिले के मुरली मनोहर मंदिर में भी श्रीकृष्ण पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्ट्रांग मानसूनी सिस्टम की वजह से बारिश का दौर जारी है। जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जबकि सतना और चित्रकूट सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने आज 7 जिलों में अति भारी और 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश को देखते हुए सतना में आज और कल स्कूल, कॉलेज तथा आंगनबाड़ियों में अवकाश घोषित किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना जिले में कलेक्टर ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में निर्माण विभागों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में परिवहन विभाग की जांच कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले बस और ऑटो चालकों पर 3 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया। आगरमालवा की ग्राम पंचायत जमुनिया, गाता, बाजना, रामपुर, बुंडवास तथा नलखेड़ा जनपद पंचायत के वार्ड 6 और 11 तथा सुसनेर में उपचुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। और इंदौर जिले के शासकीय लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय में आगामी 10 सितंबर को संभागीय लता मंगेशकर सुगम संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार

0: तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से नशीले पदार्थों का सेवन न करने का आह्वान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने सभी स्नातक विद्यार्थियों को बधाई दी और विद्यार्थियों को पदक तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए। भारत का पांचवां विमान आज राहत और बचाव सामग्री लेकर नेपाल पहुंचा। विमान में 11 सदस्यों का बचाव दल, विशेष उपकरण और 5.5 टन दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 1114 शव बरामद हुए हैं। सबसे अधिक शव दक्षिणी चितवन जिले में बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ प्रभावित 11 जल पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े 983 लापता लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में 7 से 8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं।
2: भारत विकास के उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां से वो अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा कर सकता है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार से लेकर बैंक खातों और अब खेती बाड़ी के क्षेत्र में हो रहे कार्यों से दूसरे देश भी सीख सकते हैं और इसलिए 2047 तक भारत जिस बड़े आकार की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है वो न केवल अपनी वृद्धि दर से संभव होगा बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था और विश्व राजनीति में भारत की जो अहमियत है उससे भी संभव होगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भारत को अगले 15 वर्षों में जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसके लिए ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
3: प्राइम मिनिस्टर वांट्स इंडिया टू गो इन द कमिंग 15 इयर्स।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत विश्व बैंक समूह साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान अवसंरचना क्षेत्र में ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आधारित दृष्टिकोण पर भी विचार किया गया। श्रीमती सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक आर्थिक स्थिति और भारत की बदलती विकास गति पर चर्चा की। वित्त मंत्री सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्दिस दोम्ब्रोस्किस से भी मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग मजबूत करने और आगे की कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें सीमा शुल्क और संबंधित आंकड़ों के आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाना, दवा और कृषि

0: क्षेत्र में नियामकीय सहयोग, व्यापार संपर्क बेहतर करना तथा निवेश और व्यावसायिक संपर्क को बढ़ावा देना शामिल है। विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्री और हवाई मार्गों की स्वतंत्रता, वैध व्यापार तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। श्री मार्गरेटा ने कल पलाऊ के कोरोर में आयोजित 55वें प्रशांत द्वीप समूह फोरम नेताओं के सत्र को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कल से 3 दिन की यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री रादोस्वाफ शियोर्स्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने डाकघर आधुनिकीकरण योजना के तहत तैयार अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं एक ही जगह मिलेंगी। विदेश और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज लद्दाख के करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्घाटन करगिल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे जिले तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर तेज बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। बिहार के विभिन्न जिलों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि नेपाल और पड़ोसी राज्यों के साथ ही प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है।
2: बिहार में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से वाल्मीकि नगर, कोसी, वीरपुर, सोन, इंद्रपुरी बराज से जलाश्रय में बढ़ोतरी से संबंधित जिलों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। भागलपुर, औरंगाबाद, बेगूसराय, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर, पटना, खगड़िया, वैशाली और जहानाबाद के बाद कैमूर जिले में भी बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। जिला प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश और दुर्गावती जलाशय से पानी छोड़े जाने के बाद फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन की ओर से नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर झारखंड में पिछले 3 दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है।
3: मौसम विभाग रांची के अनुसार पिछले 3 दिनों से झारखंड में हो रही भारी बारिश के कारण भैरवी, दामोदर, स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। रांची में लगातार बारिश के कारण काके और गेतलसूद डैम के साथ साथ तेनू घाट और चांडिल डैम से पानी छोड़ा गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस बीच पिछले 3 दिनों की बारिश में राज्य भर में कई पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के कई गांवों का प्रखंड और जिला मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हुआ है। लोहरदगा जिला सबसे अधिक प्रभावित रहा है, जहां कई पुल क्षतिग्रस्त या बह गए हैं, जिससे बड़ी आबादी प्रभावित हुई है।

0: मौसम विभाग ने आज सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू और गढ़वा में रेड अलर्ट, जबकि लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम अगले 36 घंटे में झारखंड के पश्चिमी हिस्सों से होकर आगे बढ़ेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: पंजाब सरकार ने राज्य में धान की पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए डिजिटल तथा मल्टीमीडिया माध्यमों से बहुस्तरीय सूचना और जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता फैलाने की योजना है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पराली प्रबंधन रणनीति पर कल हुई बैठक में ये बात कही। बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स के शुरुआती मैच में चीनी ताइपे के ची यूनजेन को हराया। पुरुष सिंगल्स के एक अन्य मुकाबले में लक्ष्य सेन कनाडा के विक्टर लाई से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। महिला सिंगल्स के पहले दौर के मुकाबले में भारत की तन्वी ने डेनमार्क की अमाली चूस को कड़े मुकाबले में लगातार सेटों से हराया। भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो ने भी थाईलैंड के तोन्नाकोन साहिंग और तोनिचा साहिंग को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह ने लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के रमित टंडन ने कतर के अब्दुल्ला अल तमीमी को हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 516 अंक गिरकर 76,428 पर, जबकि निफ्टी 183 अंक गिरकर 23,873 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपके पत्रों द्वारा भेजी पसंद हम शामिल करते हैं और पहला पत्र शामिल हो रहा है अमनपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दिशा रूही और लबी श्रीवास्तव के, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा के, डबवाली हरियाणा से जेके बकोलिया, श्रीमती सुनीता बकोलिया, संजय अनिल और मीनू बकोलिया की। सुनना पसंद किया है पड़ोसन फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों का गाया। राजेंद्र कृष्ण ने बोल लिखे हैं और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

अगले गीत का अनुरोध छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश की। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर राही, श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता गवाड़कर, अर्जुन गवाड़कर टुकटुक, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाड़कर, सुमित गवाड़कर और कुमारी ध्वनि गवाड़कर परी की। यादव मोहल्ला सनावद मध्यप्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार की। सुनना पसंद किया है जमीन आसमान फिल्म का गीत, लता मंगेशकर का गाया, अनजान ने गीत लिखा है और तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने।

नया जमाना फिल्म का ये गीत था, लता मंगेशकर ने गाया था, आनंद बख्शी का लिखा था और धुन बनाई थी एस डी बर्मन ने। सुनना पसंद किया था। पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी ने। दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू ने। मिलीजुली फरमाइश है अगले गीत के लिए। धामड़ी मनोरा

श्रीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे और प्रज्वल डेरे और अनुत डेरे ने अपनी फरमाइश भेजी है। घंटा घर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया की पसंद है। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, साथ ही संगीता आर्य की पसंद है। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की कंगन फिल्म का गीत, उषा खन्ना और महेंद्र कपूर का गाया हुआ है। अनजान गीतकार और संगीतकार कल्याण जी, आनंद जी।

कार्यक्रम का यह आखिरी गीत हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर की बेरडी से ये अपना पत्र भेजते हैं। छत्तीसगढ़ बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा का, फिर श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा और उनका पूरा परिवार, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज की, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। सुनना पसंद किया है हीरा पन्ना फिल्म का गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ। आनंद बख्शी की कलम से ये निकला गीत, स्वरबद्ध किया आर डी बर्मन ने।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए फिल्म हीरा पन्ना के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषित साझा किया जिसमें निडरता का भाव जगाने और जीवन बचाने के गुणों पर बल दिया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि जो कोई भी लोगों का डर दूर करता है उसे बहुत आशीर्वाद मिलता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल पर अभियान के तहत किए गए भ्रमण, निरीक्षण, जनसंवाद, उद्यम संवाद और जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों की जानकारी दर्ज की जाएगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज शिवपुरी में अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। इस डाकघर को आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। यहां स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं एक ही जगह पर मिलेंगी। ग्वालियर में आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में बलराम जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। किसान कल्याण वर्ष के तहत हो रहे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल और कृषक कवच योजना की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 4 सितंबर को सीहोर में सीजी पावर की नई पावर ट्रांसफार्मर यूनिट से पहले ट्रांसफार्मर के रोल आउट की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े स्तर पर मनाई जाएगी। प्रदेश के 81 प्रमुख कृष्ण मंदिरों में विशेष सजावट, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 जिलों में अति भारी और 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेब पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको सांध्यकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। शाम 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर केंद्र की। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। कार्यक्रम सुर्खियों में रात्रि 8:00 प्रसारित करेंगे। चर्चा का विषय है रात्रि 9:30 पर दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10:00 सुनिएगा नाटक बाबूजी, लेखक विजय दिंडोरकर, प्रस्तुतकर्ता राकेश टोंडियाल। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा विदुषी गंगूबाई हंगल का ख्याल गायन, राग होगा मिया मल्हार। आकाशवाणी भोपाल से शाम 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा में एक्वापोनिक्स मछली के साथ पौध उत्पादन विषय पर डॉक्टर महेंद्र कुमार यादव से की गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। ये थे मुख्य आकर्षण सांध्यकालीन सभा के। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। इस समय दोपहर के 3:01 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारा ये प्रसारण समाप्त होता है। शाम 5:00 हम अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेब पर पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच हमारा प्रसारण डीटीएच पर जारी है।

नमस्कार। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने को है। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत करते हैं यूथ प्रोग्राम युववाणी से।

0: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आज है आपके साथ काजल
1: और श्रद्धा।
0: तो श्रोताओं, आज दिन है बुधवार का और आज के दिन हमारा खास सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं जिसका नाम है एक ही फिल्म से। और इस फिल्म में हम आपको सुनाते हैं एक फिल्म की प्यारी सी कहानी और सुनाते हैं उसी फिल्म से ढेर सारे गीत। तो वो हम आपको बताएंगे अभी कुछ ही देर में कि वो कौन सी फिल्म होने वाली है। पर श्रद्धा, उसके पहले
1: उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम में और क्या खास होने वाला है। तो दोस्तों, आज की जो फिल्म की बात की है काजल ने, वो आज इसलिए खास है क्योंकि आज से, यानी कि जो आज बुधवार है, आज से दो दिन बाद यानी कि परसों के दिन एक बहुत ही खास त्यौहार है जिसका हर बच्चे को खासकर बहुत बेसब्री से इंतजार होता है, वो है कृष्ण जन्माष्टमी। तो ये जो फिल्म है ना, ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है और इसीलिए फिल्म खास है। लेकिन इसके साथ साथ हम और भी ढेर सारी बातचीत करने वाले हैं, जन्माष्टमी के बारे में बातचीत करेंगे, साथ ही आज कुछ और खास है आज के दिन में उसके ऊपर बातचीत करेंगे और आपको इतने प्यारे प्यारे गीत सुनाएंगे कि आप बस सुनते रह जाएं।
0: बिल्कुल सही कहा श्रद्धा। पर उससे पहले जो हमारी कड़ी होती है जिसमें हम हर रोज सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न पूछते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं और हम जल्दी से अपने श्रोताओं को आज के प्रश्न बता देते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है।
1: और दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न है कि इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ था।
0: तो हम आशा करते हैं कि आपने ये प्रश्न नोट कर लिए होंगे और हम इनके उत्तर जो है वो आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे।
1: बिल्कुल। और वैसे काजल, अभी अभी जो हमने इंटरनेट की बात की ना, तो इंटरनेट से ना मुझे ऐसा याद आ रहा है कि अभी कुछ वक्त से ना मैं जो गाने सुन रही हूँ, बड़े क्रेजी से गाने आ रहे हैं आजकल की जनरेशन में इंटरनेट पे,
0: या फिर यूं कहूँ कि चटपटे गाने आ रहे हैं, वो भी पुराने समय
1: जेन जी लैंग्वेज में चटपटे गाने चल रहे हैं।
0: बिल्कुल। और वो गाने भी ऐसे होते हैं कि जो लोग हैं वो थिरकने पे मजबूर हो जा रहे हैं, उन पे रील्स बना रहे हैं और उन्हें देख के हमें भी बहुत मजे आ रहे हैं।
1: बिल्कुल। और वो गाने सुन के ना ही सिर्फ पुरानी जनरेशन ही नहीं जिनके वक्त में वो गाने आए थे, बल्कि आजकल की जो जनरेशन है वो भी उतनी ही खुश, उतनी ही एक्साइटेड और उतनी ही एनर्जेटिक हो जाती है इन गानों को सुन के।
0: बिल्कुल। तो फिर हम देर क्यों कर रहे हैं, हम उनमें से ही कोई एक गाना सुन ही लेते हैं।

0: क्या बात है, तो इतना जोश भरा गाना सुन के मजा ही आ गया। पर श्रद्धा, अब तो सितंबर आ चुका है और सितंबर आते ही त्योहारों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है और माहौल एकदम खूबसूरत हो जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और अब इंतजार है उस रात का जब आधी रात को मंदिरों में घंटियां बजने लगती हैं, झांकियां सजने लगती हैं, कान्हा के लिए पालने झूलने लगते हैं और हर तरफ गूंजता है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने काजल। और पता है 4 सितंबर को मनाई जाने वाली जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है वो पर्व सिर्फ श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव नहीं है बल्कि उनके जीवन के अनगिनत रंगों को याद करने का एक मौका है।
0: बिल्कुल सही कहा। और कृष्ण की कहानी जैसा कि हम सभी जानते हैं वो शुरू होती है मथुरा से, जहाँ एक अत्याचारी राजा था जिनका नाम था कंस। देवकी और वासुदेव के विवाह के बाद आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान ही कंस का अंत करेगी।
1: डर के मारे कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया, लेकिन जब 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जैसे कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। आधी रात को वसुदेव नन्हे कृष्ण को लेकर यमुना पार कर गोकुल पहुंचे, जहां नंद बाबा और यशोदा मैया ने उनका पालन पोषण किया।
0: ये सोचकर और सुनकर ही कितना मजा आ जाता है ना। कितना चमत्कारी लगता है सब कुछ।

0: और उन्होंने कृष्ण को पहुंचा तो दिया। फिर उसके बाद अब शुरू हुआ कान्हा का वो नटखट बचपन, जिसे याद करते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है
1: जैसे अभी तुम्हारे और मेरे चेहरे पर आ रही है।
0: बिल्कुल सही कहा। माखन की मटकी देखते ही आंखों में चमक आ जाती है और गोपियों की वो शिकायतें कि मैया तुम्हारे कान्हा ने फिर से माखन चुरा लिया।
1: लेकिन ये कान्हा सिर्फ माखन ही नहीं चुराते थे, ये लोगों का दिल भी चुराते थे। और जब गोकुल पर संकट आया तो यही नन्हा कृष्ण सबकी ढाल बन गए। चाहे कालिया नाग से यमुना को मुक्त कराना हो या गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुलवासियों को इंद्र की भारी वर्षा से बचाना हो।
0: बिल्कुल। उसके बाद समय बीता और कृष्ण मथुरा पहुंचे। आखिरकार वो दिन आया जब उन्होंने कंस का वध कर मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त कर दिया।
1: लेकिन कृष्ण की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं कृष्ण आगे चलकर द्वारका के राजा बने, सुदामा के सखा बने, द्रौपदी के मित्र बने और महाभारत में अर्जुन के सारथी।
0: कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन अपने ही लोगों का सामने देखकर दुविधा में पड़ गए, तब कृष्ण ने उन्हें कर्म और धर्म का जो ज्ञान दिया, वही आज भी भगवद गीता के रूप में आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है।
1: और यही तो श्री कृष्ण की सबसे खूबसूरत बात है ना काजल।
0: बिल्कुल।
1: वो किसी एक रूप में बंधे हुए नहीं है।
0: कभी वो एक नटखट बालक बन जाते हैं,
1: कभी सच्चे मित्र,
0: कभी संकट में हमारा सहारा
1: और कभी जीवन की उलझनों में राह दिखाने वाला सारथी।
0: तो इस जन्माष्टमी कान्हा का जन्मोत्सव मनाते हुए उनके जीवन से एक बात हम जरूर याद रखेंगे कि मुश्किलें जो हैं वो जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे डरकर रुक जाना बिल्कुल सही नहीं है।
1: और दोस्तों, कभी गोकुल जैसी खुशियां होंगी, कभी कुरुक्षेत्र जैसी दुविधाएं भी होंगी। बस हर परिस्थिति में अपना कर्म, अपना साहस और अपनी मुस्कान बनाए रखिएगा।
0: तो तैयार हो जाइए 4 सितंबर की उस खूबसूरत रात के लिए
1: जब फिर से गूंजेगा नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
2: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

0: दोस्तों अब बारी है आज के स्पेशल सेगमेंट एक ही फिल्म से की। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, परसों यानी कि 4 सितंबर को पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम रहने वाली है। कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारियां हर घर हर मंदिर में शुरू हो चुकी हैं। और इसी मौके पर आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक फिल्म की जिसमें खुद भगवान श्री कृष्ण एक आम इंसान के रूप में धरती पर आते हैं। और इस फिल्म का नाम है ओ माय गॉड। दोस्तों कहानी शुरू होती है कांजीलाल मेहता से, मुंबई के एक छोटे से इलाके में रहने वाला एक इंसान जिसकी उत्तम भगवान डिपार्टमेंटल स्टोर नाम से एक दुकान है।
1: हाँ।

0: पास मुआवजे के लिए जाता है, लेकिन कंपनी साफ मना कर देती है, ये कहकर कि भूकंप एक एक्ट ऑफ गॉड है, यानी कि प्राकृतिक आपदा, और ऐसे नुकसान का कोई मुआवजा नहीं दिया जाता।
1: यहीं से कांजी के अंदर एक जिद पैदा होती है कि अगर भगवान की वजह से नुकसान हुआ है तो हर्जाना भी भगवान को ही भरना होगा, और वो सीधा कोर्ट पहुंचकर भगवान के खिलाफ मुकदमा दायर कर देते हैं।
0: अब जरा इस फिल्म की जड़ों की बात करते हैं। ये कहानी असल में एक गुजराती नाटक कांजी विरुद्ध कांजी से निकली थी, और उस नाटक का आइडिया भी हॉलीवुड फिल्म द मैन हु सूड गॉड से लिया गया था, जिसमें एक वकील अपनी बोट डूबने पर बीमा कंपनी के खिलाफ ऐसा ही केस लड़ता है।
1: निर्देशक उमेश शुक्ला के लिए ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी, क्योंकि धर्म और आस्था जैसे संवेदनशील विषय पर फिल्म बनाना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने इसे कॉमेडी और सटायर के जरिए इतनी खूबसूरती से पेश किया कि फिल्म किसी भी भगवानों को या किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना काफी कुछ कह देती है और एक गहरा सवाल भी खड़ा कर देती है।
0: अब अगर हम वापस कहानी पर आए तो केस दर्ज हो जाता है, लेकिन कोई भी वकील कांजी का केस लड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। सब कहते हैं कि भगवान के खिलाफ केस लड़ना पागलपन है। तभी अचानक एक अजनबी उसकी मदद के लिए आगे आता है, जो खुद को कृष्णा वासुदेव यादव बताता है।
1: तो फिल्म यहाँ से धीरे धीरे और दिलचस्प हो जाती है, और ये साफ होता है कि ये शख्स कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि खुद भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कि मानव का रूप लेकर धरती पर आए हैं, और वो इसलिए आए हैं ताकि धर्म के नाम पर फैले जो पाखंड और झूठे बाबाओं के जो भी चीजें हैं उन्हें उनका पर्दाफाश किया जा सके।
0: और यही तो जन्माष्टमी का असली संदेश भी है ना काजल। कृष्ण हमेशा तब तब धरती पर आते हैं जब जब अधर्म बढ़ जाता है, और इस फिल्म में भी श्री कृष्ण उसी भूमिका में नजर आते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, और इसी वजह से इस फिल्म को जन्माष्टमी के आसपास टीवी पर बार बार दिखाया जाता है।
0: और अब सुनते हैं उस फिल्म का एक बहुत ही मशहूर गाना, जो दही हांडी उत्सव पर फिल्माया गया है, और आज भी हर जन्माष्टमी पर हर गहली मोहल्ले में ये बजाया जाता है।

0: क्या बात है। तो श्रद्धा, ये गाना सुन के मटकी फोड़ने का मन हो गया ना अचानक से।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, मेरे मुंह की बात छीन ली।
0: बिल्कुल। तो चलो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो इस गाने के बाद कहानी में आता है कोर्ट रूम का ड्रामा। कांजी और कृष्णा मिलकर एक एक करके अलग अलग धर्मों के बड़े बड़े धर्म गुरुओं को कोर्ट में समन भेजते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या उनके पास सच में भगवान से बात करने का कोई तरीका और कोई ताकत है।
1: और हर सुनवाई में एक नया धर्म गुरु बेनकाब होता है। कोई पानी को पवित्र बताकर बेचता है, कोई चमत्कार के नाम पर लोगों को ठगता है। फिल्म बड़ी ही चतुराई से दिखाती है कि असली भगवान का इन सब दिखावों से कोई खास लेना देना है नहीं, बल्कि ये सिर्फ लोगों की श्रद्धा का व्यापार है।
0: बिल्कुल। और अब बात करते हैं एक्टिंग की। परेश रावल ने कांजी के किरदार में जान डाल दी। शुरुआत का एक गुस्सैल बेबस दुकानदार और फिर धीरे धीरे एक निडर फाइटर बनता कांजी, ये पूरा सफर उन्होंने बहुत ही सहजता से निभाया और इस रोल के लिए उन्हें खूब तारीफें भी मिली।
1: और अक्षय कुमार ने कृष्णा के किरदार को एक अलग ही अंदाज में पेश किया है। ना कोई भारी भरकम मुकुट, ना पीतांबर, बल्कि जीन शर्ट पहने एक बिल्कुल सामान्य सा मुस्कुराता हुआ शख्स जिसकी बातों में गहराई है। और साथ ही मिथुन चक्रवर्ती ने भी लेंगड़े बाबा का किरदार बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है।
0: बिल्कुल। और पर हाँ, लेकिन ये सफ़र कांजी के लिए आसान नहीं रहता। अगर हम कहानी पर वापस आएँ तो कांजी को भी बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, समाज उनका मजाक उड़ाने लग जाता है, उनकी अपनी पत्नी और बेटा भी उनसे शर्मिंदा महसूस करने लग जाते हैं और धार्मिक संगठन उन्हें धमकियां देना शुरू कर देते हैं।
1: यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आता है जब कांजी की जान को सीधा खतरा हो जाता है और उसे पुलिस सुरक्षा में रहना पड़ता है, लेकिन हर मुश्किल घड़ी में कृष्णा उसका साथ कभी नहीं छोड़ते और उसे याद दिलाते रहते हैं कि सच्चाई की राह कभी आसान नहीं होती।

0: दोस्तों अब कहानी धीरे धीरे आगे पहुंचती है और अपने सबसे बड़े मोड़ पर जाकर रुकती है, कोर्ट की आखिरी और सबसे अहम सुनवाई। यहाँ कांजी अपनी पूरी दलील रखता है कि अगर भगवान वाकई हर जगह मौजूद है तो उन्हें किसी मंदिर, मूर्ति या दान पेटी की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए।
1: और फिर कोर्ट के सामने वो ये भी साबित करते हैं कि जिन धर्म गुरुओं पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं वो असल में डर और अंधविश्वास का फायदा उठाकर अपना कारोबार चला रहे होते हैं। जज उनके इस दलील से सहमत होते हैं और आखिरकार कांजी केस जीत जाते हैं। इंश्योरेंस कंपनी को हर्जाना देना पड़ता है और झूठे बाबा बेनकाब हो जाते हैं।
0: फिल्म की कमाई की बात करें तो सिर्फ 20 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 150 करोड़ रुपए कमाए, यानी बजट का 7 गुना से भी ज्यादा। यह उस साल की सबसे चर्चित और सराही गई फिल्मों में से एक गिनी गई।
1: बिल्कुल, और फिल्म इतनी ज्यादा पसंद की गई कि 2015 में इसे तेलुगु में गोपाल गोपाल के नाम से इसका रीमेक किया गया, जिसमें वेंकटेश और पवन कल्याण नजर आए। और फिर 2023 में इसका सीक्वल भी बना OMG 2 नाम से, जिसमें अक्षय कुमार के साथ पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम भी नजर आए, जो खुद में भी एक काफी बड़ी हिट साबित हुई।
0: फिल्म के आखिरी सीन की बात करें तो वो सच में दिल को छू लेने वाला है,
1: जहाँ कृष्ण कांजी को समझाते हैं कि भगवान को पाने के लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि सच्चे दिल और अच्छे कर्मों की जरूरत होती है। और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी सीख और यही इस फिल्म का सबसे बड़ा संदेश है। और सच कहूँ तो जन्माष्टमी के इस मौके पर यह फिल्म देखना और भी ज़्यादा सार्थक हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से कृष्ण महासभा में अधर्म के खिलाफ खड़े हुए उसी तरीके से इस फिल्म में भी वो पाखंड के खिलाफ खड़े हुए नजर आते हैं।

0: क्या बात है, अभी कृष्णा की बात करते करते हम पूरी तरीके से उनकी भक्ति में डूब गए थे, क्यों श्रद्धा?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने।
0: पर श्रोताओं, हम आपको एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खास दिन के बारे में बताना चाहते हैं, जो कि आज है। और हर साल 2000 सितंबर को, यानी कि आज ही के दिन, दुनिया भर में मनाया जाता है एक बहुत ही खास दिन, जिसका नाम है विश्व नारियल दिवस, यानी कि वर्ल्ड कोकोनट डे।
1: हाँ, और इस दिन की शुरुआत हुई थी 1969 में, जब इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में एशियन पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी यानी कि APCC की स्थापना हुई थी। इस संगठन का मकसद था नारियल की खेती करने वाले देशों की आर्थिक भलाई को बढ़ावा देना।
0: लेकिन इस दिन को आधिकारिक रूप से मानना तब शुरू किया गया जब 2009 में वो इसे मानना शुरू किया गया, जब APCC की 40वीं सालगिरह के मौके पर इसे दुनिया के सामने पेश किया गया।
1: भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देश इस दिन को बड़े उत्साह से मनाते हैं, क्योंकि इन देशों की लाखों करोड़ों लोगों की रोजी रोटी सीधे तौर पर नारियल की खेती से जुड़ी होती है।
0: और भारत की बात करें तो हमारे यहाँ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य नारियल उत्पादन में सबसे आगे हैं। केरल को तो नारियल की खेती का केंद्र ही माना जाता है। यही वजह है कि केरल का एक पुराना नाम भी है, नारियल की धरती, जो है जैसा कुछ रहता है, रखा गया था।
1: बिल्कुल, और सिर्फ आर्थिक ही नहीं, नारियल का हमारी संस्कृति और पूजा पाठ में भी बहुत बड़ा स्थान है। भारत में किसी भी शुभ काम की शुरुआत नारियल फोड़े बिना तो होती ही नहीं है। इसे कल्प वृक्ष यानी इच्छाएं पूरी करने वाला वृक्ष भी कहा जाता है।
0: और अगर हम इसकी बनावट को देखें तो कितनी गहरी बात छुपी है इसमें। नारियल का कठोर बाहरी खोल हमारे अहंकार जैसा है और अंदर की सफेद गिरी हमारे मन जैसी, और उसका पानी हमारे शरीर के सूक्ष्म तत्वों जैसा माना जाता है।
1: कितने खूबसूरत तरीके से तुलना की है तुमने काजल।
0: बिल्कुल
1: और दोस्तों, अगर हम सेहत की बात करें तो नारियल पानी शरीर को तुरंत हाइड्रेट करता है, उसमें भरपूर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। नारियल का तेल त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद माना जाता है, और इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल जैसे गुण भी पाए जाते हैं।
0: और दिलचस्प बात ये भी है कि नारियल असल में मेवा नहीं बल्कि एक ड्रूप, यानी कि गूदेदार फल है, जिसके अंदर एक सख्त खोल में बीज भी होता है। भले ही हम इसे रोजमर्रा की बोलचाल में नारियल यानी कि नट ही कहते हो।
1: वर्ल्ड कोकोनट डे 2026 की थीम भी काफी इंपॉर्टेंट है वैसे काजल। कोकोनट फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी, बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि नारियल के हर हिस्से का पूरा इस्तेमाल हो, बर्बादी कम हो और किसानों से लेकर उद्योग तक सबको इसका फायदा मिले।
0: क्या बात है, ये सोच बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों, आज के दिन हम एक दिन एक ग्लास ताज़ा नारियल का पानी ज़रूर पियेंगे और उन किसानों को भी याद करेंगे जिनकी मेहनत से ये कल्प वृक्ष और इसकी सारी इसके इसके फ्रूट्स और इसका जल जो है वो हम तक पहुंचता है।
2: ए बाबू, ले लो ना नारियल।

0: तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम और हम आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अब जल्दी से हम आपको आज के प्रश्नों के उत्तर बता देते हैं। हमारा पहला प्रश्न था कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो इसका उत्तर है त्वचा।
1: और आज का दूसरा प्रश्न था कि इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ, और इसका उत्तर है 1960 के दशक में। उम्मीद है आपने दोनों प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लिए होंगे और आज का कार्यक्रम भी आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए श्रद्धा
0: और काजल को।
1: नमस्कार।

युवा साथी सुन रहे थे प्रोग्राम युववाणी आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। अभी आपने ये कार्यक्रम सुना मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। और आइए सुनते हैं अब फिल्म संगीत। नदीम श्रवण का संगीत है, समीर के बोल, अलका याग्निक की आवाज, फिल्म साजन।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आज रात 8:15 पर आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर और एंड्रॉइड मोबाइल की एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: सबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, हमारा विशेष धन्यवाद स्वीकार कीजिए, क्योंकि पिछले सप्ताह के प्रसारण में हमने मोबाइल, एआई और परिवार जैसे विषयों पर बात की थी,
2: और आप सबसे निवेदन किया था कि इन विषयों पर कुछ पंक्तियाँ और स्लोगन लिख भेजें। तो सुनते हैं एक स्लोगन
3: जो हमें लिखा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू ने। लिखते हैं
2: 5 अगस्त, विषय मोबाइल पर स्लोगन। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। मोबाइल हमसे है, हम मोबाइल से नहीं। ये हमारा सेवक है, स्वामी नहीं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस शानदार स्लोगन के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: गांव गणेश धाम परसुली, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
3: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती कुमारी और ओम कुमार जी लिखते हैं, ये भी जानिए मैं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी पर आधारित जानकारी सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा।
2: उनके जीवन, संघर्ष और अदम्य देशभक्ति के बारे में जानना बेहद प्रेरणादायक रहा। देश के प्रति उनका समर्पण और राष्ट्र प्रेम वास्तव में सराहनीय है। कार्यक्रम की पूरी टीम को इस सुंदर प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद। राजाजी नगर बेंगलोर से अखिला प्रसाद और एनआर प्रसाद ने मोबाइल विषय पर स्लोगन भेजते हुए लिखा है,
3: डिजिटल तकनीक का उपयोग ज्ञानवर्धन और कार्य को गति देने के लिए करें, नकारात्मक कार्यों के लिए कभी नहीं। मोबाइल को बच्चों का खिलौना न बनाएं।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर।
2: ग्राम मंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे ने शब्द का अर्थ बताते हुए लिखा है, वैमानिकी का अर्थ है विमान उड़ाने से संबंधित विज्ञान।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबकी प्रतिभागिता के लिए। हम हरदम प्रयास करते हैं कि उमंग कार्यक्रम के द्वारा आपको रोचक से रोचक जानकारी दें
2: जी,
3: और मनोरंजक शैक्षिक कार्यक्रम भी सुनाएं। तो अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, थर्मामीटर या ज्वर मापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था?
2: थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। इसे आधुनिक रूप दिया था 1714 में डेनियल फेरनहाइट ने।
3: हमारा अगला प्रश्न था, आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है?
2: आंग का अर्थ होता है राजा, मुखिया या वंशानुगत प्रमुख। ये नागालैंड की कोयांक जनजाति की सर्वोच्च उपाधि है।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
2: डार्क स्काई रिजर्व उस विशेष जगह को कहते हैं जहां कृत्रिम प्रकाश का इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है, ताकि वहां के आकाश को वास्तविकता में देखा जा सके।
3: हमारा अगला प्रश्न था, मौसिनराम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है?
2: मौसिनराम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन चावल और जादोह है।
3: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है?
2: राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके के फलौदी और उसके आसपास के गांवों में गर्मियों के दिनों में तापमान बेहद ऊंचा पहुंच जाता है, लगभग 50 से 52 डिग्री सेल्सियस।
3: श्रोताओं, एक बहुत ही खास निवेदन है आप सब से, ध्यान से सुनिएगा कि मात्र सुविचार ना भेजें। इन दिनों सुविचारों की बाढ़ आ रही है
2: जी।
3: सुविचार भेजना आसान है, लेकिन प्रश्नों के उत्तर देना और कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना जरा कठिन।
2: सुविचार जरूर भेजें, लेकिन कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाइए, वहां आपको कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
3: तो श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे?
3: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है सीइंग विदाउट सीइंग।
2: कक्षा 2 की अंग्रेजी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति सामान्य बच्चों के मन में जागरूकता को बढ़ाता है।
4: Little Long Changla returned from the school. She opened the door quietly. she kept her bag on the table quietly. Her mother looked at her.
5: "Om Shankla, you're very quiet today. Did anything happen in the school?"
6: "Yes, Ava. A new boy came to our school. He sits in our class."
5: "Yes?"
6: "The teacher helped him sit in the front desk. He wears black glasses. He cannot see. He will come every day. How will he do things?"
5: "Finish your biscuits and milk. Then we will play a new game."
6: "Yes, let us play."
4: She tied a scarf over Om Shangla's eyes.
5: "Now, tell me, what do I hold in my hand?"
6: "How can I? My eyes are closed. I can't see."
5: "You can find out. Try it. What do I hold?"
4: Om Shangla touched it.
6: It is something soft. A flower."
5: "Yes. But what flower is it? Smell it."
6: It is a rose."
5: "Good. Now try another thing. What do I hold?"
6: I know. It is the bell. The small bell that gives such a musical sound. I can hear it, Ava."
4: Om Shangla took the bell and shook it herself.
5: "Smart girl. What do I hold now? Do you know?"
4: Om Shangla touched it.
6: "It is a glass."
4: She put one finger slightly into the glass.
6: A glass of water?
5: "Are you sure? It could be milk or juice."
4: Om Shangla tasted it.
6: "Oh, it is not water. It is orange juice."
5: "Good girl. Now, I will remove the scarf. You must tell what is in front of you."
4: She took off the scarf. Om Shangla blinked and looked at her.
6: "It is you, Ava. I see you. That was a wonderful game, Ava."
5: "So, Om Shangla, if a child cannot see, there are other ways of finding out things. But the child may have some difficulties. I hope all of you will be friends with the new boy."
6: "Yes, Ava."
5: "Good girl."
4: Om Shangla calls her mother Ava. What is the word for mother in your mother tongue? Close your eyes. Imagine that when your eyes are closed, how would you identify water, flower, sugar, direction of a clapping sound?
5: Note to the teacher: sensitize children to the challenges faced by the differently abled.
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीइंग विदाउट सीइंग।
7: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा, यार इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
8: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
7: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
9: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है। और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
3: और इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।
2: ये कार्यक्रम प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक व उपन्यासकार ओ हेनरी द्वारा रचित कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण है, जिसमें बताया गया है कि यदि मन में कोई डर या कुंठा बैठ जाए तो उसके परिणाम बहुत नकारात्मक हो सकते हैं। कार्यक्रम में बड़ी मार्मिकता से मानवीय संवेदनाओं को भी स्पर्श किया गया है।
10: साथियों नमस्कार।
11: नमस्कार साथियों,
10: आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ यानी आखिरी पत्ता।
11: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
10: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
11: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थी। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
10: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
12: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
13: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
12: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
13: यस।
11: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
10: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
11: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
14: सू
12: जी,
14: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
12: जी हाँ
14: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
12: जी डॉक्टर साहब।
14: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
12: मैं पूछती हूँ।
10: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
11: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
6: 15, 40,
12: क्या?
10: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना।
6: 13, 12, 11। ओह जॉन्सी, अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
13: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
6: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9। ओह उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू अब वो बहुत कम हो गए हैं।
12: क्या कम हो गए हैं?
6: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
10: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा। बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
12: जॉन्सी उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
6: 6, now it's 6, 5, 4। ओह
12: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी। मेरी तरफ देखो
6: सू, ओनली 4। ओह अब सिर्फ 3 बचे हैं।
12: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
6: 3 पत्तियां।
12: पत्तियां?
6: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
12: हाँ हाँ,
6: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
12: क्या लगता है?
6: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
12: क्या जॉन्सी?
6: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
12: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
6: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
12: हाँ
6: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
12: ओ जॉन्सी।
10: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
13: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
10: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
13: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफल

0: ज़ू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
1: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
2: टू, ओ, अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
0: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से ज़ू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
3: जोंसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
0: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
1: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
2: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
0: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
1: जैसे ही सुबह हुई जॉन्सी ने ज़ू से कहा,
2: ज़ू, मेरी दोस्त।
4: हाँ जॉन्सी।
2: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की ज़ू।
0: ज़ू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते ज़ू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने ज़ू को बुलाया और कहने लगी,
2: ज़ू।
4: हाँ जॉन्सी।
2: ज़ू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
4: हाँ बिल्कुल,
2: अब मैं नहीं मरूंगी ज़ू।
4: बिल्कुल जॉन्सी।
2: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
4: पत्ता?
2: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
4: हाँ, हाँ, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
1: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
3: कुछ अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाए।

0: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
1: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
2: बेहतर।
1: ये लो, कॉफी पियो।
2: थैंक यू।
1: जॉन्सी, एक बुरी खबर भी है।
2: क्या हुआ?
1: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
2: कौन बेरमैन? वही बुरे कलाकार?
1: हाँ।
2: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
1: हाँ, वही।
2: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
1: हाँ, वही मिस्टर बेरमैन।
2: ओ गॉड,
1: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
2: क्या?
1: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
2: क्यों नहीं गिरा?
1: हाँ,
2: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
3: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
1: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
2: पेंटिंग?
1: हाँ।
2: कैसी पेंटिंग?
1: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
2: ओह, तो वो पेंटिंग है?
1: हाँ।
2: असली पत्ता नहीं है?
1: नहीं।
2: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
1: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना, मास्टरपीस?
2: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
1: हाँ जॉन्सी,
2: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
1: हाँ, उन्होंने बना दिया।
2: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
1: हाँ,
2: मास्टरपीस।
1: हाँ,
2: मास्टरपीस। वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
0: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
3: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हो।
4: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता। आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
5: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु,

0: चेतना के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
1: उमंग ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर।

हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अनिता उपाध्याय की स्वर लहरिया। आइए सुनते हैं ये पहली रचना जो लिखी है मीराबाई ने, स्वर अनिता उपाध्याय का है।

सुगम संगीत श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अनिता उपाध्याय की स्वर लहरियां। अगली रचना लिखी है छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत ने, आवाज अनिता उपाध्याय की। और इस रचना के बाद जो रचना आप सुनेंगे वो लिखी है कवि नीरज ने।

सुगम संगीत में अभी आपने सुना अनिता उपाध्याय की स्वर लहरियां। सुगम संगीत का प्रसारण हमने आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप तक पहुंचाया मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 647 किलोहर्ट्ज़ पर। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं लोक संगीत। लोक संगीत में आज हम सुनेंगे शोभाराम और साथियों के स्वर में यह राजस्थानी लोकगीत। आइए सुनें।

पास पास भज कष्ट कनाई पास पास भजो कृष्ण कनाई।

शोभा राम और साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोकगीत। लोक संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से अभी आपने सुना मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हम आपको जानकारी दे दें कि इस गुरुवार यानी 3 सितंबर 2026 की सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय रहेगा किडनी रोग और मूत्र रोग से संबंधित बीमारियां और उनका उपचार। श्रोताओं, आप इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर विपिन शर्मा न्यूरोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ के साथ साथ विशेष रूप से

विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं और उसके अलावा न्यूज ऑन AIR एंड्रॉयड ऐप पर भी। तो फोन करना ना भूलिएगा। और इसी के साथ फिलहाल ये सूचना समाप्त करते हैं और थोड़ी देर में हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र हिंदी समाचारों के लिए।

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। सम्मेलन में केन्द्र और राज्यों की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा दायित्व को बढ़ावा देना और विचार विमर्श से सुशासन और सेवा वितरण में सुधार लाना है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई। सीईओ ट्रस्ट के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख और राम मंदिर परिसर से संबंधित मुख्य परिचालन जिम्मेदारियों को संभालेंगे। ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की जानकारी दी है। इनमें अयोध्या के वरिष्ठ अधिवक्ता मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भगचंद का और शिकोहाबाद की सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य निर्मला यादव शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉ सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों को इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिनों के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के महासागर दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में सेशल्स एक महत्वपूर्ण साझेदार है। नई दिल्ली में सेशल्स संसद के अध्यक्ष अजारेल अर्नेस्टा के साथ बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि भारत और सेशल्स विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत से राहत सामग्री लेकर 5वां विमान दल आज नेपाल पहुंचा। इसमें 11 सदस्यीय बचाव दल, विशेष उपकरण और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेट कार्ड के आधार पर किए जा रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा। आपके इशारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
0: सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा की है। बलजीत कौर और स्काल्जेंग रिगजिन को भू साहसिक अभियानों, रिमो साह को जल साहसिक अभियान और शिवप्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। किदाम्बी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे के ची यू जेन को और तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। बंबई शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 374 अंक फिसलकर 76,570 पर बंद हुआ। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारे आज और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आज शाम 7:20 पर अनुराधा शर्मा लेकर आएंगी गांव की चौपाल ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम के अंतर्गत। सुनेंगे आप प्रमुख आकर्षणों में सुनीता पंडित के द्वारा चर्चा भेंटवार्ता होगी प्रगतिशील कृषक अंतिम पटेल से खरीफ फसलों पर समसामयिक चर्चा और कुछ लोकगीत। दिल ने फिर याद किया इस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 8:15 पर। चित्रगीत कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे 9:15 पर और 10:00 आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से सुनना ना भूलिए नाटक कहानी अतीत का स्वप्न नगर। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे पंडित कुमार गंधर्व का गाया राग बहार।

इसी तरह श्रोताओं कल की सभाओं का आगाज करेंगे सुबह 6:05 पर भक्ति संगीत के प्रातःकालीन आयोजन वंदना से। चिंतन, वैश्विक गर्मी में बढ़ोतरी, आलेख होगा दीपमाला पाठक का। प्रसारण समय सुबह 6:30 पर। खेती की बातें होगी बिंदु भाटे से, विषय होगा आकाशीय बिजली और समय होगा सुबह 6:35। सुबह 6:40 पर सुनेंगे आप श्री रामचरित मानस गान के प्रसंग।

साहित्य की कार्यक्रम में लेकर हाजिर होंगे। सुबह 7:20 पर सुनेंगे आप लघु कथा बूंद, सुनहरे पल, सदाबहार फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 7:35 पर। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे सुबह 8:30 पर। प्रायोजित संचालक स्वराज संस्थान, स्वराज संचालनालय भोपाल रहेंगे। सुबह 9:00 आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से सुनेंगे आप लोक संगीत में संजय महाजन और साथियों को, और सुबह 9:15 पर सुगम संगीत में अंकित पारोलकर को। कार्यक्रम मनभावन लेकर हाजिर होंगे कल सुबह 10:05 पर। फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुबह 11:00। दिन में 1:00 लेकर हाजिर होंगे महिला कार्यक्रम। चर्चाओं के दौर में संयुक्त कार्य राष्ट्र कार्यवाही दशक पर आधारित कुछ चर्चाएं होंगी। योजनाओं के अंतर्गत जानेंगे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, और भेंटवार्ताओं के क्रम में कुछ और भी बातें होंगी। साथ ही बातें होंगी रूप लावण्य सेगमेंट में चेहरे के अनुरूप हेयर स्टाइल कैसी हो। फैमिली फिटनेस के बारे में जानेंगे कि कैसे करें पूरे हफ्ते का मेन्यू सेट, और आपकी सुरक्षा आपके हाथ सेगमेंट में जानेंगे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते समय सावधानियां क्या बरतें। तो श्रोताओं, ये थी हमारे आज और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां, और अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुनेंगे आप प्रादेशिक समाचार।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के 7वें पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर का भूमि पूजन किया। शिवपुर में बलराम कृषि महोत्सव को मुख्यमंत्री ने वर्चुअली संबोधित किया। मंडी विश्राम गृह के लिए 60 लाख मंजूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर प्रदेश में चलेगा सेवा संकल्प अभियान। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक होंगे 13 बड़े कार्यक्रम। और प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश का कहर, चित्रकूट और सतना सबसे ज्यादा प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज शिवपुरी अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण और देश के 7वें पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि इस केंद्र से प्रदेश और आसपास के राज्यों के डाक कर्मचारियों को आधुनिक तकनीकी और नई पीढ़ी के कौशल का प्रशिक्षण मिलेगा। श्री सिंधिया ने कहा कि अब प्रदेश के डाक कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए करीब 600 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि देश में पहले से ही 6 पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर संचालित हैं। शिवपुरी का नया केंद्र डाक सेवाओं को आधुनिक और डिजिटल बनाने के साथ कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ग्वालियर के मेला मैदान में प्रदेश स्तरीय बलराम कृषि महोत्सव एवं किसान समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। किसान कल्याण वर्ष के तहत मुख्यमंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड, 0% ब्याज योजना के सरलीकरण और कृषक कवच योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि सरकार युवाओं और किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है।
1: बदलते दौर में ये ग्वालियर, भिंड, मुरैना, मालवा, महाकौशल, विंध्य, पूरा प्रदेश बदल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब आर्थिक समृद्धि के लिए पशुपालन, मछली पालन, कुक्कुट पालन, जो आपको करना वो योजना तो मिली रही है, लेकिन अब उद्योग धंधे के लिए भी, युवाओं को काम दिलाने के लिए भी, राज्य की समृद्धि के लिए भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है।
0: वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अन्नदाताओं को आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं।
2: जिस भगवान बलराम के हाथ में हल था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसी अन्नदाता के हाथ में आज ड्रोन पहुंच गया है, आज सेंसर पहुंच गया है, आज डिजिटल तकनीक पहुंच गई है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अन्नदाताओं को आधुनिक युग में विश्व के सबसे आधुनिक किसान बनाने का संकल्प लिया है।
0: वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने श्योपुर में बलराम कृषि महोत्सव और किसान मेले को वर्चुअल रूप से भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को लगातार बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रही है और अब किसानों को सिंचाई के लिए दिन में भी बिजली की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए कृषि उपज मंडी में नया विश्राम गृह बनाने के लिए 60 लाख रूपये की घोषणा भी की। वहीं राजगढ़ के ग्राम पांदा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में राज्य मंत्री गौतम टेटवाल शामिल हुए और अशोकनगर के कृषि विज्ञान केंद्र में कलेक्टर साकेत मालवी की अध्यक्षता में आधुनिक खेती व प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज मंत्रालय में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल पर अब जिलों में अभियान के तहत हो रही गतिविधियों और उपलब्धियों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। अभियान के पहले महीने में 5,64,000 से अधिक सीएम हेल्पलाइन शिकायतों और 8,06,000 से अधिक लोक सेवा गारंटी आवेदनों का निराकरण किया गया है। जिलों को हर सप्ताह अपने काम की जानकारी अगले सोमवार तक पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। संभागायुक्त और संबंधित विभाग पोर्टल के माध्यम से जिलों की गतिविधियों की नियमित निगरानी करेंगे।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी

0: प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 4 सितंबर को सीहोर में सीजी पावर की नई ट्रांसफार्मर यूनिट से पहले ट्रांसफार्मर के रोल आउट की शुरुआत करेंगे। करीब 50 एकड़ में बनी यह इकाई देश की बड़ी पावर ट्रांसफार्मर निर्माण सुविधाओं में शामिल है। यहां 200 केवी से 1200 केवी तक के बड़े ट्रांसफार्मर बनाए जाएंगे, जिनका उपयोग बिजली, रेलवे, डेटा सेंटर और सोलर सहित रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं में किया जाएगा। इस इकाई से 2000 से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है। यहां के ट्रांसफार्मर देश के साथ विदेशों में भी भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जाए। अभियान के दौरान प्रदेश में 13 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में जनसंवाद और जन कल्याण गतिविधियों के साथ विकास पुस्तिकाएं लोगों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। 17 सितंबर को उज्जैन के महाकाल महालोक में बड़ी संख्या में दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। वहीं प्रदेश में जन्माष्टमी के अवसर पर 4 सितंबर को राज्य स्तरीय श्रीकृष्ण पर्व का आयोजन किया जाएगा। घर घर गोकुल घर घर गोपाल की संकल्पना के साथ प्रदेश के सभी 55 जिलों में 111 स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने बताया कि प्रदेश के 7,500 से अधिक श्रीकृष्ण मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जाएगा और 1500 से अधिक कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। मुख्यमंत्री निवास पर भी विशेष आयोजन होगा, जिसमें राधा कृष्ण की वेशभूषा में 101 से अधिक बच्चे शामिल होंगे। प्रदेश में अब चीनी के स्टॉक को लेकर नई सीमा तय की गई है। कोई भी डीलर 4000 क्विंटल से ज्यादा चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा और इसे 30 दिन से ज्यादा समय तक भंडारित भी नहीं किया जा सकेगा। सभी डीलरों को केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपने चीनी स्टॉक की जानकारी नियमित रूप से अपडेट करनी होगी। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि इस संबंध में सभी कलेक्टरों को जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं थोक उपभोक्ता 15 दिन से ज्यादा का चीनी स्टॉक नहीं रख सकेंगे, जिसमें हलवाई, मिठाई विक्रेता और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे उपभोक्ता भी शामिल हैं। स्वयं के जुलाई 2026 के सेमेस्टर के गैर एनपीटेल पाठ्यक्रमों में पंजीयन की तारीख को बढ़ाकर अब 15 सितंबर कर दिया गया है। पहले पंजीयन की तारीख 31 अगस्त थी। अब विद्यार्थियों, शोधार्थियों और शिक्षकों को ऑनलाइन कोर्स चुनने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। पोर्टल पर 1700 से ज्यादा पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जिनमें AI, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे विषय शामिल हैं। वहीं इंदौर के कमला नेहरू प्राणी उद्यान प्राणी संग्रहालय में शेरनी सुंदरी ने करीब 3 दिन पहले 2 शावकों को जन्म दिया है। सुंदरी पिछले करीब 1 सप्ताह से गुफा में रह रही थी, जिससे जू प्रबंधन को उनके प्रसव की उम्मीद थी। इससे पहले करीब 8 महीने पूर्व शेरनी मेघा ने भी 3 शावकों को जन्म दिया था। अब नए शावकों के जन्म के बाद जू में शेरों की संख्या 14 हो गई है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्ट्रांग मानसूनी सिस्टम की वजह से बारिश का दौर जारी है। जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जबकि सतना और चित्रकूट सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और रामघाट की करीब 400 दुकानें और 20 से 25 होटल पानी में डूब गए हैं। मौसम विभाग ने आज 7 जिलों में अति भारी और 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश को देखते हुए सतना में कल स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ियों में छुट्टी घोषित की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में मूसलाधार बारिश के चलते बाणसागर बांध के 6 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं गुरुवार को जिले के बुढ़ार क्षेत्र में जनविश्वास शिविर का आयोजन किया जाएगा। उज्जैन के कालिदास कन्या महाविद्यालय में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया। झाबुआ और अनूपपुर जिलों में पंचायत व निकाय उप निर्वाचन 2026 का कार्यक्रम जारी होते ही आदर्श आचरण संहिता लागू कर दी गई है। आगरमालवा जिले के निवासियों से हरिद्वार और ऋषिकेश की निःशुल्क तीर्थयात्रा के लिए 9 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। खंडवा जिले के ग्राम चम्माटी में HIV एड्स सघन जागरूकता अभियान के तहत ग्रामीणों को जांच और बचाव की जानकारी दी गई। यह अभियान 12 सितंबर तक चलेगा। देवास जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ग्वालियर में आयोजित बलराम जयंती महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा पुरस्कृत किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के 7वें पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर का भूमि पूजन किया। श्योपुर में बलराम कृषि महोत्सव को मुख्यमंत्री ने वर्चुअली संबोधित किया। मंडी विश्राम गृह के लिए 60 लाख रुपए मंजूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर प्रदेश में चलेगा सेवा संकल्प अभियान। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक होंगे 13 बड़े कार्यक्रम और प्रदेश के

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुन्न वाली हमारी सबै बहिन नख न सबै भाइ नख भी अनुराधा की राम राम। भाई बहन नी देखो अपना बच्चा न कि स्कूल का नया सत्र शुरू हुई गज, उनकी पढ़ाई भी अच्छा तरीका से चली रही ना। फिर बात आवाज जमा कि भाई बच्चा न की फीस भरनूज, तो हमारा बहुत सारा भाई बहन सोचने लगी जाए कि भाई लड़की न का क्यों पढ़ाऊँ, क्यों इतना पैसा देनूँ, न इतना पैसा देना न का ही करांगा, फिर बच्ची न तो दूसरा घर चले जाएगा। पर बच्ची न को पढ़ाऊँ बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी बालिका न की जी पढ़ाई है वो एक घर का रोशन नहीं करती है, वो दुई कुल न खतारी देज न। ये बात को ध्यान रखी रहीज अपनी सरकार लाडली लक्ष्मी योजना। ये योजना असीज एक योजना है महिला बाल विकास विभाग की योजना, जेको मतलब ई है, जेको उद्देश्य ई है कि बालिका का जन्म का प्रति हमारा भाई बहन में सकारात्मक सोच आव, ये सोच विकसित होनी चाहिए कि भाई बालिका को जन्म भी अपना लेना वो तो शुभ है। बालिका की शिक्षा का प्रोत्साहित करनू ये भी इन्हीं योजना को उद्देश्य है। बहुत सारी बच्ची ना ऐसी रह के जी फीस की कमी का कारण या पैसा ना की कमी का कारण बीच में स्कूल छोड़ी दे, तो ये जी लाडली लक्ष्मी योजना है एको एक उद्देश्य ये भी है कि हमारी बच्ची ना जी है छोटी छोटी वो बीच में अपनी पढ़ाई छोड़नी, उनको स्कूल पूरा होना चाहिए। न एक साथ बाल विवाह का हतोत्साहित करनू ये भी इन्हीं योजना को एक उद्देश्य है। न सबसे बड़ो काम कि भाई बालिका न का भविष्य में उनका आत्मनिर्भर बनावना का लेना प्रोत्साहित करनू, अच्छी पढ़ाई लिखाई करा ना आगे जाए ना अपना पैर न पकड़ी हुई जाए। एक लेना अपनी सरकार का ही करी रही कि बेटी को जमा जन्म हो जो का साथ ज 5 साल तक ओका नाम सी 6,000 रुपया का राष्ट्रीय बचत पत्र सरकार का द्वारा जमा होनू शुरू हुई जाए। न एक बाद अलग अलग चरण नम जो शैक्षणिक चरण आवाज नहीं बच्चा न की पढ़ाई न का ओका में अलग अलग तरीका का पैसा उनका मिलने लगी जाए। कक्षा छठी में जब बच्ची प्रवेश करेगा तो ओका 2,000 रुपया मिली जाएगा, कक्षा नवी में प्रवेश करना पर 4,000 रुपया, 11वीं में जब अपनी बेटी जाएगा तो ओका 6,000 रुपया मिलेगा, न 12वीं की पढ़ाई में 6,000 रुपया ओका मिलेगा। एक बाद अपनी बेटी कहीं स्नातक की पढ़ाई करे या ओका मन हो कि भाई ओको व्यावसायिक कहीं पाठ्यक्रम पूरा करनू तो ओका लेना भी ओका 25,000 रुपया दो अलग अलग समान किस्त में मिलेगा। अब अपनी समझा कि कुल मिले ना 1,43,000 रुपया तक की आर्थिक सहायता हमारी छोटी छोटी बच्ची न खा जिनका की पढ़ाई का में समस्या आई रही उनका मिलेगा। न जवा तक उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाए जवा तक पूरा ओको खर्चो जी छे सरकार का पास छे। एका अतिरिक्त जी भी योजना की जी निर्धारित शर्त छे वो हमारी बच्ची ना या उनका माता पिता जी पूरी कर लेगा तो खा पूरी राशि को मिली जाएगा, उनको प्रावधान छे। पात्रता कहाँ की बच्ची का होएगा भाई, ये सहायता जी अलग अलग चरण नम मिली रही नी। एका लेना सबसे पहला पात्रता ये होनी चाहिए कि अपनी जी बालिका छे वो मध्य प्रदेश की निवासी होनी चाहिए। बालिका को स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीयन होनू आवश्यक छे। बालिका का माता पिता जी छे वो आयकर दाता नहीं होए, मतलब ऐसी स्थिति में कि भाई इतना वो कमाई राज कि वो आयकर दे सकज तो फिर अपनी बेटी की पढ़ाई कर सकज। पर यदि ऐसी स्थिति में छे कि उनकी आय इतनी नहीं है कि वो आयकर का जी सीमा छे उनका नीचे छे तो उनका माता पिता उनकी बेटी का भी ये योजना को लाभ मिला सकज। आवेदन करने को तरीकों का ही छे, योजना का लेना आवेदन करना पड़ेगा, उसका लेना आपका आंगनबाड़ी केंद्र जानू पड़ेगा या कोई भी लोक सेवा केंद्र पर जाइन न भी आप लाडली लक्ष्मी योजना का लेना आवेदन कर सकोज। लाडली लक्ष्मी योजना का जी ऑनलाइन पोर्टल छे ओका ऊपर भी जाइन ना आप ऑनलाइन पोर्टल का माध्यम से भी

इन्हें योजना का लेना आवेदन करी सको। तो आपनी लाडली बेटी का इन योजना को लाभ देवाड़ो ओखा मिला एका लेना ओखा नाम से आवेदन करी दियो। अपनी लाडली की पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, ओको भविष्य उज्जवल होनी चाहिए। इन पूरी यात्रा में आपको ही सहयोग की ओका नाम से आवेदन करोगा आप। तो ये तो थी आज की अपनी बात लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में। अब आप उन कार्यक्रम में सुनागा एक लोकगीत। ये लोकगीत छे गणेश देवता को गाई रही प्रीति भार्गव उनका साथी।

0: अभी अपन सुनी रहा था प्रीति भार्गव ने उनकी मंडली को गायो ये गणेश वंदना। कार्यक्रम में आवा सुनागा एक भेट वार्ता। भेट वार्ता छे प्रगतिशील कृषक अंतिम पटेल सी न उनका सी बातचीत करी रही अपनी बहन सुनीता पंडित। विषय छे खरीफ फसल में समसामयिक कार्य। जानकारी प्रगतिशील कृषक देगा अपन नखा अंतिम पटेल जी। तो सुना
1: किसान भाई बहनों होनी आज अपनी साथ में छे भाई अंतिम पटेल न आप मोटका माफी जिला खंडवा से अपना बीच में छे और आप अपनी खेती का अनुभव हमारे से साझा करोगे। लेकिन सबसे पहले चौपाल पर करा स्वागत न आपका कमा राम राम।
2: आपको भी मेरा राम राम।
1: खेती किसानी की बात करा तो समस्या न भी घनी आवाज
2: जी बिल्कुल
1: न आवाज तो को निदान भी करना पड़े
2: जी।
1: अभी की फसल की अगर हम बात कर ले तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा की खेत में तमने काई चौपेलो छे।
2: अभी फिलहाल की स्थिति में मिर्च और कपास की फसलें लगी हुई है और साथ ही अरहर भी लगी हुई है और सोयाबीन भी थोड़ी मात्रा में लगाई है क्योंकि इस बार थोड़ा पानी का जो मामला है थोड़ा डाउनफॉल है तो आज सोच रहे हैं कि आगे अच्छी बारिश हो जाए तो और स्थिति और मजबूत हो जाए। तो अभी तो दो जो मुख्य फसलें हैं यही है।
1: अच्छा कितना कितना नंबर न कसो कसो चौपेलो छे।
2: जैसे कपास की जो हमारे यहाँ कपास की जो वेराइटियां होती है वो उनकी जो कतार से कतार की जो दूरी होती है वो जमीन के हिसाब से ली जाती है। जैसे मेरे यहाँ मोटी जमीन है तो मैंने 4.5 फीट क्योंकि उसमें ट्रैक्टर भी चल सकता है छोटा मिनी ट्रैक्टर जो होता है वो भी चल सकता है। कोई बेलों से यदि चलाता है तो बेल भी 3.5 फीट के लगभग चल सकता है और पौध से पौध की दूरी अपने हिसाब से ले सकते हैं। हमें एक एक फीट पे ले सकते हैं या 1.5 फीट पे ले सकते हैं 2 फीट पे ले सकते हैं जैसी जमीन उस तरीके से चौपाई। और मिर्ची में भी सेम ये ऐसा ही होता है। मिर्ची की फसल में भी ऐसा ही होता है और सोयाबीन में सीडिल के द्वारा बोनी की जाती है तो सीडिल में भी अलग अलग तरीकों से बोनी की जाती है। मेन डाली पद्धति है कोई जो हमारे दोरिया होता है जिसको बोलते हैं निमाड़ी भाषा में जैसे बेत पद्धति बोलते हैं तो इस तरीके से भी बोते हैं। तो 8x8 मतलब कतार से कतार की दूरी 8 इंच के लगभग रखते हैं। कोई कम भी रखते हैं कोई बड़ा के भी रखते हैं तो इस प्रकार से रखते हैं जिसमें डोरा भी चल सके तो इस प्रकार से रखते हैं और 6 से 7-8 सेंटीमीटर के लगभग 20 से 20 की दूरी रखते हैं।
1: बहुत अच्छी है कि आपको पूरा मुगम पतो छे माटी को परीक्षण करा रहे हो माटी की स्थिति देखी उसका हिसाब से अपनी वावनी कराई
2: जी बिल्कुल।
1: तुमने एक बात बीच में गई कि ट्रैक्टर से हमने वावनी करा रही उन हिसाब से अपनी वावनी रखी
2: हाँ।
1: तो कई तुम तुम्हारी खेती करो जो कम कृषि उपकरण को कितना उपयोग करो कसो उपयोग करो।
2: देखिए ये जो दौर है ये आधुनिक युग है और अब कृषक क्या है कि नवाचार की ओर अग्रसर हो रहा है नए तकनीकों की ओर अग्रसर हो रहा है। तो जो ट्रैक्टर से जो काम होता है जैसे पहले बैलों से होता था तो 1 दिन का काम 3 दिन 4 दिन तक चलता था अब दिन का काम घंटों पे आ गया और घंटों का काम मिनटों पे आ गया। यह है यंत्र जो कृषि यंत्र है इनके कारण क्या है कि किसान अब नए युवा जो कृषि कर रहे हैं वो एडवांस हो चुके हैं और एडवांस टेक्निक के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे मेरे पास ट्रैक्टर है तो मैं मजदूर का रास्ता नहीं देखता कि मजदूर आएगा फिर जाएगा फिर काम करेगा। अपने अपने हिसाब से अपन को उपकरण लेना है ट्रैक्टर के साथ और उससे काम करना
1: तो
2: है।
1: बावनी का अलावा
2: हाँ।
1: आप किना तरीका से और अपनों कृषि यंत्र को उपयोग करो।
2: जैसे कृषि यंत्र का तो ट्रैक्टर से चले जितने भी उपकरण है ये तो सभी खेती में करते हैं जैसे बेत बनाना और डोरे खींचना उसके बाद हलनी करना जुताई करना फसलों के बीच में चारा तो कुलपनी करना ये सब काम ट्रैक्टर से हो जाते हैं।
1: अच्छा।
2: तो कम समय में और अच्छे से हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात की तुमने। बीच में पानी की खेच की बात करी थी
2: जी
1: कि कभी कभी खेच ज्यादा हो जाए पानी की कभी कभी पानी ज्यादा पड़ी जाए।
2: हाँ।
1: अभी तो भगवान की दया है कि बराबर छे पानी अपन को जरूरत लगत तो आई गए इतनी बार तो पर कभी असो हो जाए तो कोई पानी को सोई सा धरे लो छे
2: जी। बिल्कुल मैं अपने सभी कृषकों को यही कहना चाहूंगा अभी हमारे क्षेत्र में तो ठीक है सामान्य बारिश है पर कुछ क्षेत्रों में बारिश बहुत नीचे की ओर है कि जैसे हमारे पास क्या है मां नर्मदा सिंचाई व्यवस्था है और कुएं हैं ट्यूबवेल है पर इसके बीच भी हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण चीज है टपक सिंचाई। घंटों का काम मिनटों में को मतलब कम समय में हमारी सिंचाई हो जाती है। हमको आज यदि पानी देना है तो हम आज ही उसको पानी दे सकते हैं और थोड़े से मतलब ऐसा लग रहा है कि बारिश 2-3 रोज लेट होगी तो हम उसको चलाकर फसल को उस स्थिति तक पहुंचा सकते हैं जब तक वो पानी जब तक ना आ जाए तब तक वो जीवित रहे और हष्ट पुष्ट और अच्छा रहे।
1: अभी हाल फिलहाल

0: મતલબ ન આપણા મીડી બીરો
1: જી
0: પહેલી છે
1: જી
0: તો મીડી કી કઈ સ્થિતિ છે અચ્છી મજે કી છે
1: हाँ,
0: ऐसा कीड़ा कुड़कुट वायरस के ऐसे
1: अभी
0: कोई परेशानी नहीं?
1: निमाड़ क्षेत्र में मतलब फसलों की जो स्थिति है बहुत अच्छी है, क्योंकि पानी व्यवस्थित गिरा है और सामान्य बारिश अभी तक दर्ज की गई है, तो फसलें अभी तक तो बहुत अच्छी है। पर इसके बाद आने वाला समय क्या होता है वो तय करेगा कि फसलों का उत्पादन क्या रहता है और किस प्रकार से फसलें हमारे घर आती है, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: गिनती तब की जाती है जब उत्पादन हमारे घर पे आए और घर से मंडी तक पहुंच जाए,
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही
1: हम
0: है।
1: उसका ही सही तरीके से चयन करेंगे कि वही सही तरीका है और वही आकलन सही है।
0: कीड़ा कुड़कुट नहीं लगा
1: हाँ,
0: इकालन भी कई व्यवस्था करे लीजिए।
1: सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सतत निगरानी, जैसे मैं युवा कृषक हूं, खेती मांगती है टाइमिंग, समय। खेती को आप जितना समय दोगे, जितना जमीन से जुड़े रहोगे, उतना आपको उसका फायदा मिलेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। आपको पहले तो कीटों को पहचानना है कि कौन सा कीट हमारे खेतों में आया है और आ रहा है। उसके लिए बहुत सारी तकनीकें हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, उनको पहचानने के लिए, जानने के लिए बहुत सारे ऐप हैं मोबाइल के जरिए। हम पहचान सकते हैं कौन सा कीट, यदि हमें नहीं समझ में आ रहा है कृषि वैज्ञानिकों से सलाह ले सकते हैं। तो कीटों का पहले तो चयन करें कि ये कौन सा कीट है और कीट के अनुरूप दवाई का इस्तेमाल करें। बहुत सारे कृषक क्या करते हैं कि बहुत सारी दवाइयाँ मिलाते हैं और स्प्रे करते हैं और फिर घोल की ऐसी की तैसी कर देते हैं, और वो दवाई भी मतलब खर्चे भी बढ़ जाता है और उधर उसका फायदा भी नहीं मिलता। तो मैं तो किसानों को यही कहना चाहूंगा, कीट को पहचानो, जो कीट है उसके हिसाब से ही दवाई डाली जाए, और बहुत ज्यादा जो अनगढ़ दवाइयां होती है उनको ना मिलाए, और एक ही दवाई से हो सके तो यदि कीट प्रबंधन हो रहा है तो उसी से कीट प्रबंधन सही तरीके से करिएगा।
0: अच्छा, यह बात तो आपने बताई रासायनिक दवाई ने की,
1: हाँ
0: कई जैविक दवाई ने को उपयोग आप करो
1: जी,
0: जनरल किना
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तरीका से करो?
1: मैं आपको बता दूं कि जैविक जो टैक्स फ्री और कॉस्ट फ्री दोनों होती है, घर की रसोई से ही बनने वाली जो चीजें होती है, पेड़ पौधों से आने वाली पत्तियों से जो होती है, पांच पत्ती काढ़ा हो गया, उसके बाद जो गोबर गैस होता है हमारे यहाँ, गोबर गैस के में एक ड्रम होता है, ड्रम के पास से मतलब सीपेज निकलने के लिए जो एक्स्ट्रा सेलरी होती है वो बाहर निकलती है, उसके ऊपर एक तरी बन जाती है, मतलब एक पानी जैसी तरी बन जाती है, जिसमें पूरी तरीके से मतलब जैविक जैविक दवाई होती है, एक
0: बिल्कुल
1: प्रकार से सीधी बात बोले नॉर्मल भाषा में। उसका यदि हम स्प्रे करते हैं तो बहुत सारे कीट उससे नष्ट हो जाएंगे और फसलों को पोषण सही तरीके से मिलना चालू हो जाएगा। साथ ही साथ एक चीज और बता दूं आपको कि गोबर गैस के बारे में जब चर्चा की है, तो गोबर गैस से निकलने वाला जो खाद है वो भी अमृत खाद बोला गया है, उसको भी खेत में यदि हम छिड़काव करते हैं, बुरकाव करते हैं, तो उससे भी खेतों में केचुए जीवित हो गए, और बताया जाता है कि एक केचुए की खुराक एक हाथी के बराबर होती है, जितना हाथी खाता है उतना केचुआ खाता है। केचुआ जमीन को उर्वरक क्षमता को बहुत अच्छे से बढ़ाता है और हमारी फसलों को मजबूती प्रदान करता है।
0: बिल्कुल सही बात की, आपकी बात सुनने ने बहुत अच्छी लगी रोज। और आप युवा होने के साथ साथ खेती से जुड़े लाभी,
1: जी
0: पर कई ऐसा भाई बहन छे जो युवा छे वो गांव लख छोड़ी ने शहर की तरफ आई रहे छे,
1: जी
0: कि आप खेती खल लई ना आपको दृष्टिकोण काई छे, और जो युवा भाई बहन छे वो अपना यहाँ खेती का व्यवसाय बनावा उखा लेना, आप काई कहना चाहोगे?
1: मैं दो पंक्तियों से सिर्फ उनको इतना कहना चाहता हूं कि टेके हैं घुटने अभी तो साहस बाकी है, टेके हैं घुटने अभी तो साहस बाकी है, धड़क रहा है दिल अभी तो सांस बाकी है, समंदर लाख चाहे गहरा हो टूटी है कश्ती मेरी, क्योंकि साहिल पे नजरें ही टिकी अभी तो विश्वास बाकी है। खेती विश्वास का एक परिचायक होती है, क्योंकि किसान जिस तरीके से खेती करता है और जिस तरीके से अपने सपने संजोता है, उस हिसाब से वो सोचता है कि आज मैं ऐसा कर लूं, कुछ ऐसा कर लूं, और जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद उसके जो सपने होते हैं वो कभी कभी टूट जाते हैं, क्योंकि हम सबसे लड़ सकते हैं, प्रकृति से कभी नहीं लड़ सकते हैं। और मेरे बहुत सारे युवा क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में पलायन कर देते हैं। मैं उनको बोलना चाहता हूँ कम समय की फसलें लगाएं, जैसे तीन तीन महीने में आने वाली, तो एक साल में हम तीन से चार फसलें लगाएंगी, तो यदि एक फसल भी बिगड़ती है तो हम वो दो फसलों से हमारा मुनाफा ला सकते हैं। और
0: बिल्कुल
1: उसके बाद जो मेड़ होती है, मेड़ पे फलदार वृक्ष लगाकर हम उनसे भी अपने आमदनी ले सकते हैं। अंतर्वर्तीय फसलें होती है, जैसे मूंग लगा सकते हैं कपास के बीच में, सोयाबीन कर सकते हैं, या ऐसे कुछ भी जो भी फसलें हैं वो हम आराम से कर सकते हैं जो जल्दी आ जाए, जैसे रेल वाली बेल वाली फसलें होती है, जैसे कपास 80 से 90 दिनों में चालू होता है, तो 60 दिन के लगभग जो फसलें होती है, 70 दिनों की जो फसलें होती है, खीरा होता है, टेंसी होता है, टिंडा होता है, ये सब जो होती है ना, ये फसलें हम ले सकते हैं और उससे उत्पादन ले सकते हैं। इसका सीधा सीधा कारण है कि हमें वो करना पड़ेगा,
0: बिल्कुल
1: खेती
0: सही
1: से यदि
0: कहा,
1: हम पलायन कर देंगे तो आने वाले समय में खेती करेगा कौन।
0: बिल्कुल सही कहो कि आप वैज्ञानिक तरीका से खेती करो और मिश्रित खेती की तरफ आगे बढ़ो, फलदार वृक्ष भी लगाओ और नकदी जो फसल न चाहिए उनको भी अपना खेत में अगर आप
1: जी
0: लगाओगे।

0: आपकी एक नियमित आमदनी भी हो जाएगा, और उन्हीं आमदनी से आप खेती मौके वापस लगे ना, ना ना दो का चार पैसा, ना चार का 16 पैसा भी
1: जी
0: करी सको।
1: बिल्कुल
0: बहुत अच्छी आपने बात बताई। कई युवा भाई ऐसा अच्छे जो खेती से जुड़ना चाहे पर उनका पास खेती नहीं है, तो कृषि उत्पाद या खरीफ का जो उत्पाद फसल ना
1: हाँ
0: कचे ओखा लेना भी कई काम करो जाओ। अब गांव में जैसा स्वयं सहायता समूह हो या अपना किसान भाई हुई ना एक उत्पादक समूह बनाई ले, कई इना तरीका से भी गांव में हुई रह जाओ।
1: ये जो होता है फार्मर प्रोड्यूस कंपनी, मतलब कृषक क्या कर सकते हैं कि यदि अपने पास बहुत अच्छी चीज़ें आ रही है, जैसे अच्छी क्वालिटी में खीरा ककड़ी आ रही है या अपनी जो भी फसलें लगाई हुई है, और यदि क्या है कि बाजार में उसका दाम कम मात्रा में चल रहा है और जैसे अन्य लोगों को वो महंगे दामों में मिल रहा है, तो हम अपनी खुद की एक कंपनी प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे सरकार को के द्वारा अनुदान भी दिया जाता है, और अपनी फसलों को सीधे उनके घर तक पहुंचाने का जो काम रहता है वो कर सकते हैं, और अच्छा मुनाफा भी उससे हम कमा सकते हैं। साथ ही साथ कृषि स्टार्टअप भी हम चालू कर सकते हैं। जैसे टमाटर की फसल लगी है और टमाटर का रेट कम हो चुका है, तो हम टमाटर का टमाटर सॉस बनवा के भी उसको अपनी खुद की कंपनी प्रोड्यूस करके उसका एक अलग ही अपना वो बना सकते हैं। जैसे मिर्ची का है उसका अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो अपना खुद का प्रोडक्ट बना के खुद मालिक बन के खुद अच्छे दामों में बेच सकते हैं और किसानों से भी खरीद सकते हैं, तो किसानों को भी मुनाफा, हमको भी मुनाफा, और सामने जिसको दे रहे हैं उसको भी मुनाफा, तो यहाँ पे तीनों मुनाफे में ही आएंगे।
0: बिल्कुल सही कहो। एक भविष्य की संकल्पना भी छे कि क्यों नहीं अपना गांव में अगर खेती हुई रहेल छे तो अपना गांव का जो असा भाई छे जो सपनों लेने आयल छे उनका सपना का साकार करा, अपनों भी उद्धार करा, अपना गांव को विकास करा, गांव को उद्धार करा। आपसे बात करी नंतिम पटेल भाई, हमको घणो अच्छो लग्यो, आनंद आयो। आप अपनी चौपाल पर आया, हमारा किसान भाई बहन से अपना विचार, अपना जीवन का विचार साझा कराया। एकालन बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
3: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
4: बहनी इना संदेश का पहला अपन सुनी रहा था भेंट वार्ता प्रगतिशील कृषक अंतिम पटेल सी, खरीफ फसल न पर जानकारी बातचीत करी रही थी बहन सुनीता पंडित। ना आवा देखो एक बात करा, अपना जी घर में रसोई में जी मसाला उपयोग होज वो हमारी बहन ने बड़ा ध्यान से सोची समझी ने नौका में नाखज, नौको अलग अलग फायदा भी रहज। देखो एक अजवाइन जी छे हमारी भारतीय रसोई को सबसे महत्वपूर्ण मसालो छे, हर घर में मिलग न एकासी कहीं छे कि बहुत सारा लाभ तो छे, पण एका साथ साथ कहीं कि बीमारी न भी इलाज का रूप में हमारी बहन ने उपयोग कर लेज। जैसे कि मसाला का रूप में तो उपयोग करज सही कि भाई दाल सब्जी ने बनाई ओका में नाखी दियो या पकौड़ा बनाया ओका में नाखी दिया, पण ओका साथ साथ ये पाचन में भी सहायता करज। तो एक लेना जी अजवाइन छे वो पाचन में कभी कभी कहीं हो जाए कि थोड़ा सा उच्चो नीचो खाई लियो, गैस हुई गई तो पाचन संबंधी जी असहज हो जाए नहीं लोग तो वो कम या गैस हुई गई तो ऐसी स्थिति में वो राहत दीज। गैस न पेट फूलना का बाद यदि अजवाइन ले लिया हमारा भाई या बहन तो उनका थोड़ी सी ओका में राहत हुई जाए। एक साथ साथ पारंपरिक रूप से अपन देखा तो अजवाइन को उपयोग जी छे अपच न भारीपन का भी दूर कर दीज। सर्दी जुकाम में भी हमारी बहन ने जी छे वो अजवाइन की भाप दे देज, अपना घर का लोग न खा या गर्म पानी में नाखी देना ओका उपयोग का करना का दे देज, ओका सी जी बंद नाक छे वो खुली जाए न सामान्य परेशानी न भी दूर हुई जाए। एक साथ अजवाइन में जी छे एंटी ऑक्सीडेंट का गुण छे, ये प्राकृतिक पौध यौगिक जी छे ओका में उपलब्ध रहज, तो ओका सी भोजन को स्वाद बहुत बढ़ी जाए, पराठा हो, पूरी हो, कचौड़ी हो, ओका में थोड़ी सी अजवाइन नाखी देनू तो ओका स्वाद में बढ़ोतरी हो जाए, पाचन में भी सहायता मिली जाए। एक साथ पाचन का सुधारना का लेना आम जो घरेलू तरीको छे नी अपनी बहन ने जी आजमाओज वो कहीं करे कि आधो चम्मच या एक चम्मच अजवाइन का जी छे पानी में नाखी ना उबाड़ी लेज ना ओका हल्को ठंडो कर लेज, गुनगुना करी ना घर का लोग ओका पी लेगा तो उनका नियमित रूप से यदि ये परेशानी नहीं हुई रही तो काम जैसे गैस की समस्या हुई रही, अपच की समस्या हुई रही तो काम बहुत अधिक मात्रा में आराम आई जाए।

बहनोनी अभी अपन सुनी रहा था ममता शर्मा को गायल श्याम मखर लाई दो करण फूल झुमको। ना देखो दो दिन बाद अपन जन्माष्टमी मनावांगा, तो जहाँ घरेलू व्यंजन की बात आज अपन जन्माष्टमी का बारा में कर लेवा कि जन्माष्टमी पर पंजरी को प्रसाद चढ़ेगा चढ़ावागा सब लोग, तो प्रसाद का बनावनु ज कसो। एकामा कही है कि मुख्य जी अवयव है वो है धनिया न, एक साथ हमारी बहन जी छे ओका में सूखा मेवा नाखी देज, मखाना नाखी देज, मगज आदि को भी उपयोग कर लेज, पर ओका बनावना की विधि में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता छे। अपन सबसे पहला काई काई सामग्री लगा ओका बारा में बात कर लेवा। साबुत धनिया ओका में अच्छो चाहिए, देसी घी 4-5 बड़ा चम्मच नाखणु, एक साथ साथ पीसी शक्कर या बूरो ये भी ओका में आवश्यक रज। न जी अपन कह रहा कि भाई अपन नखा सूखा मेवा में जी भी आवश्यकता छे, मखाना बादाम काजू किशमिश चिरौंजी नारियल को बूरो ये सब अपन नाखी सकें, पर एक साथ इलायची को पाउडर अपन नखा नाखनो पड़ेगा। आम बनावना की विधि कई है भाई, धनिया को भूननू खूब अच्छा तरीका से, क्योंकि एक में जी छे धीमी आँच पर अच्छी खुशबू आना तक धनिया का भूननू, पर जलनू नहीं चाहिए इनी बात को भी अपन नखा ध्यान रखनू। ना 2-3 चम्मच अच्छो घी ओका में अच्छो नाखी देवांगा, ठंडो होने दो। धनिया का ठंडा होना का बाद मिक्सर में दरदरो पीसनूज। आवा बहुत महीन नहीं करनो है, नहीं तो पंजरी को स्वाद जी छे वो बिगड़ी जाए। एका साथ अपन मखाना ना सूखा मेवा का भी घी नाखी ना भूनी लेवांगा, कुरकुरा हो जाए असा भूनूज अपन का ठंडा होना का बाद उनका भी दरदरो पीसी लो। बादाम काजू नाखनो है तो ओखा भी हल्को भूनी लो। आवा सबई सामग्री खन्ना ख भूनो धनियो मखाना काजू बादाम चिरौंजी नारियल जी भी अपन ना मिलाया वो सब नख मिलाई दो। ना सबसे आखिर में अपन नख नाखनू जो काम शक्कर को बूरो या पीसी हुई शक्कर, क्योंकि यदि अपन ना पीसी शक्कर पहला नाखी दी तो बूरो जी छे मिश्रण जी ठंडो होना का बाद या अपन ये देखा कि अपना धनिया जी ठंडो नहीं हुआ था ना ओका में अपन ना नाखी दी तो वो काई हो जाए कि चिपचिपी हो जाए, वो पूरी पिंजरी को मजो खत्म हो जाए, पूरा पंजरी जी छे वो चिपचिपी हो जाए। तो इन्हीं बात का दो बात में को बहुत विशेष रूप से ध्यान रखनू कि एक तो पूरा मिश्रण अच्छा तरीका से ठंडी हो ठंडो हो जाए ओका बाद जो काम पीसी शक्कर या बूरो मिलावा। ना सबसे आखिरी में ओका में इलायची पाउडर अच्छा तरीका से नाखी देवा, खुशबू सी अपनी पंजरी जी छे महकी उठागा। ना भगवान का साथ साथ अपन नखा भी अच्छा लगेगा, अपना भगवान की जी पूजा होएगा, अपना अच्छो प्रसाद चढ़ावांगा ओका में पंजरी को प्रसाद स्वादिष्ट ना घर को बनेल। ना देखो अपन ना पंजरी बनावने की बात भी कर ली, एक साथ अवा कृषि उपज मंडी समिति इंदौर का भाव भी हमारा पास आई गए, पर हूँ हाँ ओका बाद में बताऊँगा, ओका पहले सुनांगा एक लोकगीत।

0: अभी अपन सुन रहा था साधना उपाध्याय को गायल न उनकी मंडली को गायल ये लोकगीत। कृषि उपज मंडी समिति इंदौर का आज का भाव हूँ अब आपको बताऊँ। आज सोयाबीन को भाव था न्यूनतम 4000 रुपया प्रति क्विंटल, वहाँ जो अधिकतम भाव रहो 6135 रुपया प्रति क्विंटल, न मॉडल भाव 5950 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से सोयाबीन आज बिकी। गेहूँ की बात करा तो गेहूँ को न्यूनतम भाव था 2603 रुपया प्रति क्विंटल, वहाँ जो अधिकतम भाव रहे हो 3151 रुपया प्रति क्विंटल, मॉडल भाव 2642 रुपया प्रति क्विंटल को थो। मक्का की बात करा तो मक्का 1900 रुपया प्रति क्विंटल न्यूनतम भाव का साथ आज शुरू हुई थी, न अधिकतम भाव 2557 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से बिकी। एको मॉडल भाव भी 2557 आज रहे हो। चना डॉलर की बात, 5500 से न्यूनतम भाव का साथ शुरुआत हुई थी, अधिकतम भाव 9700 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से बिकी, वहाँ जो मॉडल भाव तो 7505 रुपया प्रति क्विंटल। चना देसी 5620 रुपया न्यूनतम भाव का साथ आज शुरू हुआ, न अधिकतम भाव 8095 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से बिकिया। एको मॉडल भाव रहे 5905 रुपया प्रति क्विंटल। मूंग की बात करा तो मूंग 3500 रुपया न्यूनतम भाव थो आज को, न वहाँ जो मॉडल अधिकतम भाव रहे 7300 रुपया प्रति क्विंटल को, 3105 रुपया एको मॉडल भाव थो आज को। सरसों को देखा तो सरसों आज न्यूनतम भाव 6980 रुपया का साथ शुरू हुई थी, न 7805 रुपया अधिकतम भाव पर बिकी। एको मॉडल भाव रहे 6980 रुपया प्रति क्विंटल। मिर्ची 8900 रुपया न्यूनतम का साथ शुरू हुई थी, बड़ा अंतर का साथ 15020 रुपया प्रति क्विंटल का भाव सी अधिकतम भाव पर बिकी। यो जो मॉडल भाव रहे 15020 रुपया प्रति क्विंटल। तो यो तो था कृषि उपज मंडी समिति इंदौर का आज का भाव। काल सवेरा खेती की बात नम आकाशी बिजली सी सुरक्षा का बारे में आपको जानकारी मिलेगा। अम ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम की बखत हुई रही पूरी। अनुराधा को देव आज्ञा, राम राम।
1: ग्राम लक्ष्मी, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से मीडियम वेव 462.89 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर, और अगला कार्यक्रम आकाशवाणी की भोपाल केंद्र से।
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए

0: भारत के आर्थिक विकास में स्वदेशी और सतत उपभोग की भूमिका पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर स्वदेशी गुड्स को इम्ब्रेस करने और अननेसेसरी सोने के परचेज और डेस्टिनेशन वेडिंग देश के बाहर जाके करने के लिए अवॉइड करने की अपील की है। एक वीडियो मैसेज इंस्टाग्राम पे शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने इंडियंस से लीजर ट्रिप्स देश के बाहर जाके ट्रैवल करते हैं उनको लिमिट करने और देश के बाहर जाके शादी में पैसा खर्च करने से बचने की अपील की है और ये भी कहा है कि जब तक ही जरूरी ना हो तब तक गोल्ड की भी परचेज ना करें। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संदेश देशवासियों के लिए क्या था।
2: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है। उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है। दूसरी तरफ भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए हैं। इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना है, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है। स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए।
1: प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया की 7.8% इकोनॉमिक ग्रोथ पर देश को बधाई दी और कहा कि सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करने और स्वदेशी प्रोडक्ट्स को ज्यादा इम्फोसिस और महत्वता देने की जरूरत है। स्वदेशी सस्टेनेबल कंजम्पशन और इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री केजी सुरेश। मिस्टर सुरेश, आपका आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी धन्यवाद, नमस्कार।
1: सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि इकोनॉमिक ग्रोथ और स्वदेशी प्रोडक्ट्स को यूज करने के बीच आखिर डायरेक्ट कनेक्शन क्या है और अगर हम इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस देते हैं तो इसका इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
3: देखिए, हम जितना देश के अंदर के प्रोडक्ट्स को हम यूज करेंगे उतना हमारा आयात कम रहेगा और जब आयात कम होगा तो उसका मतलब है कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स है, विदेशी जो हमारे पास एक्सचेंज है, वो हम बाहर नहीं खर्च करेंगे। तो निश्चित ही वो जब बढ़ेगी तो उसका निश्चित ही हमारे पूरे इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे प्रभाव पड़ेगा। हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स कितना है इस पर फर्क पड़ेगा। अगर हम आयातित, अब हम प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि भाई विदेशों में आप जो है घूमने फिरने के लिए कम, भारत में बहुत सारी जगह है जिसको एक्सप्लोर करना बाकी है और जिससे जो है लोकल इंडस्ट्री को, लोकल सर्विस सेक्टर को बहुत जो है समर्थन मिलेगा, तो आपको वेडिंग डेस्टिनेशन भारत के अंदर है तो कितने लोगों के लिए रोजगार निर्मित होगा। वो विदेशियों के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ कह रहे हैं कि भारत को जो है, भारतीय प्रोडक्ट को, भारतीय पर्यटन स्थलों को, उनको हमको जो है प्रमोट करने की आवश्यकता है। तो इससे क्या होगा कि विदेश में जाके जब आप पैसा खर्च करेंगे तो वो आप फॉरेन एक्सचेंज ही आप खर्च कर रहे हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स जो है वो आप खर्च कर रहे हैं। तो वो जब खर्च होगा, जब आप कहते हैं कि सोना, हमको सोना सबसे ज्यादा जो है, अगर आप देखेंगे कि पेट्रोल के बाद हमारा सबसे ज्यादा खर्च जो है सोना आयात करने में होता है। पेट्रोल तो मजबूरी है उसके बगैर, लेकिन सोना तो कोई मजबूरी तो है नहीं हमारी। लेकिन अगर हम सोना कम खरीदते हैं, अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास, गोल्ड बॉन्ड्स का ऑप्शन है। सोना किस लिए लेते हैं? सोना इसलिए कि भविष्य के लिए हमारा जो है, समझ लीजिए कि कुछ आपके शादी ब्याह के लिए कुछ होता है, उसको छोड़कर बाकी सोना लेने का जो पूरी प्रथा है वो है कि हमारे भविष्य में कोई संकट आए तो उस वक्त वो काम आएगा। अब आज गोल्ड बॉन्ड्स आप लेंगे आज का रेट का, वही आपको रिटर्न मिलेगा, तब भी तो बात तो फिर नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं कि हमको समय के अनुसार जो है हमको आगे बढ़ने की जरूरत है, हमें अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को बचाना है और जैसे ही इंडस्ट्री हमारे लोकल स्वदेशी हम चीजों को खरीदेंगे तो निश्चित ही जो पैसा विदेशी कंपनियां आके यहां कमाती है उसको निश्चित ही जो है उससे ज्यादा मुनाफा हमारे कंपनियों को मिलेगा। हमारे कंपनियों को मुनाफा लगेगा तो वो पैसा फिर भारत में ही जो है निवेश होगा, भारत का पैसा भारत में ही निवेश होगा और उसका लाभ भारतीयों को ही मिलेगा, भारतीय उद्योग को मिलेगा, भारतीय लघु

0: उद्योग है उनको मिलेगा, मध्यम उद्योग है उनको मिलेगा, तो इसका बहुत बड़ा असर जो है पूरे अर्थव्यवस्था में होती है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमको स्वदेशी सिर्फ एक नारा नहीं है, स्वदेशी पूरा एक इकोनॉमिक मॉडल है जिसमें हम आयात जहां मजबूरी हो, जिसको कहते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है, कुछ चीजों का हमारे पास विकल्प नहीं है, पेट्रोल की हमारे पास जरूरत है, उसके लिए भी हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी ऑफशोर हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑनशोर तो है। तो मैं समझता हूं कि निश्चित ही हमारे आर्थिक, हमारे लोकल इकोनॉमी को तब बूस्ट मिलेगा, यहाँ के टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, यहाँ के जिसे कहते हैं कि जो अन्य उद्योगों को बूस्ट मिलेगा, अगर हम अपना पैसा भारत के अंदर ही निवेश करते हैं। तो स्वदेशी प्रोडक्ट्स में एक तो स्वाभिमान की बात है, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ का प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। पूरी दुनिया आज भारत के प्रोडक्ट्स की तरफ आकर्षित हो रही है, खासकर हमारे जो आर्ट एंड क्राफ्ट, इसमें तो हमारा जो है महारत है, पूरे दुनिया में वो आप देखेंगे, दुनिया भर में आप घूमेंगे तो हर डेकोरेटिव रूम में आप देखेंगे कि भाई भारत के ब्रास के आर्ट पीसेस लगे होंगे, मार्बल के लगे होंगे। तो
1: जी
0: ये मैं समझता हूं कि ये हमारी पूंजी है, हमारी विरासत है ये,
1: जी
0: तो हमें गर्व भी होना चाहिए इसको उपयोग करते हुए, और उसका एक आर्थिक भी उसका एक बहुत बड़ा पक्ष है।
1: जी जैसे आपने समझाया हमें, वो तो आखिर है ही। उसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में देशवासियों को कहा, उन्होंने सस्टेनेबल कंजम्पशन, क्योंकि आपने कहा कि भारत की विरासत है और भारत में जो आर्ट एंड क्राफ्ट है वो तो है ही, उसके अलावा भी जो हमारे हमारी जो जीवन शैली है उसमें हम काफी ज्यादा नेचर का ध्यान रखते हैं। और यही इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने भारतवासियों से अपील भी की कि सस्टेनेबल कंजम्पशन की ओर भी अपना ध्यान आकर्षित करें। तो आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि सस्टेनेबल कंजम्पशन का क्या रोल है इंडिया से बाहर होने वाले अननेसेसरी स्पेंडिंग को रोकने में, रिड्यूस करने में। क्या रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन सिर्फ प्रकृति के लिए ही जरूरी है या इसका कोई डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट भी हमें हो सकता है?
0: भारतीय जो व्यंजन है, भारतीय चीजें लेंगे तो जो भारतीय हमारे जितने भी आउटलेट्स हैं उनको उसका लाभ मिलेगा। इसका मतलब है कि हमारे जो, चाहे अभी अब हम हेल्दी फूड्स की तरफ जाएं, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हमने मनाया था। मिलेट जो है उससे जो है आप देखेंगे कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है, और साथ ही साथ जो भी मिलेट को पैदा करते हैं हमारे किसान भाई, उनको भी जो है उसका बहुत आकर्षक मूल्य मिलता है। तो इसलिए विदेशी चीजें आयात करके खाने से कितना बेहतर है कि हम अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, और साथ ही साथ जो है हम ऐसी चीजें जिससे जो है, जिसको ऑर्गेनिक है, जो केमिकल बेस्ड नहीं है, किसी रसायन पर जो है निर्भर नहीं है, उन चीजों को हम प्रमोट करें। देश के अंदर जो है कई चीजें आज जो है गोबर से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कई चीजें जो है हम जो सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए जो है हम किस तरीके से कर सकते हैं। पेड़ को काटना, आज आपको सुनने में ताज्जुब लगेगा, कई देश में भोपाल जैसे जगह में भी शमशान घाट में गोकाष्ठ का उपयोग होता है, यानी कि जो गोबर के कंडे होते हैं उनको लकड़ी की जगह, तो यानी कि लकड़ी कम यूज किया तो हमारे जो बड़े जंगल है, हमारा जो पर्यावरण है वो बचा रहेगा। तो हमारे पास विकल्प है, हमारे समाज ने वो विकल्प तैयार किया है सदियों से कि हम खर्चा को कैसे कम कर सकते हैं। हमने जो है खादी जैसे प्रोडक्ट्स है, हमारे हमारे यहाँ हमेशा हमारी परंपरा रही है रिसाइकल का, रियूज का, रिड्यूस का। हम कभी उपभोक्तावादी कभी नहीं रहे, जितना आवश्यकता है उतना ही हम लोग खर्च करते रहे हैं। आज एक नई ट्रेंड है उधार लेने की, डेट सिस्टम का, कि हम जो है जो चीजें आवश्यक नहीं भी है उनको भी हम खरीदते हैं शौकिया। तो मुझे लगता है कि पुनः हमको वापस अपने पुराने उस सोच में जाना पड़ेगा जहां जरूरत की चीजों को लें और स्वदेशी चीजों को लें, और उससे जो है हमारा जो स्थानीय उद्योग है, चाहे वो लघु उद्योग हो चाहे वो ग्रामीण उद्योग हो, उनको भी प्रोत्साहन मिलता है। और इसके लिए जो है आज प्रधानमंत्री स्वयं, चाहे वो अपने मन की बात के जरिए हो या अलग अलग युवाओं को संबोधन करते हुए भी, वो हमेशा बात करते हैं। और भारत में ये सिर्फ ग्रामीण और खादी की बात नहीं कर रहा हूं, आज हर क्षेत्र में, जिसको कहते हैं चिप्स टू शिप्स, प्रधानमंत्री ने ये शब्द का प्रयोग किया
1: जी
0: था IIT के कॉन्वोकेशन में, दीक्षांत में, और उसमें उन्होंने जो कहा कि आज हमारा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, सिलिकॉन चिप्स से लेकर हम लोग जो है आज जहाज तक हम बनाने की क्षमता रखते हैं, हवाई जहाज बना रहे हैं, बंदरगाह के लिए जो है समुद्री जहाज बना रहे हैं, तो हमारे अंदर क्षमताओं की कमी नहीं है, लेकिन हमको भी चाहिए कि हम उन चीजों को प्रमोट करें। तो ये जो पहले भी ये कॉन्सेप्ट कुछ चलाए गए थे, बी इंडियन बाई इंडियन, स्वदेशी मूवमेंट हमारा जो है स्वतंत्रता जो संग्राम के दौरान, वो अपने आत्मविश्वास के लिए, स्वावलंबन के लिए, उसके लिए हमने ये शुरू किया था, और विदेशियों का बहिष्कार करने के लिए गांधी जी राष्ट्रपिता ने जो है हमको ये आह्वान दिया था,
1: जी
0: और आज जो है हम उसी उसी को जो है एक व्यापक रूप में अपने समाज में परिवर्तन लाने के लिए, अपने आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं।
1: भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने और इकोनॉमिक प्रोग्रेस में बहुत बड़ा एक योगदान दे रहा है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो आज का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगभग 16 से 17% होता है और ये 27 मिलियन से ज्यादा वर्कर्स को भी इम्प्लॉय करता है। आपके विचार में सरकार की कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना बूस्ट कर रही हैं और इसके प्रोग्रेस को इतना एक्सेलरेट कर रही हैं?
0: जो सबसे बड़ा तो आपका मेक इन इंडिया है, जिसके तहत जो है आप जिन चीजों के लिए हम विदेशों में निर्भर रहते थे, जिस टेक्नोलॉजी को हमको आवश्यकता है, हमें जो अनावश्यक है उस पर नहीं, जो कृत्रिम टेक्नोलॉजीज हैं, जो कठिन है, जो मुश्किल है, जो हमारे पास नहीं था, तभी मैंने कहा कि जिसको जैसे सिलिकॉन चिप्स है, जैसे मैंने कहा कि हमारे जो डिफेंस के इक्विपमेंट है, स्पेस के इक्विपमेंट है, आज हम प्रयास कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा एक तो मेक इन इंडिया और दूसरा निजी क्षेत्रों को जो खुली छूट मिली है। पहले हम लोग कहते थे कि भाई रक्षा का क्षेत्र है, आपका स्पेस का क्षेत्र है, ये हम सिर्फ अपने सरकारी तंत्र के माध्यम से ही करेंगे, तो इसमें जो है ना अच्छे लोगों को रिटेन कर पाते थे, क्योंकि सरकारी तंत्र में जो है कई सीमाएं हैं, आप चाहते हुए भी अच्छे टैलेंट को आप रोक नहीं सकते, ज्यादा पैसा नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम प्राइवेट में दे रहे हैं। तो ताकि जो विदेशों में, जो नासा जैसे जगह में जा रहे हैं, उनको हम वही सहूलियतें, वही तनख्वाहें, अच्छे लोगों को, विदेश में लोग क्यों जाते हैं, ज्यादा तनख्वाह मिलती है, जीवन शैली बेहतर होती है, तो आज अगर हम वो विकल्प अगर उनको यहाँ दे देंगे तो वो अपना देश छोड़ के क्यों जाएंगे, यहाँ जितनी सुरक्षा है कहाँ मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि वो माहौल हमको अगर देना है तो वो सरकार आज प्रयास कर रही है, चाहे वो निजीकरण के माध्यम से हो, चाहे वो निजी कंपनियों को मदद करने के माध्यम से हो, मेक इन इंडिया के माध्यम से हो, कई जैसे गिफ्ट सिटी जैसे अहमदाबाद में बना है, ऐसे क्षेत्रों के माध्यम से जो है हम आईटी को बढ़ावा दे रहे हैं, हम अन्य सेक्टर्स को बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत सारे इंसेंटिव्स, हमने बहुत टैक्स हॉलीडेज दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। भारत एक सर्विस ओरिएंटेड, पहले तो एग्रीकल्चर था, आज भी काफी एग्रीकल्चर हमारे यहाँ होता है, लेकिन सर्विस सेक्टर को ज्यादा हमने बढ़ोतरी देखी। लेकिन अगर हम विश्व में अपना एक स्थान बनाना चाहते हैं तो हमको एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनना पड़ेगा। हम रॉ मटेरियल्स पहले जो है हम निर्यात करते थे और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हम विदेशों से आयात करते थे, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो रॉ मटेरियल लोहा हो, जो है एक्सपोर्ट करते थे। हमारे यहाँ आयरन की स्टील प्लांट्स हम लगा रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर, बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी, मतलब जो विदेशी भारतीय मूल के जो है उनको लेकर हम आ रहे हैं, उनसे हम यहाँ स्थापित करवा रहे हैं। इसका पूरा उद्देश्य है कि भारत की अपनी, चाहे वो यूरेनियम हो, चाहे वो ऐसे जो भारत के अपने अंदर जो क्षमताएं, उसको मात्र हम एक रॉ मटेरियल का सप्लायर के रूप में नहीं, बल्कि एक फिनिश्ड प्रोडक्ट का सप्लायर बने हम, इस दिशा में जो है। और हम स्टार्टअप्स को, जिस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोनॉमी हमारे पास है, इकोसिस्टम हमारे पास है, हम इतना स्टार्टअप्स को जो है, चाहे वो स्टैंडअप इंडिया हो या स्टार्टअप का जो भी योजनाएं जो भारत सरकार ने दिया है, युवाओं को स्किलिंग करके हम लोग जो है आज हर क्षेत्र में हम तैयार कर रहे हैं। आईटीआई की इतनी संख्या बढ़ गई है जो पहले कभी नहीं थी, पूरा प्रधानमंत्री कौशल योजना के माध्यम से हम लोगों को तैयार कर रहे हैं कि आज जो है हमारे पास न सिर्फ एजुकेटेड युवा शक्ति हो, बल्कि एम्प्लॉयबल युवा शक्ति भी हो, जिनके पास क्षमता इतनी है। हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हम जो है उसमें भी हमने जो है उद्यमिता को हम लोग जो है आगे बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई आप जाइए इंडस्ट्री को सेटअप करिए। तो हम नौकरियों पर सिर्फ नहीं जोर दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उद्यमिता के लिए हम युवाओं को तैयार कर रहे हैं, उनका मानसिकता परिवर्तन कर रहे हैं, उनका कौशल विकास कर रहे हैं, और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हमने जो है इसको समाहित कर दिया है। विकसित भारत, जो भारत को हमको 2047 में बनाना है, उस दिशा में हमको काम करना है। इस दिशा में बहुत सारे योजनाएं जो है भारत सरकार ने शुरू किया है, उसका निश्चित ही लाभ हमारे युवा पीढ़ी को लेना चाहिए।
1: जी सुरेश जी, आप सुर्खियों में कार्यक्रम में आए और आपने हमें इतने विस्तृत जानकारी दी इस विषय पे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत के आर्थिक विकास में स्वदेशी और सतत उपभोग की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
5: मीडियम वेव 462.9 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। दिल ने फिर याद किया, ये कार्यक्रम लेकर बस अभी हाजिर होते हैं।

कहते हैं सच्चा प्रेम हमेशा मुकम्मल नहीं होता। कुछ प्रेम कहानियां अधूरी रहकर भी उम्र भर दिल में जिंदा रहती है। आज की दास्तान भी ऐसे ही दो दिलों की है जिनकी मुलाकात एक बाजार में हुई, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। कहानी में आगे बढ़ेंगे। सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त मनीष कुमार सोनी का प्यार भरा नमस्कार। और अब रुख करते हैं उस कहानी की तरफ जहां एक निश्चल प्रेम है। शहर का वो पुराना बाजार आज भी शाम होते ही उसी तरह जगमगा जाता है। दुकानों के बाहर लटकते हुए पीले बल्ब, चूड़ियों की खनक, गरम जलेबियों की खुशबू और राह चलते लोगों की आवाजों में जैसे शहर की पूरी धड़कन बसी रहती थी। उसी बाजार में एक दिन कुछ 17-18 साल का अमन अपनी माँ के साथ कपड़े खरीदने आया था। भीड़ में अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। हल्के नीले रंग का सूट, कंधे पर किताबों का थैला और चेहरे पर ऐसी सादगी जैसे भीड़ में कोई शांत सी सुबह उतर आई हो। वो लड़की दुकान के बाहर खड़ी अपनी सहेली का इंतजार कर रही थी। अमन उसे कुछ पल देखता रहा और फिर न जाने उसके होठों पर मुस्कान आ गई। अगले दिन वो फिर उसी समय उसी दुकान के सामने खड़ा था। उसे खुद नहीं मालूम था कि वो कपड़े खरीदने आया है या किसी को देखने। लड़की आई और उसने पहली बार उससे बात करने की हिम्मत की। आप रोज यहीं आती है? लड़की ने उसकी तरफ देखा और बिना जवाब दिए आगे बढ़ गई। अमन कुछ कदम पीछे पीछे चला, फिर अचानक बोला, अच्छा एक बात पूछूं। अमन ने शरारत भरी पूरे शिद्दत से पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? हाँ, कुड़माई यानी सगाई। लड़की का चेहरा देखने लायक था। उसने कहा, तुम्हें इससे क्या, और तेज कदमों से आगे बढ़ गई। अमन वही खड़ा हुआ मुस्कुराता रहा। उसे क्या पता था कि यही छोटा सा सवाल आने वाले वर्षों तक उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन जाएगा। और वो लड़की, वो भी कुछ इसी सोच में थी। लेकिन कहते हैं ना कि रूपले पर्दे पर लिखने वाली हर कहानी एक अलग ही दिशा में चली जाती है। बस फिर मन में ताने बाने शुरू हुए। और वो गीत तो याद होगा ही ना आपको, फिल्म एक दूजे के लिए, है ना?

अब बाजार उनके मिलने की जगह बन गया था। कभी चूड़ी की दुकान के पास, कभी किताबों की दुकान के सामने, कभी मंदिर के बाहर लगे हुए पीपल के पेड़ के नीचे। उनकी मुलाकातें छोटी होती, लेकिन उन छोटे छोटे पलों में पूरा संसार समा जाता। अमन कई बार उससे कहता, तेरी कुड़माई हो गई, और वो हर बार नाराज होने का अभिनय करते हुए कहती, एक दिन सच में बता दूंगी, फिर मत पूछना। अमन हंसकर कहता, उस दिन बाजार आना ही बंद कर दूंगा, छोड़ ही दूंगा मैं। लड़की पलटकर पूछती, सच? और अमन की आंखों में एक पल के लिए शरारत की जगह डर उतर आता, और फिर वो बात को बदल देता। उनके बीच प्रेम कब आया किसी को पता नहीं चला। शायद वो उस दिन आया था जब लड़की ने बारिश में भीगते अमन को अपना दुपट्टा पकड़ाकर सिर ढकने को कहा था। अमन खुद को राजेश खन्ना अदाकार समझ बैठे। बस शायद उस दिन जब अमन ने उसकी पसंद की किताब बिना पूछे खरीद कर उसके हाथ में रख दी थी, या शायद उस दिन जब दोनों घंटों साथ बैठे रहे और एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा। उनका प्रेम किसी इजहार का मोहताज नहीं था, न कोई कसम, न कोई वादा, न साथ जीने मरने की बातें। बस एक दूसरे की फिक्र थी, एक दूसरे की खुशी में अपनी खुशी थी। बारिश के बूंदे भी कुछ यूं ही बयां कर रही थी। एक ऐसी मासूमियत थी जिसे दुनिया की चालाकियां भी छू नहीं पाई थी। लेकिन लेकिन लेकिन

कहानी चल रही है निश्चल प्रेम की, कार्यक्रम चल रहा है दिन ले फिर याद किया, मालवा की शान आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। लौटेंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद। श्रोताओं लीजिए सुनिए एक आवश्यक सूचना। इस गुरुवार यानी 3 सितंबर 2026 की सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है किडनी और मूत्र रोग से संबंधित बीमारियां और उनका उपचार। श्रोताओं इस विषय से संबंधित आप अपने जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर विपिन शर्मा न्यूरोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं और उसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट कीजिए, गुरुवार यानी 3 सितंबर 2026, समय सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर नोट कीजिए, फोन नंबर है 2710223 और 2710224 यानी 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731 यानी 0731। तो फोन करना ना भूलिए श्रोताओं, गुरुवार 3 सितंबर 2026 सुबह 10:32 से 11:02 तक विविध भारती इंदौर से FM 101.6 MHz पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ट्यून कीजिएगा कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर। अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है श्रोताओं। समय किसी की भावनाओं के लिए नहीं रुकता, वैसे ही ये कहानी भी नहीं रुकी। घर वालों को उस लड़की के लिए रिश्ता पसंद आ गया। लड़के का परिवार बड़ा अच्छा था, नौकरी अच्छी थी और इसी बीच विवाह तय हो गया। जब ये खबर लड़की ने अमन को बताई, दोनों उसी पुराने बाजार की एक सुनसान गली में खड़े थे।

0: बहुत देर तक कोई कुछ नहीं बोला। अमन ने हमेशा की तरह मुस्कुराने की कोशिश की और पूछा, तो तेरी कुड़माई हो गई? लड़की की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार उस सवाल का जवाब दिया, हां। अमन ने सिर झुका लिया। उसने बस इतना कहा कि खुश रहना। लड़की ने कांपती सी आवाज में पूछा, बस इतना ही कहोगे? अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम में हमेशा पाने की जिद थोड़ी होती है। कभी कभी किसी की खुशी के लिए पीछे हट जाना भी तो प्रेम होता है। समय बीतता चला गया और ऐसा बीता कि कभी अमन टीवी पर कोई फिल्म देख रहा होता था तो अपने आप को ऋषि कपूर मान लेता था, वही अभिनेता जैसे कभी आपने फिल्म बॉबी में देखा, और वही वो गीत जिसमें कभी चाबी खो जाती थी। बस देखते देखते समय बीत चला।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

गीतों के साथ साथ जैसे जैसे शब्द बदलते गए, कुछ महीनों में अमन भी बदल गया। उसने सेना में भर्ती होने का फैसला किया। शायद वो भागना चाहता था, खुद को किसी काम में डुबो देना चाहता था, या शायद उसे लगता था कि देश की वर्दी उसके भीतर के उस खालीपन को ढक देगी जिसे कोई और नहीं समझ सकता था। कभी कभी बाजार से गुजरते हुए उसकी नज़र उसी पुराने मोड़ पर पड़ जाती जहां अमन ने उस लड़की को पहली बार छेड़ते हुए पूछा था, तेरी कुड़माई हो गई। यही हाल उस लड़की का भी था। जब कभी भी वो बाजार जाती तो यही बात याद आ जाती और वो अनायास मुस्कुरा देती। फिर पता नहीं क्यों उसकी आंखें नम हो जाती। उनका प्रेम किसी रिश्ते का नाम नहीं था, वो उनके भीतर बची हुई एक पवित्र स्मृति था।

समय की बलिहारी है। एक सर्द सुबह अखबार उस लड़की के दरवाजे पर आके गिरा। उसने रोज की तरह अखबार उठाया और चाय की मेज पर बैठकर पन्नों को पलटने लगी। देश की खबरों के बीच एक छोटी सी खबर पर उसकी नजर ठहर गई। सीमा पर हुई मुठभेड़ में कई जवानों के शहीद होने की खबर थी। उसने नाम पढ़ने शुरू किए और अचानक उसकी उंगलियां कांपने लगी। एक नाम था अमन शर्मा। कुछ क्षणों के लिए उसे लगा जैसे कमरे की सारी आवाजें बंद हो गई। चाय सामने रखे रही लेकिन उसके हाथ उसे उठाने की ताकत खो चुके थे। अखबारों को दोनों हाथ से पकड़ते उसे याद आ गया, वही अमन, तेरी कुड़माई हो गई। यह आवाज बिल्कुल वैसी ही सुनाई दे रही थी इतने वर्षों बाद भी। उसने अखबार को अपने दिल से लगा लिया और बहुत धीमे से कहा, अमन, हो गई थी मेरी कुड़माई। उस दिन वो बहुत देर तक रोई। आंसू में कोई शिकायत, कोई अपराध बोध नहीं था। उसने पहली बार महसूस किया कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में साथ रहने के लिए नहीं आते, वो आते हैं हमें प्रेम का अर्थ समझाने के लिए और फिर किसी अधूरी कहानी की तरह हमेशा के लिए हमारे भीतर रह जाते हैं। उस पुराने बाजार में वो कई बार गई लेकिन अब वो आवाज सुनाई नहीं थी, क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां सिर्फ मिलन से पूरी नहीं होती। कुछ कहानियां बिछड़कर अमर हो जाती है और कुछ नाम शादी की मेहंदी से नहीं, किसी अखबार में छपी शहादत की खबर से नहीं, बल्कि किसी के दिल में आखिरी सांस तक जिंदा रहकर इतिहास बन जाती है। ये वही कहानी थी।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम, आज की कहानी जिसे दिल ने फिर याद किया। और अब इजाजत, आपके रेडियो दोस्त मनीष कुमार सोनी को नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1100 से अधिक हुई। लगभग 5000 लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा, अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र,

0: सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की मेजबानी करेगा। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंच गया। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,127 हो गई है, जबकि लगभग 4,900 लोग अब भी लापता हैं। बचावकर्मी मूसलाधार वर्षा और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने आज संसद में बताया कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु खतरों की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभावों को कम करने की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। श्री शाह ने विनाशकारी बाढ़ के प्रति भारत की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को एफसीएनआरबी जमा, ईसीबी और ओएफसीबी के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की थी। रुपए की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित ये सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। अब एफसीएनआरबी जमा के लिए ये योजना बंद कर दी गई है, जबकि ईसीबी और ओएफसीबी के लिए ये सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने कहा है कि भारत में 7-8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बांगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अलनीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमरीका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में श्री बांगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती दर्शाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सकल घरेलू उत्पाद GDP आंकड़ों पर सवाल उठाने वालों की कड़ी आलोचना की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की GDP वृद्धि ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।
1: जब आप सच्चाई को तोड़ मोड़ करके लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आप विश्वासघात कर रहे हैं जनता के साथ। आखिर ये जो 7.8% का पाथ ब्रेकिंग रिकॉर्ड ग्रोथ दुनिया में और कोई देश नहीं दिखा पा रहा है, ऐसा तेजी से आर्थिक प्रगति ये कोई सरकार नहीं कर रही है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये देश के 140 करोड़ भारतवासियों का सामर्थ्य है।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज रात 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर श्री वेवर भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। एक रिपोर्ट।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 13 अरब डॉलर से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। उनके भारत डायमंड बोर्स के प्रस्तावित दौरे से द्विपक्षीय संबंधों में हीरा व्यापार के महत्व और इस क्षेत्र में आगे सहयोग की संभावनाओं को बल मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping

0: marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नामों की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंद का और शिकोहाबाद की रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मला यादव शामिल हैं। ट्रस्ट के अंतरिम जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन ने बताया कि ट्रस्ट के नए सीईओ एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई थी। वे 30 अप्रैल 2026 को रिटायर हुए। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। श्री राम मंदिर में दान की चोरी के आरोप के बाद सीईओ के चयन के लिए 6 जुलाई को 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। सीईओ के पद के लिए 5,500 से ज्यादा आवेदन मिले थे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल हुए। 2 दिन का यह सम्मेलन प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का पहला सम्मेलन था। इसका उद्देश्य देश की टीम भावना को मजबूत करना, सहकारी संघवाद को प्रगाढ़ बनाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देना है। इस पहल ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर संयुक्त रूप से विचार विमर्श करने और कार्यान्वयन तथा परिणामों में तेजी लाने के लिए मंच प्रदान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों की इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिन के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेट कार्ड के आधार पर की जा रही है।
3: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा। आपके इशारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कल तेज वर्षा होगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज वर्षा की आशंका है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बिगड़ रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि हुई है।
4: बिहार में गंगा नदी का पानी भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, पटना, बक्सर, भोजपुर और वैशाली समेत कई जिलों में निचले इलाकों में फैल गया है। भागलपुर जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि जिले में बाढ़ की स्थिति खतरनाक होने के बावजूद नियंत्रण में है। पटना के भद्रघाट, नौजर घाट और महावीर घाट पर गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सड़कों पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: झारखंड में H1N1 स्वाइन फ्लू संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 30 दिन में राज्य भर में कुल 36 रोगी मिले हैं, इनमें 18 बच्चे और किशोर शामिल हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: झारखंड में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने और संदिग्ध मरीजों की तत्काल जांच और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रांची के रिम्स और जमशेदपुर के MGM अस्पताल में H1N1 और H3N2 की जाँच की आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गयी है। रिम्स के क्रिटिकल केयर विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। महेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: बम्बई उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का आदेश दिया है। न्यायालय ने 6 वर्ष तक प्राथमिकी दर्ज न करने के लिए मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। न्यायालय की पीठ ने आज कहा कि उचित और ठोस जांच के लिए मामला CBI को सौंपना आवश्यक है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य सुरक्षा उपायों के बिना विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के अनुसार प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस सत्यापन, खरीदार पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी जानकारी के बिना अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग सुविधा दी जा रही थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
6: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 374 अंक फिसलकर 76,570 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 141 अंक फिसलकर 23,914 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 1 अमरीकी डॉलर के मुकाबले 94.98 रूपए पर बंद हुआ।
1: सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। बलजीत कौर और स्काल जेंग रिगजिंग को भू साहसिक अभियानों, रेमो साहा को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ही पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का ये टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। किदम्बी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे की ची यू जेन को और तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का 5वां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1200 से अधिक हुई। लगभग 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। New Delhi sends fifth tranche of emergency material to flood-hit Nepal. Death toll rises to over 1,200, with over 4,000 people still missing. RBI says special US dollar Indian rupee forex swap facility generated over 136 billion US dollar inflows till August 31st. Shri Ram Janmabhoomi Kshetra Trust appoints retired Air Marshal Jitendra Mishra as its first CEO. Belgian Prime Minister Max de Weber to arrive in New Delhi tonight on a three-day

सुनना मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मलहार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना, वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला।

चित्रगीत कार्यक्रम सुन रहे हैं आप श्रोताओं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। लीजिए सुनिए एक आवश्यक सूचना। श्रोताओं, इस गुरुवार यानी कल 3 सितंबर 2026 की सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर

आधार पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट कीजिए। दिन है कल गुरुवार यानी 3 सितंबर 2026। समय सुबह 10:32 से 11:02 तक और हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फोन नंबर दोबारा सुनिए श्रोताओं, 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731 यानी 0731। तो फोन करना ना भूलिए श्रोताओं अपनी जिज्ञासाओं और प्रश्नों के साथ। कल 3 सितंबर 2026 की सुबह 10:32 से 11:02 तक विविध भारती इंदौर से FM 101.6 MHz पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर। किशोर कुमार की आवाजें हैं। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीतबद्ध किया है SD बर्मन ने।

0: पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: हाफ टिकट। इस फिल्म के लिए गीता दत्त और किशोर कुमार ने इस गीत में अपनी आवाजें दी हैं और सलील चौधरी ने संगीत से सजाया है शैलेंद्र के बोल को। आइए सुनें।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य यात्रा से मध्य एशिया के साथ भारत के सुदृढ़ होते संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: सदियों पुराना वो दौर जब रेशम के धागों और मसालों के काफिले, लेकिन आज 21वीं सदी के नक्शे पर वही मध्य एशिया सिर्फ इतिहास की किताब नहीं बल्कि ग्लोबल पावर प्ले का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। ऊर्जा का अकूत खजाना, पारंपरिक दबदबा और अफगानिस्तान के मुहाने पर सुलगती अशांति, इन तमाम चक्रव्यूहों के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदम रखा। उज्बेकिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक में यूरेनियम की डील से भारत के भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा को लॉक करने की पटकथा याद था। मध्य एशिया के दिल में भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति को एक दूत अनिल त्रिगुणायत जी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद आनंद।
1: चर्चा की शुरुआत करने से पहले हम अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक 2030 तक व्यापार को $5 अरब से ज्यादा ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है। क्रिटिकल मिनरल्स, डिजिटल पेमेंट्स, डिफेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन और कनेक्टिविटी, यानी सहयोग का दायरा अब सिर्फ कूटनीति की मेज तक सीमित नहीं है। और फिर बिश्केक SCO के मंच से भारत का स्पष्ट संदेश, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। त्रिगुणायत जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदला है। चीन और रूस के पारंपरिक प्रभाव वाले इस क्षेत्र में भारत का ये कूटनीतिक कदम सेंट्रल एशिया में पावर बैलेंस के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण माना?
2: जो C5+1 या दूसरे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू हम सेंट्रल एशिया के साथ अपने रिश्ते बना पाए और प्रगाढ़ कर पाए, उसमें हमने देखा है कि बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। लेकिन जियोपॉलिटिकली रशिया अपना स्थापित करता रहेगा, लेकिन चीन को जियो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि आज की डेट में जब हम सेंट्रल एशिया को देखते हैं तो सेंट्रल एशिया को कॉकेशस के साथ मिलाकर के देखा जाता है। उन्होंने अपनी कनेक्टिविटी को वहां पर काफी बढ़ाया है, तो ये चारों कंट्रीज और गल्फ के कंट्रीज भी कुछ इन्वॉल्व हैं।

0: जो अमेरिकन एम्बेसी है वो उस रीजन की सबसे बड़ी एम्बेसी है और आर्मेनिया के साथ हमारे रिश्ते भी काफी अच्छे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो विजिट इस वक्त हुई है वो दो संदर्भ में हुई। एक तो ये कि बायलैटरल है हमारा उज्बेकिस्तान के साथ में, किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, जैसे आपने कहा कि उसको हमने कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया है, जिसका मतलब सिक्योरिटी हो गया, क्रिटिकल मिनरल्स हो गया, या न्यूक्लियर डोमेन के अंदर हो गया, डिफेंस में हो गया, ट्रेड को आगे बढ़ाने की बात है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो हमारी सेंट्रल एशिया के साथ रही है वो है कनेक्टिविटी। और कनेक्टिविटी के लिए हमने जो है, जब डायरेक्ट हमारा पाकिस्तान के थ्रू नहीं हो पा रहा, अफगानिस्तान नहीं पहुंच पा रहे, सेंट्रल एशिया नहीं पहुंच पा रहे थे, तो भारत ने चबहार पोर्ट के जरिए जाना शुरू किया। लेकिन अभी चबहार पोर्ट भी जो है अमेरिका की काटसा सैंक्शन और आजकल तो बमबारी चल रही वहां पर, तो ये सब करने की वजह से भारत को थोड़ा वहां चबहार पोर्ट में हमारे को कंट्रोल प्रॉब्लम हुई है। उसी के चलते वहां पर जो आपने नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का, उसमें भी चबहार पोर्ट का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये सारी जो समस्याएं इस वक्त जियो पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन की वजह से, खासतौर से अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसके चलते जो है बहुत सारी समस्याएं बढ़ गई हैं, और उसमें भारत ने कोशिश ये की है कि किस तरह से हम उनको इम्यूनाइज कर पाए उन प्रॉब्लम से, ताकि हमारे बायलैटरल रिलेशंस आगे बढ़ सके। तो वो किस तरह हो सकता है, एक तो एयर कनेक्टिविटी हो गया। अब आप ये देखिए कि अभी प्रधानमंत्री को हमारे जो जाना पड़ा 7.5 घंटे लग गए, जबकि ये 2.5 से 3 घंटे के बीच हमारे कंट्रीज हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान जिस तरह का एक अपना नजरिया दिखाता है, हमारे जो दुश्मनी के ताल्लुकात उनके साथ हैं, उसके चलते ये समस्या सबसे बड़ी आई। तो मैं समझता हूं कि काफी सारे एरियाज में बायलैटरल रिलेशनशिप बहुत बड़ी है। दूसरा उसमें है हिस्टोरिक और सिविलाइजेशनल टाइज है। आई मीन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वहां पर भारत के लिए बहुत ज्यादा प्रेम है। आप अगर जाकर देखें वहां पे कल्चरली लोग जो है
1: जी
0: वो काफी अलाइंड है भारत के साथ। लेकिन इस वक्त में प्रधानमंत्री की विजिट से काफी, मैं समझता हूँ, एक ये जो रिश्ते हैं और आगे बढ़ेंगे और प्रगाढ़ होंगे।
1: जी प्रोफेसर जोशी, भारत और उज्बेकिस्तान ने 2030 तक आपसी व्यापार को $5 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान व्यापार आंकड़ों को देखते हुए ये लक्ष्य कितना व्यावहारिक है, और इसमें फार्मा, आईटी, माइनिंग और कृषि जैसे क्षेत्रों की क्या भूमिका रहने वाली है आपके नजरिए से?
2: देखिए, ये देखना इस बार बड़ा सुखद रहा कि जब हमारे प्रधानमंत्री ने उज्बेकिस्तान की यात्रा की तो उनको न सिर्फ वहां के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जिस प्रकार के सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स रहे हैं, बहुत लंबे पुराने घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, उसको जब हम ट्रांसलेट करने के लिए आते हैं टेंजिबल आउटकम्स में, जब हम दो देशों के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करते हैं, तो उसमें व्यापार एक बहुत महत्वपूर्ण कम है, उसमें बहुत बड़ी संभावना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों ही देशों ने 2030 तक अपने व्यापार को $5 बिलियन तक करने का लक्ष्य रखा है। और हम ये भी ध्यान में रखें कि कन्वेंशनल जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको कट किया जा सके, और दोनों ही देशों के जो निवेशक हैं, कट किया गया $5 बिलियन का, प्रेफरेंशियल ट्रेड की बात दोनों देश कर रहे हैं, ताकि जितने भी टैरिफ से जुड़े हुए और नॉन टैरिफ से जुड़े हुए जो बैरियर्स हैं और जो निवेश में जिस प्रकार की समस्याएं आती हैं उनको दूर किया जा सके। तो जब हम भारत को देखते हैं तो भारत फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हुए, व्हीकल ऑटोमोबाइल्स हुआ, उसके पार्ट्स हुए, अलग अलग प्रकार के जो इक्विपमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, वो हुए, मोबाइल फोन्स हुए, ये तमाम, और कुछ खाद्य पदार्थ जो है उज्बेकिस्तान को भेजता है। वहीं जब हम उज्बेकिस्तान की ओर नजर डालते हैं तो फल और सब्जियां, फर्टिलाइजर्स, कुछ केमिकल्स और क्रिटिकल मिनरल्स जिसमें कि यूरेनियम शामिल है, वो भारत को प्रोवाइड कराता है। तो जब हम स्ट्रेटेजिक दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ पर एक क्रिटिकल मिनरल्स और तकनीक का ऐसा नया क्षेत्र उभर के आता है आनंद, जिसमें विशेषकर एक तो क्रिटिकल मिनरल्स के एरिया में सहयोग को आगे ले जाने की, कई गुना व्यापार बढ़ाने की बात की जा रही है, जो भारत और उज्बेकिस्तान दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन की तरह है। वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो जो ये नोवीस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, विशेषकर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है और AI है, इसको लेकर के भी दोनों देश से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इसको हमने कल प्रूफ भी किया, हमारी क्वार्टरली ग्रोथ 7.8% की रिकॉर्ड हुई है GDP की, जो कि अपने आप में एक बहुत ही हर्ष का विषय है। और वहीं दूसरी ओर भारत की जो तकनीकी ग्रोथ है उसकी भी, सिर्फ हम सेंट्रल एशिया की ओर, भारत जब अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी एग्जीक्यूट करता है दूसरी तरफ जाकर, तो वहां पर भी जो इंडोनेशिया जैसे देश हैं, फिलीपींस जैसे देश हैं, वो भारत की ओर देखते हैं व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें व्यापार में फिर जो है एक पूरा सामरिक क्षेत्र आ जाता है, जिसमें डिफेंस से जुड़े उपकरण,

0: जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स, जिसमें ये तकनीक को लेकर के सहयोग, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये देखना सुखद रहा कि उज्बेकिस्तान के साथ भी जो व्यापार को 5 बिलियन करने की बात की गई है, उसमें जो ये तमाम जो नवाचारी क्षेत्र हैं इनका भी उल्लेख है। इसमें दोनों देश साथ में काम करेंगे, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर, दोनों स्तर पर। ये दोनों देशों के लिए और इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है।
1: जी त्रिगुणायत जी, जो ताशकंद वार्ता रही उसमें जो सबसे बड़ा टेकअवे रहा वो उज्बेकिस्तान से भारत के लिए दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति की रूपरेखा तय होना रहा। भारत की स्वच्छ ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इस समझौते के रणनीतिक महत्व को आप कैसे आंकते हैं?
2: देखिए, भारत ने 2070 तक नेट जीरो एमिशंस का लक्ष्य रखा हुआ है क्लाइमेट चेंज के बारे में, और भारत एक लीडर के रूप में निकला है जहां तक के क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट मिटिगेशन और अडेप्टेशन की बात है, या दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको सपोर्ट करने की बात है। तो भारत ने अपना जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक नया आयाम किया है, उसी तरह से ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के इस तरह के इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स लिए हैं। इसी तरह भारत ने अपना लक्ष्य जो है न्यूक्लियर एनर्जी का रखा है लगभग 100 गीगावाट बाय 2047। तो ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। उसके लिए आपको जो है यूरेनियम की प्राप्ति, उसकी आपूर्ति, लॉन्ग टर्म सप्लाईज, उन सबको करना होता है। अभी हम सिर्फ कजाकिस्तान से खरीदते हैं यूरेनियम, और भारत चूंकि रेडी जैसे अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था, और इस वक्त में अपना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के तहत काफी कुछ चीजों में हम इंपोर्ट कर सकते हैं। उसी के सिलसिले में जो ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हमने साइन किया है येलो केक जिसको बोलते हुए लेंगे वहां से, तो ये हमारी जो ऊर्जा के डाइवर्सिफिकेशन के लिए, देखिए इस वक्त हमने देखा है जो ईरान के साथ युद्ध हुआ है उसमें जिस तरह चोक पॉइंट्स हैं, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हो, बाबल मंदब हो, जब उनके बंद होने से एनर्जी सप्लाईज में बहुत बड़ा डिसरप्शन आ गया, ट्रेड के अंदर बहुत बड़ा डिसरप्शन आ गया, तो अल्टरनेटिव जो हमारे पास हैं, जैसे INSTC है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उस सब की वजह से क्या है, आपको अपने एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की भी बड़ी आवश्यकता है। तो भारत ने जो है फोकस किया है कि रिन्यूएबल एनर्जीज को हम कैसे और आगे बढ़ाएं।
1: जी बिल्कुल प्रोफेसर जोशी, भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है। हम ये भी जान रहे हैं कि UPI 10 से ज्यादा देशों में समय इस्तेमाल हो रहा है। उज्बेकिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक में भारत के फिनटेक और IT सेक्टर के प्रवेश के जो अवसर बन रहे हैं उसे आप किस तरीके से देखती हैं, और क्या ये भारत की सॉफ्ट पावर का नया हथियार बन रहा है?
0: आनंद, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस पूरी चर्चा में जोड़ दिया, और मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उसके पहले मैं आपको हमारे प्रधानमंत्री की पिछली इंडोनेशिया यात्रा की ओर ले जाना चाहूंगी, जहां पर इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष ने भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की खुल के तारीफ की थी, और विशेषकर भारत के इलेक्टोरल सिस्टम और जिस प्रकार से हमने EVMs के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को सहज सरल ट्रांसपेरेंट बनाया, डिजिटाइज किया, उसकी तारीफ करते हुए एक महत्वपूर्ण MOU जो है वो भारत के साथ इंडोनेशिया ने साइन किया। तो इसी प्रकार से आप अपने आसपास के जब तमाम देशों को देखते हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया के देशों, साउथ एशिया के देशों, ईस्ट एशिया के देशों, साउथ ईस्ट एशिया के देशों, आज भारत की जो DPI है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसकी बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है पूरे विश्व में, और 140 करोड़ की आबादी के घने देश को डिजिटाइज करना सरल काम नहीं था आनंद, लेकिन हमने ये करके दिखाया है। तो चाहे हमारा आधार हो जो हमारा बायोमेट्रिक और डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम है, चाहे अपना UPI हो जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है जिसकी वजह से इंस्टेंट जो पेमेंट्स हैं वो अलग अलग बैंक अकाउंट्स के बीच में और अलग अलग मुद्राओं के बीच में भी संभव है, आज 10 से अधिक देशों में अपना UPI स्वीकार्य है, चाहे अपना डेटा शेयरिंग का DEPA हो जिससे कि डेटा एम्पावरमेंट को और प्रोटेक्शन को बल मिलता है, या ONDC हो जो कि ओपन नेटवर्क है डिजिटल कॉमर्स के लिए जिसमें कि बायर्स और सेलर्स को ये एप्लीकेशन आपस में जोड़ती है और एक प्राइवेट मार्केट प्लेस प्रोवाइड करती है। तो हम फिर इससे जुड़ी हुई अलग अलग जो हमने योजनाएं चलाई, चाहे जनधन हो, आधार हो, मोबाइल फोन से जुड़ी हुई योजनाएं हो, तो इससे हमने दो प्रकार के अकम्पलिशमेंट्स अचीव किए। एक तो हमने अपना जो पूरा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, पब्लिक सर्विसेज थी, उनको ट्रांसपेरेंट किया, इजी किया, सीमलेस किया, और इनको हमने डेमोक्रेटाइज किया, ये जन जन तक हमारी योजनाएं और ये तमाम जो पूरा डिजिटाइजेशन था ये पहुंचा। और दूसरा, हमने तमाम इसके माध्यम से जो बेनिफिट हुए वो एक ग्रास रूट लेवल पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक पहुंचाए। तो ये भारत की बहुत बड़ी शक्ति है, और आज भारत अपना जो DPI का ब्लूप्रिंट है उसकी ग्लोबल शेयरिंग कर रहा है। अलग अलग जो देश हैं

0: वो भारत के साथ में ऑफिशियल अग्रीमेंट्स के थ्रू ग्लोबल शेयरिंग कर रहे हैं भारत के डीपीआई की। ये देखना सुखद रहा कि उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देशों ने भी न सिर्फ फिनटेक को या व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, बल्कि अलग अलग जो तमाम क्षेत्र हैं जो लोगों की सिटीजन्स की आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं, या जो पब्लिक सर्विसेज हैं उसको कैसे डिजिटाइज किया जाए, उससे जुड़े हुए ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए, लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए, मेडिकल सर्विसेज और शिक्षा से जुड़े हुए हैं। और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी कि जब हमारे प्रधानमंत्री ने अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की यात्रा की थी तो घाना अफ्रीका में या अर्जेंटीना ब्राजील को हम लैटिन अमेरिका में देखें, इनको हम अपनी जो हमारा जो ई मेडिसिन संजीवनी की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराते हैं और जो टेली मेडिसिनल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराते हैं और वहां पर उनकी सर्विसेज को हम ग्रो करा रहे हैं। तो इसी प्रकार के अग्रीमेंट्स हमने इन दो देशों के साथ भी किए हैं। क्षेत्रीय स्तर पर भी जब हम सेंट्रल एशिया की ओर देखते हैं तो उनकी जो डिजिटाइजेशन की यात्रा है इसका ये बड़ा माइलस्टोन है, जिसमें भारत अपने ब्लूप्रिंट को शेयर करके तमाम ये जो अलग अलग प्रकार की सर्विसेज हैं इसमें इन दोनों देशों को आगे ले जाने का काम करने वाला है।
1: जी, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में चल रहे युद्धों पर भी अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि संघर्षों का समाधान बातचीत और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया को एंडलेस वॉर से एंडिंग वॉर
2: हो, यही मानवता की पुकार है, यही भारत का संदेश है। गांधी की धरती का, बुद्ध की धरती का एक ही संदेश है, शांति का मार्ग। इन सभी विषयों पर कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है।
1: त्रिगुणायन जी, इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं। जो प्रधानमंत्री ने युद्ध को लेकर अपनी बात कही, बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के इकोसिस्टम और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ बिना किसी डबल स्टैंडर्ड के सख्त संदेश दिया। अफगानिस्तान से सटने वाली मध्य एशियाई सीमाओं की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के संदर्भ में भारत का ये रुख कितना प्रासंगिक है, जब आप देख रहे हैं कि कई देशों की सीमाएं अस्थिर और अशांत बनी हुई हैं।
3: देखिए आनंद जी, बात ऐसी है कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो आज 25 साल मना चुका है अपनी एनिवर्सरी, उसका मेन जो उद्देश्य था वो था टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म, इन चीजों के लिए लड़ना और सिक्योरिटी को बढ़ाना किसी तरह से। उनके कुछ रेड्स टाइप के जो बने हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है उन्होंने। इस पूरे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य ही जो है टेररिज्म से, आतंकवाद से लड़ना है। भारत अपने आप लड़ रहा है, दुनिया भर में सबको कह रहा है कि डबल स्टैंडर्ड्स अगर आप रखेंगे तो इस बुराई, इस कुरीति और इस तरह के देशों के साथ में कोई भी वो नहीं कर सकते, उसको सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये बात प्रधानमंत्री ने इस बार फिर कही। और अगले जब 25 साल की बात हो रही है तो उसमें ये बहुत आवश्यक है कि दुनिया जो है अपने ये डबल स्टैंडर्ड्स, खासतौर से मेंबर कंट्रीज जो है वो ना रखें इसमें। तो भारत पूरी तरह से जब तक अपने आप तो लड़ता ही रहेगा टेररिज्म के खिलाफ, लेकिन दुनिया को ये सबक दे रहा है कि अगर आप इससे नहीं लड़ेंगे तो कल आप इसका शिकार बन सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि ईरान युद्ध जो हुआ है, देखिए जितने भी इस तरह के इन्वेजन्स होते हैं, हमने देखा है कि सबसे बड़ी जो मदर ऑफ ऑल इवल्स वॉज इन्वेजन ऑफ इराक, कि इराक में जब अमेरिका ने अटैक किया था तो उस वक्त के बाद सारा टेररिज्म बढ़ा, आईसिस आया वहां पे, आईसिल आया। अब आप ईरान के अंदर भी उसी तरह का अटैक कर रहे हैं, तो ये जितने भी उनके ग्रुप्स हैं जिनको टेररिस्ट ग्रुप बोला जाता है, 4H, वो सब और ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद में दोबारा से और ज्यादा इस तरह की बात होगी, तो ये जो सारी सीमाओं का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा जब नॉन स्टेट एक्टर्स को इतना बढ़ावा मिलेगा स्टेट्स की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री का बड़ा सीधा भाषण था और राष्ट्रपति पुतिन को भी बड़ा सीधा, उन्होंने जब पहली बार वर्ड्स में ये कहा कि एंडलेस वॉर को एंड ऑफ वॉर होना चाहिए, और पहले उन्होंने कहा था दिस इज नॉट एन ईरा वॉर, तो मैं समझता हूँ कि ये बात और उनकी मुलाकात जो है ईरान के राष्ट्रपति से भी हुई, डॉक्टर पजेश्कियान से, और तब भी वो बातें हुई हैं। देखिए जब तक ये युद्ध नहीं रुकेंगे, जब तक देश जो है इस तरह का ये दुभातिया व्यवहार जिसको कहते हैं या डबल स्टैंडर्ड वो इसमें नहीं छोड़ेंगे, तब तक इन सब लड़ाइयों से, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो टेररिज्म हो, इनसे लड़ पाना बड़ा मुश्किल है।
1: जी, प्रोफेसर जोशी, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एससीओ के मंच पर भारत के प्रधानमंत्री ने सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी का 3 पिलर्स वाला विजन दिया। आपसे ये समझना चाहेंगे कि वैश्विक अनिश्चितता और युद्ध के इस दौर में मध्य एशियाई देशों के लिए भारत एक भरोसेमंद और संतुलित पार्टनर के रूप में खुद को कैसे स्थापित कर रहा है, क्योंकि ये रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है।
0: हम लगातार इस बात की चर्चा करते हैं जब हम दो

0: देशों के या भारत और किसी संगठन की ये संबंधों की चर्चा करते हैं तो हम अक्सर इस बात पर ध्यान देते हैं कि भारत के लिए कोई भी वो देश या वो संगठन क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन आज इस बात की चर्चा भी अवश्य होनी चाहिए जो आप कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है इस प्रश्न का उत्तर देने में कि भारत किसी क्षेत्रीय संगठन के लिए या भारत किसी देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जब हम सेंट्रल एशिया की ओर देखते हैं तो हम सभी जानते हैं कि अलग अलग संप्रभु देशों के रूप में 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, तब जबकि शीत युद्ध समाप्त हुआ, ये तमाम देश अस्तित्व में आए और भारत के साथ बहुत लंबे समय से इनके घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की प्राकृतिक इनके पास में तमाम रिसोर्सेज हैं, विशेषकर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, और जिस तरह की इनकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसको देखते हुए हमने वर्षों से देखा है कि न सिर्फ रशिया के लिए, चीन के लिए, अमेरिका के लिए ये देश जो है वो जियोपॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहे, और वही भारत के साथ भी स्थिति है। लेकिन जब इन देशों के, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, रशिया हो, इन देशों के जब हम, और वहीं जब हम भारत को, भारत की कूटनीति को देखते हैं, तो भारत ने विगत 11 से 12 वर्षों में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स, विन विन रिलेशनशिप्स को कैसे आगे ले जा, रिलेशंस को आगे ले जाने की बात करें तो उसकी ओर देखें, तो इस बात का संदेश हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार के SCO समिट में चीन की मौजूदगी में दिया कि कनेक्टिविटी पर काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी देश को एक कनेक्टिविटी की दिशा में काम करना चाहिए, और ये अपने आप में चीन को एक बहुत बड़ा संदेश था। तो ये तमाम देश जानते हैं कि भारत की जो कूटनीति है वो बहुत सकारात्मक कूटनीति है। भारत न किसी प्रकार का डेट क्राइसिस या डेट डिप्लोमेसी खेलते हुए किसी देश के लिए इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है कि उसके किसी भूभाग पर जाकर के कब्जा करे या वहां अपनी प्रेजेंस को असर्ट करे, न भारत इस प्रकार की कूटनीति करता है कि अपने फायदे की या अपने राष्ट्रीय हितों को सिक्योर करने की सोचता है जिसमें कि दूसरे देश का नुकसान हो जाए, न भारत इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करता है कि किसी भी देश की सुरक्षा के लिए किसी प्रकार का कोई खतरा हो। और आज जो भारत की शक्ति की स्थिति है आनंद, वो हम सभी जानते हैं। कल अपनी आर्थिक शक्ति का तो भारत ने पूरे विश्व को परिचय दे ही दिया, तब जबकि अमेरिका के प्यूनिटिव मेजर्स और तमाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने चोक कर रखा था, पश्चिम एशिया का संकट बहुत गहराया हुआ था, और बाकी के जो देश है, विशेषकर पश्चिम के जो शक्तिवान देश है, उनका जो GDP ग्रोथ है रेट रहा वो 0.5 से लेकर 2% तक का रहा। हमने अपना GDP इस क्वार्टर का जो रिकॉर्ड किया है वो 7.8% का रिकॉर्ड किया है। तो ये तमाम देश जानते हैं कि भारत ऐसा देश है, उसकी कूटनीति ऐसी, इस प्रकार की डायनामिक कूटनीति है कि वो सभी मंचों पर एक सामंजस्य बना करके काम करता है, ग्लोबल साउथ की आवाज आगे लेकर के जाता है। ये देश जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी बात भारत करता है। भारत UNSC में तमाम जो ग्लोबल साउथ के देश है उनके नेतृत्व की बात करता है, और भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ाई की बात करता है। इसके साथ ही भारत अपॉर्चुनिटीज की बात करता है, कनेक्टिविटी को आगे ले जाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में साथ में काम करने के लिए। लेकिन अपनी अपनी भारत किसी भी प्रकार की नकारात्मक कूटनीति में ना पड़ते हुए अपने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग पर काम करता है।
1: जी। विदेश मंत्रालय की तरफ से भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के बीच द्विपक्षीय वार्ता की जानकारी दी। आइए सुनते हैं विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने इस मुलाकात के बारे में क्या कहा।
2: The Prime Minister held a bilateral meeting also with the President of Iran, Dr. Pezeshkian. The two leaders dwelt on recent developments in West Asia and developments in the bilateral relationship. And the Prime Minister conveyed to President Pezeshkian how much he was looking forward to welcoming him in New Delhi for the BRICS summit in less than 2 weeks' time.
1: त्रिगुणायर जी, कार्यक्रम अब अपने समापन की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां से कुछ न कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं उस द्विपक्षीय संबंधों के माध्यम से कि भारत, जो प्रधानमंत्री की महायात्रा थी, इसमें कौन से ऐसे पहलू आपको नजर आते हैं जो भारत को विकसित बनाने की तरफ और आगे लेकर जाएंगे?
3: देखिए, भारत हमेशा से विश्वास ये करता है कि अगर हम विकसित हो रहे हैं तो हमारा विकास जो है वो दूसरे जो देश हैं उनके साथ भी उसको साझा किया जा सके। तो जैसा अंशु जी ने बताया कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहें, क्योंकि दुनिया बिल्कुल अब नए ढंग से चल रही है। टेक्नोलॉजी जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सो अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको भारत प्रदान करता है, शेयर करता है।

0: है दूसरे देशों के साथ में। तो जब हमारी ग्रोथ हो रही है, इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी 7.8% क्लॉक किया है, तो मैं ये समझता हूं कि ये जो रिश्ते हम बना रहे हैं वो तो एक तो एनर्जी सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी है, जनरल सिक्योरिटी है, और टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी, इसमें साइबर सिक्योरिटी, न्यूक्लियर सिक्योरिटी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अहम होती है। या तो हम वहां पे टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश करते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट की कोशिश करते हैं, भारत में मेक इन इंडिया की बात करते हैं, किस तरह से विकसित भारत को आगे बढ़ाएं, कैसे वसुधैव कुटुंबकम के जरिए दूसरे देशों को जो ग्लोबल साउथ के हैं उनको फायदा पहुंचाएं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, किसी भी तरह से भारत हमेशा और सब देशों के साथ में उनके कैपेसिटी बिल्डिंग के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स के लिए हमेशा साथ रहता है। तो मैं जब देखता हूं कि जब हम विकसित 2047 की बात करते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से जो हमारे दूसरे पड़ोसी मुल्क हैं या दूसरे देश हैं जो ग्लोबल साउथ के डिसएडवांटेज कंट्रीज हैं, वो भी हमारे जो ग्रोथ है उसका लाभ उठा सके। तो मैं समझता हूँ यही भारत की एक नीति है जिसकी वजह से भारत को लोग एक विश्व मित्र के रूप में देखते हैं।
1: जी, ताशकंद के ऐतिहासिक गलियारों से लेकर बिश्केक की चोटियों तक वक्त का पहिया एक बार फिर घूम चुका है। सदियों पहले जिस रेशम मार्ग पर भारत के ज्ञान, संस्कृति और मसालों की खुशबू महकती थी, आज 21वीं सदी का नया भारत उसी धरती पर अपनी ऊर्जा, सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और अटूट सामरिक पहचान का परचम लहरा रहा है। उज्बेकिस्तान में मिला प्रधानमंत्री को सम्मान सिर्फ एक सम्मान नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि एक कूटनीतिक जीत भी नहीं है, बल्कि मध्य एशिया के दिल में भारत के बढ़ते विश्वास की वो मुहर है जिसे मिटाना अब नामुमकिन है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए त्रिगुणाया जी आपका, प्रोफेसर जोशी आपका और हमारे श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य यात्रा से मध्य एशिया के साथ भारत के सुदृढ़ होते संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है नाटक अतीत का स्वप्न नगर। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की कहानी पर आधारित ये नाटक सुनते हैं।

अतीत के स्वप्न नगर धार के पूर्वी छोर पर स्थित रत्नागरा नाथ मठ। ये मठ प्राचीन राजप्रसाद के खंडहरों में स्थित है। परिसर में समय के देवता काल भैरव का मंदिर है, संत रत्नागर की समाधि है और एक गहरे अंधेरे कक्ष में विशालकाय काली की प्रतिमा। अन्य कक्षों में चमगादड़ों के डेरे जो थोड़ी थोड़ी देर में कर्कश ध्वनि से बोलते रहते हैं। मठ के सामने रत्नागरा तालाब है जिसमें जलचर पक्षी मुख्यतः सारस आवाज करते हुए आ जा रहे हैं। प्रायः निर्जन रहने वाला यह मठ आज आने वालों से भरता जा रहा है। मठ के शिल्प का अध्ययन करने आया हुआ पुराविद काल भैरव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे नाथ योगी से पूछता है।

0: महाराज, क्या आज कोई उत्सव है?
1: लाल आंखों से निहारता हुआ योगी गंभीर आवाज में उत्तर देता है, हाँ, आज काल भैरव और महाकाली की विशेष आरती और पूजा होगी। आज योगीराज रत्नागर का स्मृति दिवस है। योगिनी मां, आज अपनी सांस्कृतिक धरोहर अपने हाथों से अपनी शिष्या योगिनी को सौंपेगी।
0: क्या कहा? सांस्कृतिक धरोहर सौंपेंगी? ये धरोहर उन्हें कहां से मिली? क्या उन्हें भी
1: नहीं मालूम? जब आरती हो तो आ जाना। आज मठ देखने वालों के लिए बंद है।
2: कौन है?
1: आदेश मां।
2: पुत्र, अतिथि को आने दो। सम्मान के साथ मां कालिका वाले कक्ष में। मैं
1: योगिनी मानी कभी किसी को अपने धुने तक आने नहीं दिया। आइए चले।
0: चलिए।
2: आइए पुत्र, स्वागत है।
0: कितना मनोरम दृश्य है। दिव्यमान प्रभा मंडल से युक्त सौम्य मुख मुद्रा वाली तपस्विनी मां कालिका की प्रतिमा के आगे अपने धुने के समीप योगासन में विराजमान है। इनके दाएं ओर अंकुरित यौना एक कन्या बैठी हुई है। प्रणाम मां जी।
2: आयुष्मान बनो पुत्र, आज इस खंडहर में कैसे आगमन हुआ?
0: जी, मैं धार नगर के स्वर्णिम अतीत की खोज कर रहा हूं।
2: स्वर्णिम अतीत की खोज? नहीं पुत्र, यह सब दुराग्रह मात्र है। अतीत की खोज के लिए अतीत में झांकना होगा, उसकी भाषा समझनी होगी, उसे अपना बनाना होगा। आज यह सब कहां हो रहा है, कौन कर रहा है? अतीत ने हमें जो विरासत सौंपी है, जो सांस्कृतिक धरोहर दी है, उसे कौन सही ढंग से सहेज रहा है? देखो मेरी उत्तराधिकारिणी की ओर, ये जो योगिनी श्रृंगार मंजरी है, देखो पुत्र, आज इसे ये कितना संभाल पाती है। मैं जो सांस्कृतिक विरासत इसे सौंपने वाली हूं, उसके साक्षी आज तुम ही होगे पुराविद।
0: साक्षी? और मैं? मुझे तो आज ही वापस जाना है।
2: चले जाना पुत्र। पुत्री, अतिथि को मधु पर दो, मैं आरती की व्यवस्था देखकर अभी आती हूं। तुम तैयार हो जाओ, आज मैं स्वयं चलकर अतिथि के साथ साथ तुम्हें भी अतीत के स्वप्न नगर धार की विरासत दिखलाऊंगी। लीजिए, मधुपर्क लीजिए।
0: बहन, योगिनी मां का परिचय क्या है और तुम कब से उनके संपर्क में हो?
3: भाई साहब, मां ने कभी किसी को अपना परिचय नहीं बतलाया। मैंने जब अपने संबंध में पूछा कि मैं कौन हूं, तो उन्होंने यही कहा कि तुम स्वयं अपनी पहचान बनाने आई हो, परिचय स्वयं ढूंढ लोगी। इन नाथों और योगिनियों के बीच मुझे अच्छा नहीं लगता। नाथों से सुना है कि योगिनी मां की क्रमशः 10 शिष्याएं हो चुकी हैं और 11वीं शिष्या मैं बनने जा रही हूं।
2: सुनो, सब सुनो। किसी को भी आज के महोत्सव में सम्मिलित होने की अनुमति है?
1: पूर्व में भी ऐसा होता रहा है। नाथ योगी और मदारिया सिलसिले के सूफी संत हजरत शेख जमालुद्दीन जमनजती, जिनकी दरगाह सामने वाली उस टेकरी पर बनी हुई है, यहां एक साथ बैठकर अपने अपने ढंग से ईश्वर का चिंतन करते थे। दोनों के अनुयायी एक साथ

0: बैठकर भोजन करते थे। सुलहे आम का सिद्धांत इन्हीं संतों ने धार में एक साथ बैठकर तैयार किया था। इस नगर में उस पर अमल भी होता रहा है।
1: योगिनी माँ आ रही हैं। उन्हें समय पर सब काम करने की आदत है। मैं वस्त्र बदलकर अभी आई।
2: पुत्र पुराविद, महोत्सव की सभी तैयारियां हो चुकी हैं, किंतु संध्या आरती को अभी समय है। चलो मेरे साथ और जी भर कर देख लो धारा नगरी का स्वर्णिम अतीत। पुत्री श्रृंगार मंजरी।
1: आई माँ।
3: माँ,
2: हाँ।
3: नगर का नाम थार या थारा क्यों रखा गया होगा?
2: यह लगभग 980 ईस्वी की बात है। उन दिनों महाराज मुंज परमार की राजधानी उज्जैनी नगरी थी। महाकाल के पवित्र स्थली उज्जैनी। सोचा गया कि राज परिवार के रहने, राजकुमारों और राजकुमारियों के शिक्षा दीक्षा के लिए एक स्वतंत्र नया परिसर विकसित किया जाए। महाराज मुंज की विद्व परिषद ने ऐसे परिसर के नामकरण की बात चली। राजकवि पद्मगुप्त परिमल ने सुझाव दिया कि वैदिक शब्द धारा, जिसका अर्थ वाग देवी होता है, परिसर के नामकरण हेतु उपयुक्त होगा। प्रस्ताव को वाकपति मुंजराज ने मान लिया और धारा नगरी यानी सरस्वती संकुल का विकास कार्य प्रारंभ हुआ। उसी पद्मगुप्त परिमल ने धारा नगरी के वैभव का अपने ग्रंथ नव साहसांक चरितम में बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। पुत्र, उसी ने तो लिखा है, धारेति नाम ना कुल राजधानी।
3: माँ, आप पर इतनी भावुकता?
1: जब भी धारा नगरी की स्थापना की बात चलती है, योगिनी माँ ऐसी ही भावुक और उदास हो जाती हैं।
2: आज मुझे थोड़ी थकान लग रही है। ईस्वी 995 के लगभग महाराज मुंज के बाद सिंधुराज परमार मालवा के राजा बने। उसी समय इस विशाल काय प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और नगर देवता के इस मंदिर में प्रथम पूजा स्वयं महाराज सिंधुराज ने अपनी महारानी शशि प्रभा के साथ की थी। उसी दिन नगर प्रवेश का महोत्सव मनाया गया था। कवियों ने इस नगरी के वैभव का आंखों देखा हाल लिखा था। अब केवल एक ग्रंथ बचा है, नव साहसांक चरितम, जिसमें इस नगर का विशद वर्णन है। यह ग्रंथ आज मैं श्रृंगार मंजरी को सौंप रही हूं। लो बेटी।
1: माँ, इतना भारी बस्ता? माँ, ये किस काम का है? अरे माँ, अब तो माइक्रोफोन्स का युग है। माँ, यह तो अभिलेखागार में ही रखना पड़ेगा। सड़े गले पृष्ठों वाला यह ग्रंथ क्या माँ, यह कोई विरासत है? यूजलेस।
2: यह तुम्हारा सोच है बेटी। मेरा कर्तव्य था तुम्हें सौंपना, सो तुम्हें सौंप दिया।
3: रख लीजिए, हम पुराविद पुरातन साहित्य से भी अतीत की खोज करते हैं। इस दुर्लभ ग्रंथ को हम प्रकाशित करवा देंगे। विद्यार्थी इसके अलग अलग विषयों पर शोध करके पीएचडी कर लेंगे।
1: ओह, लेकिन जिस लिपि में यह लिखा हुआ है उसे पढ़ेगा कौन?
3: जर्मनी में कुछ विद्वान हैं, फ्रांस में भी हैं, जो भारत की प्राचीन लिपि को पढ़ लेते हैं। फोटोकॉपी भेजकर रीडिंग करवा लेंगे।
2: मुझे तुमसे ऐसी ही अपेक्षा थी पुत्र। शायद धारा नगरी की वाग देवी प्रतिमा इसीलिए ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है। आज धार नगर ही नहीं, पूरे देश में जानकार लोगों का अभाव है। आज वेदों के जो अंश और संहिता धारा नगरी एवं उज्जैन में रहकर वेद वेत्ता महर्षि उव्वट ने लिखे थे, वही मिल रहे हैं और उनका पठन भी तो

0: जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने किया था। हा हंत भवितव्यता। हाँ तो पुरावित, मैं जो कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो।
1: ठीक है माँ।
0: और जिधर इशारा करूं उधर ध्यान देकर देखो।
1: जी।
0: तुम अतीत में चले जाओगे। नगर के चारों ओर कितनी भव्य नगर परिखा है।
1: हाँ।
0: कितने मनोरम उद्यान है ना। उधर देखो कितनी विशाल गज सेना है। परमार नरेश जिन्होंने धार नगर को बसाया और समृद्ध किया, उन्हें इसी गज सेना के कारण गजपति कहा जाता था।
1: अच्छा।
0: हाँ, महाराज मुंज ने एक युद्ध में अपनी गज सेना के 14,000 हाथी गंवाए थे। और देखो उधर दक्षिण की ओर देखो।
1: हाँ।
0: हिम्मतगढ़ का तालाब कितना मनोरम है। थोड़ा पूर्व की ओर मुड़ो। हाँ, खाम तालाब, सीता पाट, है ना,
1: अति सुंदर।
0: ध्यान से देखो। गिन सकते हो कितने घोड़े हैं?
1: असंख्य माँ, असंख्य।
0: ये घोड़े धार नरेशों के अश्वारोही दल की एक टुकड़ी के हैं, जो नगर रक्षा के निमित्त यहाँ रखे गए हैं। वहीं बाद में मराठों के समय रिमांड नाम से अश्वपालन प्रारंभ किया गया। नगर के आसपास बड़े बड़े चरागार और जल से भरे हुए तालाब थे। आज जिन तालाबों को ट्रेचिंग ग्राउंड बना दिया गया है या जहां ईंट के भट्टे प्रदूषण फैला रहे हैं, वहां पहले विकसित कमल थे। पक्के घाट थे, धाराग्रह यानी फव्वारे और इति परिमल से सुवासित मोहन गृह बने हुए थे। आज जहां स्मशान है वहां पहले भुवनेश्वरी वन था। पर्यावरण का सब कुछ उजड़ चुका है।
1: माँ, क्या सचमुच धार नगर इतना सुंदर था?
0: हाँ, कल्पना से भी अधिक सुंदर था। हर ऋतु की अपनी बहार थी, अपने उत्सव थे। आज जहां किला बना हुआ है वहां धारा नगरी का प्रमद वन था। वसंत उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। जो काव्य की एक एक पंक्ति पर पुरस्कार स्वरूप अक्षर लक्ष्य दान कर देते थे। देश के कोने कोने से कवि और साहित्यकार यहां आते थे। यह नगर अपने नगर विन्यास के लिए प्रसिद्ध था। पुत्र,
1: वाह, अद्भुत।
0: कुल 84 चौरास्ते थे और हर चौरास्ते पर भव्य देव प्रासाद एवं उद्यान।
1: सचमुच।
0: साहित्य, संगीत और कला धारा नगरी के निवासियों की पहचान थी। नगर विन्यास में इसे आदर्श माना जाता था। उद्योग धंधे विकास के प्रतीक थे। राजा भोज की लाट आज भी 11वीं शती ईस्वी में लोहा गलाने और ढालने की कला का अद्वितीय उदाहरण है। मैं देख रही हूँ तुम बहुत चुप हो।
1: माँ, मैं इस नगरी के स्वर्णिम अतीत में खो सा गया हूँ। सचमुच धारा नगरी मालवा की काशी थी।
0: हाँ पुत्र, महाराज भोज के समय तो यह नगर भारत का प्रतीक बन गया था। काशी के शैवाचार्य आकर यहाँ की धार्मिक संस्थाओं की व्यवस्था स्वयं देखते थे। काश्मीरी पंडितों को दक्षिणात्य विद्वानों के साथ साथ राज्याश्रय प्राप्त था। देखो पुत्र, वह सरस्वती सदन
1: बहुत सुंदर है।
0: एक समय यह विद्यालय तक्षशिला और पर लगाया गया था। कातंत्र व्याकरण के सूत्र, नागवंध और नाग कृपाणिका बनाकर पत्थरों पर अंकित किए गए थे। उसी भवन के समीप

0: नाट्यशाला थी जहां प्रतिदिन नए नए नाटकों का मंचन होता था।
1: बहुत ही मनोरम रहा होगा।
0: और हाँ पुत्र, उधर देखो, वह ऊंची अट्टालिका, वहां धारा नगरी की नगरवधु विषमशीला का निवास था।
1: अच्छा,
0: यह भवन संगीत के लिए प्रसिद्ध था। समय के अनुरूप राग रागिनियों को गाया जाता था।
1: माँ, लेकिन आज ये सब क्यों नहीं हो रहा है? किसने इस नगरी के स्वर्णिम अतीत को लूट कर बर्बाद कर डाला?
0: पुत्र शांत, इस नगर का वैभव पड़ोसी राज्यों की ईर्ष्या का कारण बन गया था। चारों ओर से शत्रुओं ने एक बार नहीं अनेकों बार इस नगरी पर आक्रमण किया, लूटा और लूट कर जला डाला। नगर विध्वंस पर तो धारा ध्वंस नामक काव्य ग्रंथ भी लिखा गया है। इस नगरी में अलग अलग बाजार थे, स्वर्ण मंडपिकाएं थी। भोज महाराज के आंख मूंदते ही उत्तराधिकार के प्रश्न पर जो गृह कलह हुई उसका लाभ पड़ोसी शत्रुओं ने उठाया।
1: सचमुच ये नगरी स्वप्न लोक के समान थी।
2: सही में
1: इसका वैभव अनूठा था। यहाँ के शासक और निवासी महान थे। माँ,
0: तुम्हें ऐसा लगता है ना पुत्र?
1: हाँ बिल्कुल
0: बिल्कुल सच, यहाँ के लोग महान थे, लेकिन उनका वैभव ही उनके विनाश का कारण बना। अंतिम बार 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आयनुल मुल्क मुल्तानी ने इस नगर को जीतकर दिल्ली सल्तनत का एकता बना दिया, लेकिन तब उन्हें लूटने को कुछ नहीं बचा था। यह जरूर हुआ कि खंडरों में ही कुछ दिनों बाद मांडू सुल्तानों की नई सत्ता स्थापित हुई और धार के बजाय मालवा प्रांत की राजधानी

0: कला से ज्यादा कुछ भी नहीं है। नया युग इन्हें समेटने और संजोने में अपना समय क्यों बर्बाद करेगा मां? आज अनाज चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, उद्योग चाहिए। इन खंडरों को सहेजने में यह सब मिलेगा क्या?
1: नहीं, लेकिन स्वस्थ मस्तिष्क के लिए साहित्य, कला और संस्कृति भी तो चाहिए। इन अवशेषों में वो आज भी विद्यमान है।
0: मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर आज कितने लोग स्वस्थ चिंतन चाहते हैं? दुनिया सिमटती जा रही है, अब केवल वर्ल्ड हेरिटेज की जरूरत है। आज का बिगड़ता हुआ प्रदूषित पर्यावरण, आबादी का घनत्व, क्या इस सांस्कृतिक विरासत को जीवित रहने देगा?
2: पुत्री मंजरी, वस्तुतः तुम्हारा कथन एक कटु सत्य है, ऐसा यथार्थ है जिसे नकारा नहीं जा सकता, ऐसी विडंबना है जिससे आंखें नहीं मूंदी जा सकती। मैं देख रही हूं धार नगर के आसपास पहले कितनी अनुपम हरियाली थी, वन्य प्राणी थे, तालाबों में पक्षी चहकते रहते थे। आज पक्षी तो आते हैं लेकिन यहां रुकने के बजाय उड़ते हुए दूर चले जाते हैं। वन्य प्राणी चिड़ियाघरों तक सीमित हो गए हैं और धार में तो वह भी नहीं रहा। कुछ दिनों पूर्व जहां एक छोटा सा चिड़ियाघर था, आज वह भी नहीं बचा। पहाड़ियां नग्न और शुष्क हैं। प्रकृति ने जिन स्मारकों को बचाए रखा था, अब वे भी तो उबड़ चुके हैं।
0: बिल्कुल,
2: पहले ठंडी और सुरभित वायु बहती थी, अब कारखानों की दुर्गंध युक्त हवाएं चलती हैं। लेकिन यह सब कुछ हुआ है हमारी वजह से, इसके लिए दोषी हम हैं। हम में से किसी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। यदि पर्यावरण को नहीं संतुलित किया गया तो 21वीं शती महामारियों, अकालों और संकटों की शताब्दी होगी।
1: माँ, क्या ऐसा पर्यावरण संकट पहले भी कभी उपस्थित हुआ था?
2: नहीं हुआ, यह नए युग की देन है पुत्र। पहले के लोग पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना अपना धर्म मानते थे, वृक्षों की पूजा होती थी।
1: योगिनी माँ, ऐसा लगता है मानो आपने स्वयं सब कुछ देखा है, भोगा है और नियति के साथ समझौता कर रखा है।
2: सच कहा पुत्र।
1: माँ, क्या मैं एक बात पूछने की धृष्टता करूं?
2: पूछो पुत्र, अवश्य पूछो, मुझे जो कुछ भी पता होगा जरूर बताऊंगी।
1: माँ, आपका परिचय क्या है? आप कब से थारा नगरी में एकांतवास कर रही हैं और श्रृंगार मंजरी को किन गुणों के कारण अपनी उत्तराधिकारिणी मनोनीत कर रही हैं?
2: पुत्र, यह प्रश्न मुझसे कोई अन्य पूछता तो टाल जाती, लेकिन तुम्हारी उत्सुकता मुझे प्रेरित कर रही है कि मैं तुम्हें कुछ बतलाऊं। तो सुनो पुत्र, श्रृंगार मंजरी मेरी 11वीं उत्तराधिकारिणी है। इसके पूर्व 10 शिष्याएं हो चुकी हैं जिन्हें मैंने अपना उत्तराधिकारी बनाया था, किंतु वे सभी चली गईं। मेरी पहली उत्तराधिकारिणी अल्प आयु वाली रही। मैंने धारा नगरी की स्थापना के समय यानी ईस्वी 995 में उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया।
1: क्या?
2: चौंको मत पुत्र, यदि बीच में तुम बोलोगे तो मैं कोई उत्तर नहीं दूंगी। हाँ, तो मेरी पहली उत्तराधिकारिणी मेरी समान आयु वाली थी। 5 वर्षों के भीतर मुझे छोड़कर चली गई। उसकी पालित पुत्री को मैंने उत्तराधिकारिणी चुना, वह बड़ी सुयोग्य थी। महाराज भोज और जयसिंह तथा उदयादित्य जैसे शासकों को उसने यश दिया। धारा नगरी उसके समय अपने वैभव के चरम बिंदु पर रही। उसके समय 2-3 बार इस नगरी का विनाश हुआ, शत्रुओं के आक्रमण हुए और नगर की संपत्ति लूटी गई। हजारों पुर सुंदरियों को बंदी बनाया गया। महाराज भोज पराजय के अपमान को नहीं सह पाए, संग्रहणी रोग से ग्रसित होकर स्वर्गवासी हो गए। उदयादित्य पर।

0: कुमार ने नगर का पुनर्निर्माण करवाया। ईस्वी 1095 में वह भी संसार को छोड़कर चले गए। राजकुमार नरवर्मन राजा बना। जब वह नगर को समृद्ध करने में व्यस्त था, मेरी शिष्या की जीवन ज्योति विलुप्त हो गई। परंपरा के अनुरूप मैंने नई शिष्या को मनोनीत किया। नरवर्मन के समय गुजरात के राजा जयसिंह सिद्धराज ने धारा नगरी पर आक्रमण कर दिया। कुछ समय बाद पुनः भोज के वंशजों को सत्ता प्राप्त हुई और 12वीं शताब्दी समाप्त हो गई। शिष्याएं जाती रहीं। धारा नगरी से परमारों का राजवंश समाप्त हो गया। ईस्वी 1401 के
1: मैं धारा नगरी हूँ, उस स्वर्णिम अतीत का यथार्थ हूँ और श्रृंगार मंजरी 21वीं शताब्दी। मेरी आयु के 1000 वर्ष पूर्ण हुए। प्रत्येक शिष्या मेरी एक एक शताब्दी थी, युग की आस्था थी, मेरा विश्वास थी। मैं धारा नगरी हूँ।

अभी आप सुन रहे थे नाटक अतीत का स्वप्न नगर। प्रतिभागी कलाकार थे राकेश साहू, श्वेतावरी अय्यार, बेलू भार्गव और संतोष जोशी। इस नाटक का प्रसारण आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से किया गया।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित कुमार गंधर्व का गाया राग बहार।

आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने दो दिवसीय गहन विचार विमर्श की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि ये सम्मेलन एक बार की कवायद नहीं रह जानी चाहिए, बल्कि निरंतर समीक्षा और आगे की भी कार्रवाई होनी चाहिए। श्री मोदी ने जनभागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि लोगों में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जल उत्सव आयोजन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। श्री मोदी ने बांध सुरक्षा के लिए प्रत्येक मानसून से पहले ठोस तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और शैक्षिक पाठ्यक्रमों में उपयुक्त रूप से शामिल स्कूली छात्रों के बीच जागरूकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में जल प्रबंधन और इसके प्रशासन से संबंधित ज्ञान और क्षमता मजबूत बनाने का आह्वान किया। भारत का पांचवा विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंचा। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1200 से अधिक हो गई है, जबकि 4000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। बचावकर्मी मूसलाधार बारिश और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने आज संसद में कहा कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु जोखिम की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभाव को कम करने की जिम्मेवारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमरीका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को एफसीएनआरबी जमा ईसीबी और ओएफसीबी के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की। रुपये की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित यह सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। अब एफसीएनआरबी जमा के लिए यह योजना बंद कर दी गई है, जबकि ईसीबी और ओएफसीबी के लिए सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध